क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम के फ्रीक्वेंसी से 102.4.2 एफएम के जरिए। अगर आप सिटी की तरफ से सुन रहे हैं तो 87.7 के जरिए सुन सकते हैं। एक काफी खौफनाक न्यूज आई है, आई एम नॉट श्योर अगर आप उससे रूबरू हो चुके हैं या नहीं, लेकिन एक बहुत ही बहुत ही बड़ा भयंकर फ्लड जो है वो दिखा है नेपाल में, तिब्बत के रास्ते होते हुए तिब्बत को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इतना भयंकर हुआ है दैट इट इज़ स्टिल काउंटिंग हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड फ्रॉम दैट फ्लड। उसके बारे में और भी बातें करेंगे। कुछ विजुअल्स मुझे दिख रहे हैं सामने, इट इज़ लिटरली फील्स लाइक कोई एक वीडियो एनिमेशन, कोई एक मूवी वाला सीन जो लग रहा है, बट ऑनेस्टली ये सारी चीज देख के ऑनेस्टली मतलब इतना भयंकर फील हो रहा है दैट जो भी वहाँ पे थे, मतलब एक ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो बसेस हैं, जो लोग हैं, वो एकदम खिलौने की तरह लग रहे हैं। दिस इज़ हाउ इट्स बीन गोइंग अराउंड। और रेस्क्यू टीम भी पहुँच चुकी है, वैसे तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके। अभी लेटेस्ट खबर के हिसाब से 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। तो और भी अपडेट के लिए आप बस बने रहिए, मैं हूँ अभी से लेकर 3 बजे तक बहुत सारी बातें होगी और इसके बारे में भी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। आप बस स्टे अलर्ट एंड इफ़ यू हैव एनीवन फ्रॉम नेपाल और इफ़ एनीवन जो यहाँ से गए होंगे आप बता सकते हैं।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स। मेरा नाम केतन है और अभी अभी हमें फ्री की एक मस्त ड्रिंक मिली है यहाँ पे रेडियो पे। जी हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए और वहाँ से पता करो व्हाट इज दैट ड्रिंक। आप मुझे वहीं पे रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट डाला है, आपको गेस करना है कि वो ड्रिंक जो है वो कौन सी है जो मैं सिप ले रहा हूँ। पर यस, होम सिक रेमेडीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, उनमें से एक मैंने चूज़ किया है, आप भी भेज सकते हैं जस्ट इन केस। बट यस, ये मैसेजेस सनी भाई का, वो कहते हैं, क्योरा केतन, इन ऑकलैंड फ्रीजिंग विंटर, trying to dry laundry is an absolute nightmare. Back home in PG, you just hang your clothes out in the line under the blazing sun and everything is crisp, warm and dry in 2 hours. That is so true. Here, heaters running on full blast and hoodies staying damp for 3 straight days. Standing in front of a cloth rack, shivering, waiting for a single pair of socks to dry so you can go to work, makes me miss that home sunshine so badly. How do we survive the damp laundry season? Well, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो, जो मैं किया करता था during my early times. Obviously, you might wanted to save money as well. So, यहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं first thing, of course, जब भी आप आते हैं अपने घर से यहाँ पे, तो बहुत सारे कपड़े क्लोथिंग्स होती हैं आपकी, नई भी होती, तो धीरे धीरे obviously आप खरीदोगे, तो उन सबको रखना एज अ बैकअप। और हम क्या करते थे, हर दिन हर चीज़ बदलते थे, सो वी आर नॉट रिपीटिंग एवरी वीक, ऐसा नहीं होता था। And we used to collect it, and then every 2 weeks हम उसे laundry में धोने जाते थे, just see it, कुछ भी हम repeat नहीं करते थे, इतने bulk में हमारे कपड़े हो गए थे। And yes, every 2 weeks we used to go to laundry और सब एक साथ ही करते थे, यानी कि $1 एक्स्ट्रा मिल रहा है लेकिन बल्क में कर के ऑफिस को वहीं पर ड्राई कर देना, ये काफ़ी सस्ता लगा मुझे कंपेयर टू हैविंग अ वॉशिंग मशीन एट होम। ऑब्वियसली कन्वीनियंस तो होता ही है, थोड़ा सस्ता पड़ता है घर वाले से, बट जब आप नए नए आते हो तो ऑब्वियसली यू डोंट फील लाइक बाइंग इट, क्योंकि यू डोंट नो वेयर यू वांट टू बी स्टेइंग, हो सकता है आप मूव हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ कहीं और प्लेस में, और फिर ये सारा सामान इतना भारी भरकम आप हर जगह ले जाना चाहते नहीं हो। सो यस, दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। बट इफ़ हमारे लिसनर्स के पास और भी कोई बेटर उपाय है, सोल्यूशन है, तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भेज सकते हैं ताकि हम सनी भाई को जवाब दे सकें। ऑफिस शाउट आउट के लिए आप मुझे टेक्स्ट भेजिए। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हम
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz. आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ, तो अंडा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: The masalas are ground fresh in-house every single day.
8: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
8: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
2: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम playing Bollywood's biggest hits.
1: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हम office shout out.
0: ऑफिस शार्ट आउट के सेगमेंट में स्वागत करते हैं। आप मुझे जल्दी से भेज दीजिए, आप यहाँ पे टेक्स्ट भेज सकते हैं। बट यस, अगला गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बंधु 2.0 नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में। मूवी देखी अभी कॉकटेल 2, कैसी लगी आपको? अगर देखी है तो मतलब मैंने देखा एक लड़की दो लड़की आपस में लड़ रही है टू गेट वन बॉय। काफ़ी आई मीन ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं कि ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट शायद हमने पहले भी देखा होगा, कुछ नया नहीं दिखा, बट स्टिल इट इज़ फन एंड नाइस टू वॉच इट एट यू नो, मतलब एक बार तो देख ही सकते हैं। बट यस, ये रहे मैसेज ऑफिस शाउटआउट के लिए, मैं ये पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले मैसेज आया है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं, आज आई एम एट ऑफिस, बॉट अ चिकन रैप फॉर लंच, दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। उसके बाद मीना कहती है फ्रॉम पापाटोटोय, वर्क फ्रॉम होम टुडे, मम मेड दाल राइस एंड रोटी, दैट इज सो कूल, दैट इज सो कूल, गुड टू नो एंड थैंक यू सो मच। मैंने देखा है यहाँ पे जो भी मुझे टेक्स्ट भेजते हैं वो यूजली कम ही बाहर से खरीदते हैं, मोस्टली वो प्रेफर करते हैं टू हैव समथिंग फ्रॉम होम और होममेड वाला फूड ही। ऑन वीकेंड दे मस्ट बी ट्राइंग समथिंग जो बाहर से खा सके, विच इज़ गुड गुड प्रैक्टिस यार। मतलब मंडे टू फ्राइडे आप काम जब कर रहे हो तब आराम से खा रहे हो, बट अगेन एट द सेम टाइम यू आर सो बिजी दैट यू डोंट फील लाइक कुकिंग एनीथिंग एट होम, टायर्ड। ऐसे मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, मैंने ये जब पहले किया था सॉरी माई बैड, तो उसने रिकमेंड किया था कि देयर इज अ टिफिन सर्विस, नॉट यूजुअल टिफिन सर्विस, बट एक कोई कंपनी है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वो कंपनी बेसिकली हर एक हफ्ते का आपको टिफिन भेज देती है। और उसमें ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जिसको इंडियन पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल जिसको दाल राइस रोटी ये सब पसंद नहीं है, और या फिर काफ़ी लो कार्ब्स वाला खाना खाना चाहते हैं, या फिर यू नो कम मसालेदार, तो वो क्या करते हैं, वो टिफिन उनको ऑर्डर कर लेते हैं, चाहे वेज हो नॉन वेज जो भी खाना है, और फिर उसे 7 दिन के लिए पैक करवा के आप डिलीवर करवा देते हैं। तो आपके घर जैसे आता है, आपको क्या करना है, आपको उसे फ्रिज में रखना है वो 7 दिन का टिफिन, मतलब वो टिफिन भी पैक्ड है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और उसके बाद वो टिफिन आप हर दिन ऑब्वियसली व्हेन यू अबाउट टू स्टार्ट यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर इट इन द मॉर्निंग। ऑब्वियसली खाना प्रिपेयर होता है, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू टॉप इन विद समथिंग एल्स, वेज वो वेजिटेरियन मंगाती बिकॉज ऑब्वियसली वेजिटेरियन थोड़ा सस्ता पड़ता था, और फिर वो घर पे सिर्फ चिकन का वो कर देती थी और चिकन का टॉप इन कर देती ऊपर से। सो दैट इज़ हाउ इट बिकेम हर रेगुलर फूड। तो वो खुद नहीं बनाती, वो कहती है मैं 6 साल हो गए ये कंपनी में यूज़ कर रही हूँ, मैं नाम ऑब्वियसली भूल चुका हूँ, और ये सब्सक्रिप्शन होता है बेसिकली, यू कैन नॉट जस्ट हैव लाइक वन गो, और ऐसा नहीं होता है। और जो उसे बहुत सस्ता पड़ा, वो बोले कि बाकी उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है, जो नॉर्मल टिफिन आते हैं उससे भी। एंड प्लस इसमें ऑयल की टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज पूरा हेल्दी और पूरा बॉइल्ड फूड है। सो यस, अगर मेरी दोस्त ने बताया मुझे और यहाँ पे अगर कोई पूछता है मुझे तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। नहीं यार, वो तो नाम नहीं है, बट यस, दिस इज क्वाइट गुड कंसेप्ट, राइट? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे पता ही होगा, बट अगर आपको नहीं पता था, हाउ वाज इट? डू यू थिंक दैट यू वुड वांट टू ट्राई दिस आउट?
2: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. में नाम किधन है और बात करते हैं पॉडकास्ट की. हम काफी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे एक नया पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है रिगार्डिंग 100 इयर्स ऑफ रेजिलेंस माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी. वेल, कैसे एक पंजाबी कम्युनिटी हेल्प शेप द फैब्रिक ऑफ मॉडर्न न्यूजीलैंड ओवर द लास्ट सेंचुरी, इसके बारे में एक एपिसोड रिकॉर्ड हुआ है जिसमें हरजोत सिंह जो कि एक प्रेजेंटर रिसर्चर हैं और उनके साथ गगन संधू जो कि डायरेक्टर हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री की जो सचमुच अभी बहुत ही बढ़िया चल रही है और काफ़ी लोग उन्हें देख भी रहे हैं, पंजाब टू ओटेरवा. और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करेज, सेक्रीफाइस एंड बिलोंगिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ पंजाब्स जिन्होंने काफ़ी सपने देखे थे और वो यहाँ आए थे इतने सात समुंदर पार करके न्यूजीलैंड में. वेल, यस, उस एपिसोड में काफ़ी बातें हुई जैसे कि 100 इयर्स हिस्ट्री ऑफ पंजाब माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड एंड द पियोनियर्स हु पेव्ड द वे. उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई है उसमें किस तरह से उन्होंने रिसर्च की है और कितना टाइम लगा है, किस तरह से मनाया है और क्या आइडिया उनके दिमाग में आया जो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई. तो यस, ये काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट है, आपको सुनना चाहिए और साथ में आपको ये वेब सीरीज़ भी देखनी, डॉक्यूमेंट्री भी देखनी चाहिए, वेब सीरीज़ नहीं डॉक्यूमेंट्री भी देखनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया जा रही है. आप ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए ताकि आप तक ये पहुँच जाए लिंक, या फिर आप अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे के नाम से सर्च भी कर सकते हैं रोवा या फिर स्पॉटिफाई पे.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ज्यादा क्यूज हैवल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेनुगाव। हैवल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: गोवा की गलियों में एक नया बादशाह जन्म ले रहा है। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक पाला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी।
2: हेलो डैडी।
1: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास।
3: इट्स टाइम, आई एम कमिंग।
1: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
4: Lunchbox with Ketan.
5: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
6: हम चटनी शॉट्स।
7: फटाफट से अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। साउथ आइलैंड में एक पावरफुल विंटर स्टॉर्म ने ट्रैवल को बेडली इफेक्ट कर लिया है। हैवी स्नोफॉल और रॉक फॉल्स की वजह से स्टेट हाईवे 73 स्प्रिंगफील्ड से ओटीरा के बीच क्लोज कर दिया गया है। टियानो से मिल्वर्ड साउंड वाला SH-94 भी एवलॉन्च रिस्क के चलते बंद है। सदर्न एल्प के कई एरियाज में हाई एवलॉन्च डेंजर है, मतलब नेचुरल एवलॉन्चेस पॉसिबल हैं और ह्यूमन ट्रिगर्ड एवलॉन्चेस का रिस्क भी बहुत है। अथॉरिटीज ने मोटरिस्ट को अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करने और रोड कंडीशन चेक करने की एडवाइस दी है। मेट सर्विस के अकॉर्डिंग स्नो इवनिंग में ईज हो सकती है, लेकिन हैवी रेन फ्राइडे तक कंटिन्यू रह सकती है। सिंपल शब्दों में, साउथ आइलैंड में वेदर काफी डेंजरस है, स्पेशली एल्पलाइन एरियाज में, इसीलिए ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा कॉशियस रखना चाहिए।
8: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: विजिट flysolomons.com.
1: वेलकम बैक. यस से ये जो आपने सुना है ये इसलिए चलाया है बिकॉज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद दिला देना चाहता हूँ, अलर्ट बोल देना चाहता हूँ, अलर्ट रहने को बोल देना चाहता हूँ कि भाई एक बजे बाद एक से दो के बीच आपको कभी भी वो एक साउंड, ये जो आपने सुना है इससे ही मिलता जुलता एक साउंड प्ले होगा एक से दो बजे के बीच. और आपको जैसे ही सुनना है आपको रो ऐप पे जाना है, सर्च करना है बोर्डिंग कॉल का, और उसके बाद वहां पे ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड आप सभी को पता ही है, बोर्ड नाउ. बोर्ड नाउ इज अ कीवर्ड, और उसे वहां पे सबमिट कर देना है. जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको $1,000 के साथ साथ ऑफ कोर्स दो रिटर्न एयर टिकट्स मिलेगी वनुअतु विद सोलोमन एयरलाइंस, जिसमें $1,000 की स्पेंडिंग भी ऑन टॉप होने वाली है, यानी कि चेरी ऑन टॉप. घूम के भी आ जाओगे, $1,000 की स्पेंडिंग मनी भी आपकी दी जाएगी, तो क्या सही टाइम है ना. और इसी बहाने एक नया शहर, नई जगह भी देखने को आपको मिलेगी. नया शहर तो क्या, नई जगह ही है, नई कंट्री. बट यस, आप सुनना जरूर, मिस मत करना. एक से दो के बीच ये कभी भी चल सकता है, जैसा कि आपको अभी भी ने चलाया था उसी टाइम का सिमिलर ये होने वाला है. बट यस, लिंक अगर आपको चाहिए, अगर आपको रो ऐप पे नहीं मिल रहा तो अगर लिंक चाहिए आपको वो, तो अभी मैसेज कीजिए मुझे BC लिख के 5599 पे. थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times each week नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुअतु. टर्म्स एंड कंडीशन टू अप्लाई.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। 19 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 12 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस बारिश के आज, लेकिन सनसेट होगा 5:57 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज के शो में। हम इट इज 104.2 एफएम के जरिए आप मुझे सुन रहे हैं, 87.7 एफएम के जरिए भी सुन सकते हैं अगर आप सिटी की तरफ हैं तो। पर यस, बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है। जस्ट अ रिमाइंडर, इस आर में आपको मैं बता चुका हूँ, बट यस आप जैसे ही कॉल टू एक्शन सुनते हैं बोर्डिंग कॉल का, तो आपको फट से क्यू टू कॉल सुन के फट से आपको रोआ पे जाना है, रोआ ऐप पे, और उसके ज़रिए वहाँ पे आपको कंपटीशन सर्च करना और फिर आपको डाल देना है। जस्ट इन केस अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बस मुझे BC लिख के भेज दीजिए अभी 5599 पे, ताकि लिंक आप तक पहुँच जाए। वो लिंक रोआ ऐप की है और उसे वहाँ पे बोर्ड नाउ कोड जो है वो डालना है, लेकिन तब जब आप जैसे ही क्यू सुनेंगे तो क्यों सुनते ही आपके पास 1 घंटा होगा। 1 घंटे में जितना जल्दी आप करेंगे उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे, बिकॉज आपको 2 रिटर्न टिकट फ्लाइट तो मिलेगी ही, साथ में आपको $1000 की स्पेंडिंग मिलेगी। पर यस, इस आर में बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेटेस्ट खबर के साथ साथ आपको बॉलीवुड की खबर भी बताने वाला हूँ, और ऑफकोर्स कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं जैसे फादर्स डे, रक्षाबंधन, तो उस कॉम्पिटिशन के बारे में भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू माई शो, लंच बॉक्स शो, इट इज़ विथ केतन।
0: बचाओ क्या?

0: Welcome back. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रही है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करके और बढ़ावा देना। अगर आपको ये आपके किसी अपने को मदद की जरूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें और या फिर आप एशियन फैमिली सर्विसेज .nz पर विजिट भी कर सकते हैं। बट यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप मुझे टेक्स्ट भेजिए 5599 पे, जिसके बारे में बात होगी थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
4: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
5: Let's go.
4: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
6: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया। नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह।
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: RNZ.
1: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: Lunchbox with Ketan.
5: मुझे पसंद है लड़का.
4: हम. Lunchtime Rant Line.
6: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में स्वागत है. यहाँ पे एक मैसेज आया है मुझे जिसे हम पढ़ लेते हैं. विक्रम भाई का आया था जो कह रहे थे कि उनको मॉर्निंग ड्राइव करते वक्त एक कार सडनली उनके लेन में आ गई. नो इंडिकेशन, नो नथिंग. विक्रम हैड टू ब्रेक क्विकली. लकीली कुछ सीरियस नहीं हुआ, बट इट डेफिनेटली गेव हिम अ स्केयर. ही सेज द फनी पार्ट वॉज ड्राइवर ने लेन चेंज करने के बाद इंडिकेटर ऑन किया, मतलब काम खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन दी गई. केतन भाई, ये उनका मैसेज है. केतन, इंडिकेटर लगाना कोई ऑप्शनल फीचर नहीं है, बस एक लिटिल क्लिक से दूसरे ड्राइवर को पता चल जाता है व्हाट यू आर प्लानिंग. दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ सो ट्रू. और ये एक्चुअली काफ़ी लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि ड्राइविंग इज़ नॉट अबाउट योर सेल्फ, ड्राइविंग इज़ अबाउट everyone. You are actually sharing the public area और वहाँ पर आप drive कर, काफ़ी hazards होते हैं अगल बगल में. You might be confident कि आप उस situation को संभाल लो, but you never know कि जो दूसरा बंदा दूसरा car चला रहा है may not be very very confident. तो उस case में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी. So मैंने भी देखा है, मैंने खुद experience किया है. आज सुबह ही मेरे साथ भी हुआ था that मैं जा रहा हूँ आराम से और speed में, like you know I was on 100 and he was literally on 70. 70 तो बहुत स्लो हो गया, आई थिंक समवेयर अराउंड 80. और उसकी स्पीड मुझे पता थी एंड ही एक्चुअली डिड नॉट शो मी एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन. एंड सडनली मैं इतला था और लिटरली 5 मीटर दूर होगा और उसने इंडिकेशन तो दिया मुझे, लेकिन टर्न होते वक्त और इस तरह से उसने अंदर ली गाड़ी. मैंने कहा भाई अभी ब्रेक एक्टिवनेस नहीं होती अगर, तो पता नहीं क्या होता. बट एनीवेज ये काफ़ी सोच सीखने वाली बात है. बट थैंक यू विक्रम भाई फॉर योर मैसेज अर्ली. थैंक यू सो मच. आप बस एंजॉय करते रहे, होप एवरीथिंग इज ओके विथ यू एज वेल.
4: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू नॉलेज बॉक्स. अभी के लिए जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि वालरापा की एक डेयरी कंपनी को $60,000 का फाइन लिया है लगा है आफ्टर एक वर्कर्स ने फार्म मशीनरी एक्सीडेंट में अपने आर्म लूज कर दिया. ये एक्सीडेंट जनवरी 2025 में हुआ था. वर्कर एक ट्रैक्टर से कनेक्टेड फीड मिक्सर ऑपरेट कर रहा था जब उसके कपड़े एक अनगार्डेड पावर टेक ऑफ शाफ्ट यानी कि पीटीओ शाफ्ट में फंस गए थे और इस एक्सीडेंट में वर्कर्स को सीरियस और लाइफ चेंजिंग इंजरीज हुई हैं. कंपनी शेडिंग फार्मिंग लिमिटेड ने हेल्थ और सेफ्टी एट वर्क एक्ट के अंडर गिल्टी प्ली की और कोर्ट ने कंपनी को $60,000 का फाइन दिया है और लगभग 96,000 रिपरेशन पे करने का ऑर्डर दिया है. वर्क सेफ के अकॉर्डिंग फार्म को ऑलरेडी पता था कि मशीनरी में इंटेंगलमेंट का हाई रिस्क है और सेफ्टी सिस्टम में पीटीओ शाफ्ट को प्रॉपरली गार्डेड रखना रिक्वायर्ड था लेकिन कंपनी ये इफेक्टिवली चेक नहीं कर रही थी कि सेफ्टी मेजर्स एक्चुअली फॉलो हो रही है या नहीं. और वर्क सेफ ने वार्निंग भी दी है कि मूविंग फार्म मशीनरी के अराउंड छोटी सी सेफ्टी मिस्टेक भी लाइफ चेंजिंग इंजरी का रीज़न बन सकता है जो उनके साथ हुआ है. ही एक्चुअली हैव लॉस्ट हिज हैंड बट ग्लैड कि यहाँ पे रिजल्ट आर लाइक वेरी क्विक एंड यू नो जेन्युइन एज वेल लुक्स लाइक.
0: लेडीज एंड जेंटलमैन

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए अब हम पापाओं से बात करते हैं, यानी कि डैड से बात करेंगे। सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पे, उसका जवाब आपको मुझे कॉल करके करना है। कैसे? 0800-004-866 पे आपको मुझे कॉल करना है, 0800-004-हम पे कॉल करना है मुझे और जवाब देना है। सवाल मेरा ये है, व्हाट इज दैट वन आस्क फॉर योर किड्स जो उन्होंने बहुत जिद करी बट आपने फुलफिल नहीं की। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, नॉट लाइक लिटरली आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट, बट कोई ऐसा खिलौना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जिद करी है बट यू न्यू दैट ये उसके लिए अभी सही नहीं है एंड देन यू जस्ट सेड नो टू योर किड्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए, बिकॉज ये मौका दे सकता है आपको जीतने का $500 कैश। जी हाँ, जो कि 4 सितंबर को डिस्क्लोज होने वाला है, डैड फादर्स डे सेलिब्रेशन के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो जल्दी से मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और ऐसी चीज़ बताइए जो आपके बेटे ने या बेटी ने विश की कि लाइक नहीं डैड मुझे चाहिए, बट यू न्यू दैट इट इज़ नॉट राइट टाइम और मे बी इट इज़ नॉट गुड फॉर देम, सो यू सेड नो। जल्दी से मुझे बताइए, मतलब मैं अपनी लिस्ट बताता हूँ, मेरी तो लंबी लिस्ट है। हर दूसरे दिन मुझे नई चीज़ पसंद आती थी और पापा का वही जवाब, नो मीन्स नो। मतलब ये जो मूवी आई थी ना, उससे पहले से मुझे पता था कि ये पापा की तरफ से लिया है।

0: 12 years old, he was kept asking me for a iPhone. I told him, if you get me good grades in year 10, I will buy you the iPhone when you are 16 year old. Yeah, so बिचारे को 3 साल तक ड्रैग किया, मेहनत करके बहुत अच्छे ग्रेड लाए उसने हर क्लास में.
1: अरे वाह, तो फाइनली उसको मिल गया.
0: उसको अभी वो 16 का हुआ लास्ट मंथ, आई मीन ये मंथ जस्ट लास्ट वीक, तब उसको मिला आईफोन.
1: अरे वाह, क्या बात,
0: मेहनत रंग लाई.
1: क्या बात है, क्या बात है. वैसे आपके बेटे को बोलना हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. ऑब्वियसली जो मॉम ने या डैड ने ऑप्शन रखा था और उन्होंने फुलफिल भी किया. एक और ऑप्शन है कि वो फेसबुक पेज पे जा सकते हैं हमारे और वहाँ पे फादर का फोटो लेके यू नो जस्ट मेक इट अ सुपर हीरो.
0: उसके डैड का नाम से मुझे एंट्री करनी पड़ेगी. अच्छा, उसके डैड को भी उसने बोला था ऑफ कोर्स, तो फिर मैं आंसर कर रही हूं उनकी तरफ से.
1: हाँ हाँ, ना ना, ऑल गुड. क्या नाम, क्या वैसे उनका?
0: सैमुअल.
1: सैमुअल, राइट.
0: मेरे बेटे का नाम है सैमुअल.
1: सैमुअल. एंड उसके फादर का क्या नाम है?
0: स्टैनली.
1: स्टैनली, राइट. परफेक्ट. तो मैं ये नाम आपका ड्रॉ में शामिल करता हूँ. बट यस, मेक श्योर दैट वो अपने पापा का फोटो लेके टू गेट इनटू द सेकंड ड्रॉ. इसमें तो जा ही रहे, बट एक और कंपटीशन में अगर जाना है तो सुपर हीरो बना के और मस्त फोटो डाल दे वहाँ पे, एंड देन नाइस सा एक मैसेज भी लिख दे अपने डैड को.
0: ठीक है,
1: परफेक्ट. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू,
1: यू हैव अ लवली डे. वेल यस, ये तो थी इनकी कहानी. आप भी ट्राई कर सकते हैं. अगर ऑब्वियसली कॉल तो मैं एक ही लूँगा, तो मैंने ले लिया है. सो व्हाट यू कैन डू इज आप जल्दी से फेसबुक पेज पे जा सकते हैं हमारे और वहाँ पे अपने डैड का फोटो लेके, डजंट नीड योर किड्स टू डू इट. अगर आप भी करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का फोटो खींच के AI से थोड़ा सा यू नो ड्रामेटिक, थोड़ा सुपर हीरो, वैसे भी आजकल सुपर हीरो की मूवीज़ काफ़ी आ रही है, तो बना के वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए और उसके साथ ही आप भी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं. मेक श्योर कि आप अपने डैड को भी टैग करें वहाँ पे. अगर नहीं है तो जस्ट नाम कर ले. अगर हो सकता है वो फेसबुक पे ना हो, आप उनका नाम ही लिख सकते हैं वहाँ पे. एक क्यूट सा मैसेज भी लिख देना वहाँ पे, एंड यस, उसके साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे. तो $300 जीतने का मौका है आपके पास.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
2: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
2: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में. उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
4: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
2: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर. Father's Day bus aane hi wala hai, and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories, plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: Kia ora, namaste, welcome back, you are listening to Lunchbox Show. मेरा नाम केतन है और बने रहिए 3 बजे तक, बहुत सारी बातें करनी है इस आर में। वैसे आपके लिए राखी के लिए भी कुछ लेके आया हूँ, सो उसके लिए भी अपडेट के लिए आप बस बने रहिए, सुनते रहिए मेरा शो। स्पोर्ट्स के साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, स्पोर्ट्स के साथ साथ वैसे यस, प्री सेल भी शुरू हो गई है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। क्या बात है, इतने टाइम बाद, मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद, ये बिफोर कोविड आया था शायद, उसके बाद आ नहीं पाए एंड अभी फिर से आ रहे हैं। तो यस, अगर आप चाहते हैं खरीदना तो जल्दी से जाइए ऑनलाइन और सर्च करिए और डाउन टिकट खरीद लीजिए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, होपफुली सब बढ़िया रहे, बिकॉज हम डेफिनेटली देखना शुरू करेंगे। वैसे जस्ट टू लेट यू नो, क्राइस्टचर्च में पहला मैच होने वाला है, मज़ा आ जाएगा यार, लाइक लिटरली यू नो, इट्स कमिंग आफ्टर 5-6 ईयर्स आई गेस। तो 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में पहला मैच होने वाला है और ऑकलैंड में होने वाला है ऑन 30th ऑफ अक्टूबर। मज़ा तो आएगा देखने के लिए। बट यस, और भी चीज़ें बताते रहेंगे, आप बस बने रहिए लेटेस्ट खबर के साथ साथ। स्पोर्ट्स खबर भी हम आपको बताएंगे, अभी हाल फिलहाल जो अपडेट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा है। श्रीलंका अभी 16 रन की लीड ले चुकी है और मैच शुरू होगा बहुत ही जल्द। अगर इस बीच अगर होता है तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। सिर्फ 4 ही विकेट बचे हुए हैं उनके पास और फिर इंडिया खेलने उतरेगी फिर से टू मेक इट अ विन।
2: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में क्रिकेट का भी चल रहा है बिटवीन इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें सेकंड इनिंग चल रही है अभी हाल फिलहाल। लेकिन फर्स्ट इनिंग खत्म होने से पहले सबसे बढ़िया पारी खेली है सोनल दिनुषा ने, जिन्होंने शतक भी मारा है। 3 छक्के 8 चौकों के साथ 162 बॉलें भी फेस की है, और उनकी इस पारी के साथ साथ पसिंदु ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। 80 रन उन्होंने भी बनाया, उस वजह से वो 290 के टोटल तक जहां पहुंची। जवाब में ऑफकोर्स इंडिया तो आई नहीं, फॉलो ऑन हुआ उनका श्रीलंका का फिर से, तो श्रीलंका फिर से खेलने उतरी है। और पसिंदु ने इस इनिंग में भी अच्छी खेली और शतक इस बार भी नहीं बना पाए अनफॉर्चुनेटली, बट 92 रन बनाए उन्होंने। और साथ में कविंदु ने भी अच्छा साथ दिया है, 55 रन उन्होंने बनाया है। 229 पे 6 विकेट खो चुकी हैं, अभी 4 विकेट और हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्कोर बना पाएगी, क्या टारगेट देगी इंडिया को? वैसे इंडिया अगर बॉलिंग की तरफ से देखे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में, मानव सुधार ने भी 3 विकेट लिए हैं। और सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा के पास 1 आया है, रविंद्र जडा 1, मानव सुधार 1, एंड बाकी सब जैसे सारांश जैन 1, मोहम्मद सिराज भी 1 विकेट के साथ क्रीज पे है। बट लेट्स सी अभी बाकी के 4 विकेट किसके झोली में आते हैं और कितना टारगेट देती है इंडिया को।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
4: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी। अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
7: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
12: Mike here from Novus Glass. When this happens,
13: Novus,
12: just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
14: Show us your crack.
15: Novus.
16: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay.
3: Well, ऑकलैंड के माउंट ईडन में दो लोगों ने एक बार्बर शॉप में ब्रेक इन करके करने की कोशिश की है, लेकिन उनका प्लान जो है कम्प्लीटली फेल हो गया. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वेडनेसडे मॉर्निंग अराउंड 6 बजे दोनों टेरिक्स बार्बर शॉप के बाहर आए और विंडो को तोड़ने की बार बार कोशिश की, और एक पर्सन ने मेटल ऑब्जेक्ट से ग्लास पर रिपीटेडली हिट भी किया. फिर दूसरे ने भी ट्राई किया लेकिन ग्लास पूरी तरह टूटा नहीं और दोनों बिना अंदर घुसे ही वहां से भाग गए. शॉप ओनर टेरिक ने कहा है कि विंडो बैडली डैमेज हुआ है और उनके बिजनेस में पहले भी लाइट्स तोड़ने और कैमरा चोरी होने वाले इंसिडेंट्स हो चुके हैं. टेरिक ने कहा है कि अगर उन्हें हेयर कट चाहिए था तो सीधा पूछ लेते, फ्री हेयर कट भी मिल सकता था. उन्होंने कहा है कि इस इंसिडेंट को देखकर उन्हें उन दोनों के लिए फील सॉरी होता है. भाई ऐसा मत बोलो यार, क्या पता है वो न्यूज़ पढ़ते हो और नेक्स्ट टाइम वो सच में जा जाए. बट यस, जोक्स अपार्ट, इन्होंने भी फनी वे से ही इन्होंने जवाब दिया था. बट थैंक यू अगेन यार, मतलब ये पता नहीं सर सोल्यूशन क्या है, बट काफ़ी मजबूत किस्म का ये कांच दिखता है जो तोड़ नहीं पाए वो. मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली वेरी, बहुत ही गंदा वाला डैमेज हुआ है लेकिन टूटा बिल्कुल नहीं है. आई मीन ब्रेक नहीं हुआ है, दरार तो आई है लेकिन टूटा नहीं है. वेरी नाइस है, वेरी नाइस.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

स्वागत करते हैं आपका लंच बॉक्स शो में। वैसे यस, एक आर्टिकल मिला है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। अगर आपकी जॉब में ऑन कॉल रहना पड़ता है तो इसका इफेक्ट है आपकी स्लीप पर भी पड़ सकता है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। एक न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ ये टेंशन की रात में कभी भी वर्क का कॉल आ सकता है, स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए इनफ हो सकता है, चाहे एक्चुअल में कॉल आए भी ना। जी हाँ, ये आपके दिमाग में भी घुस सकता है। वेल, ऑन कॉल वर्कर्स को अपना फोन या पेजर रेडी रखना पड़ता है और इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ केयर, आईटी और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर्स में ये काफी कॉमन है। अगर रात को कॉल आ जाए तो स्लीप ब्रेक होती है, और अगर कॉल स्ट्रेसफुल हो या बार बार आए तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। पुअर स्लीप से कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन टाइम, मूड और डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वर्कर्स को ऑन कॉल नाइट्स में पॉसिबल हो तो थोड़ा अर्लियर सोना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वर्कर की ही नहीं है, एम्प्लॉयर्स को भी ऐसे रोस्टर्स डिजाइन करने चाहिए जहां बिजी नाइट के बाद वर्कर्स को प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी टाइम मिल सके। जी हाँ, इन सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो ऑन कॉल होना सिर्फ काम के आवर्स को इफेक्ट नहीं करता बल्कि नींद और ओवरऑल वेलबींग को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो यस, अगर नेक्स्ट टाइम आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं तो इस चीज का भी ध्यान दे, जितना हो सके रेस्ट प्रॉपर ले।

चलिए बात करते हैं यहाँ हमारे बीच क्या कुछ हो रहा है ऑकलैंड में। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का सेलिब्रेशन जो कि 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होने वाला है द केव में 5x57 कैविनेश ड्राइव मनुखाओ जो कि अपोजिट ऑफ वेयरहाउस है। 7:30 PM के बाद आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुखाओ यहां पे भी आप एंजॉय कर सकते हैं फ्रॉम 29 टू 4th ऑफ सितंबर रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू 7:30 PM के बाद। और भी श्री राम मंदिर में भी ये होने जा रहा है सेम टाइम शाम के 29 से लेके 3rd ऑफ सितंबर के बीच आप 7 PM पहुंच जाइए और उसके बाद 4 सितंबर को पूरे दिन 5 PM के बाद ही होने वाला है। आचार्य डॉक्टर श्री कैलाश आचार्य जी आ रहे हैं आप सभी के बीच पाठ पढ़ने।

0: Indian Rusbe, only on Hum.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Knock, knock, it's me, Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
5: Please use your imagination for the following ad.
6: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
7: Imagine winning $23 million this Saturday. Play in store or online.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Mike Eyre from Novus Glass. Do your wipers smear rather than clear your windscreen? Then you need Novus wipers. Novus all-in-one wiper kits are available online now. These are the best wipers you will ever buy and are quick and easy to install. So for less of this and more of this, as soon as you notice it, Novus it. Visit novus.co.nz or drop into your local branch.
1: Ah, Novus.
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
3: इसके पीछे
6: हम.
3: Tech Talk.
7: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. वैसे टेक टॉक के सेगमेंट में मैं चाहूंगा कि आप मुझे कॉल करिए और कुछ रक्षाबंधन से रिलेटेड यहाँ पे बात करते हैं, चाहे भाई हो बहन हो. फील फ्री टू कॉल मी 0800-004-866 में और मैं एक सवाल करूंगा आपसे, एक रिव्यू परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में पूछूंगा मैं, और उसका जवाब आपको मुझे देना है बाय कॉलिंग मी 0800-004-866 में. और $250 जीतने का मौका है. दो लकी विनर्स ये जीत सकते हैं. तो आई विल बी रिसीविंग टू कॉल्स फॉर टुडे. सो यस, आप जल्दी से मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, क्योंकि ड्रॉ में शामिल होने के बाद आपके पास मौका होगा $250 जीतने का. और विनर्स जो है वो कल अनाउंस होने वाले हैं, यानी कि अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है, आज और कल ही. बहुत ही काम था, जितना ज़्यादा ये ट्राई करेंगे यू नेवर नो, यू माइट बी द लकी वन. और अगर कर लिया है तो फिर भी करिए कॉल मुझे 0800-004-866 पे, 0800-004-HUM पे. यार अभी तो आ चुका होना चाहिए फोन, अभी तक फोन नहीं आया मुझे. हाय क्या बात है, मतलब वो क्या है कि डायलॉग बोलते ना जब अमिताभ बच्चन की रहता था उससे, तब तक फोन नहीं आता है. हेलो.
8: हेलो,
7: हाय. एकदम बढ़िया, आप कैसे हो, किससे बात हो रही है?
8: कविता.

0: कविता, हाय कविता, कैसे हैं आप?
1: ठीक
0: हूँ,
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम बताइए। चलिए कविता शुरू करते हैं, सॉरी मतलब बताइए, मैं सवाल करूंगा आपके, वैसे कितने सिब्लिंग्स हैं?
1: सिक्स? यस
0: राइट, एंड ऑल आर इन,
1: भाई एक ही है।
0: ओ बेचारा गरीब हो जाएगा इस बार तो। तो क्या मतलब किस नंबर पे रैंकिंग वाइज?
1: आई एम द यंगेस्ट।
0: हाँ हाँ,
1: और भाई मेरा नंबर 4।
0: नंबर 4, नाइस नाइस। तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है, आपको या आपके भाई को?
1: ट्रिकी क्वेश्चन, दोनों को, लेट्स पुट इट दैट वे।
0: मुझे लग रहा है आपको पता है कि उनको ज्यादा प्यार मिलता है, इस वजह से बोल रहे हैं मुझे भी प्यार मिलता है। एनीवे
1: इसे अगर देखे मम्मी और डैडी की तरफ से तो ऑब्वियसली एक ही लड़का
0: नहीं,
1: है,
0: नहीं, उनकी
1: तो
0: तरफ से तो
1: डेफिनेटली मिलेगा,
0: नहीं ऐसा नहीं
1: पर
0: होता वैसे।
1: यंगेस्ट, तो मुझे तो सबकी हाँ। तरफ से मिलता है ना, सब सिबलिंग की भी तरफ से और पेरेंट्स की भी तरफ से, सो आई थिंक इट्स मी।
0: हाँ, मेरे को क्योंकि नाउ अब मैं भी पेरेंट कैटेगरी में आ चुका हूँ, मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए तो बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं होता है, बट फ्रॉम सिबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यू कैन जस्टिफाई, यू कैन बी मोर क्लियर कि भाई हाँ किसको ज़्यादा प्यार मिलता है किसको नहीं मिलता है। बचपन में कहता ना कि कौन किसको कचरे के डब्बे से उठाया गया है। आपके टाइम पे भी होता था ऐसा?
1: नहीं ऐसा तो नहीं होता था,
0: हमें तो बहुत छिड़ाया
1: जाता
0: था। मेरे तो खैर दो ही है, लाइक मैं और मेरी सिस्टर, बट हमारे कजिन्स बहुत है तो वो हमें ऐसे ही बोलते थे जो बड़े थे कि तेरे को तो कचरे के डब्बे से उठाया, से चिढ़ाते थे हमें। बट चलिए बताइए, अभी आपका रिलेशन जो है आपके भाई के साथ वो कैसा है, लाइक इज ही सपोर्टिव, इज ही, कोई ऐसी बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज डू इट, बिकॉज आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकते हैं $250।
1: ओके, सो मेरा भाई यूएस में रहता है एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, ही इज वेरी हम्बल, और माय फादर पास्ड अवे कपल इयर्स अगो एंड ही हैज stepped up so much
0: right.
1: and now hamare family mein either the big sisters or ya to main, but he's always stepping up like a father figure jaise, and I really really appreciate that.
0: Mm-hmm.
1: You know, age ke sath ye sabka maturity aata hai,
0: right,
1: but when you feel like you are the only male in the sibling in terms of our siblings,
0: mm-hmm.
1: then it I think it's another responsibility that you feel. एक अलग सा feeling आता है शायद, I don't know, but he has definitely stepped up a lot.
0: That's so cool and good to know, and of course yeah, मतलब ये तो बहुत ही proud वाली बात भी है that you know there is someone who is there always to take care of you and your family. But thank you so much.
1: Yes.
0: आपके call के लिए, क्या नाम बताया था वैसे आपने? कविता, right?
1: मेरा नाम कविता, भाई का नाम नितिन
0: जी, ठीक है, थैंक यू कविता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड यू एंजॉय द इवनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस कॉम्पिटिशन, टेक केयर,
1: थैंक यू, यू हैव अ गुड वन,
0: बाय बाय। दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-4624 फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
2: वेलकम बैक। अब ऐसे जल्दी से आप फेसबुक पे जाइए और वहाँ पे एक कोई भी मेमोरी जो आपके सिबलिंग के साथ कनेक्टेड हो, आपके और सिबलिंग के साथ, तो उसकी फ़ोटो लेके आप डाल सकते हैं फेसबुक पेज पे हमारे, वहाँ पे फीचर फोल्डर पे आपको पोस्ट दिख जाएगा, उसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको ये करना है। मेक श्योर दैट आप अपने सिबलिंग को भी टैग करिए और एक क्यूट सा 2-3 लाइन का सेंटेंस भी लिख दीजिए उनके मेमोरी को लेके, जो भी ऑब्जेक्ट है। बट यस, उसके साथ ही आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और $300 यहाँ पे भी जीतने का आपके पास मौका है, आज और कल ही। कल के दिन ये डिस्क्लोज हो जाएगा, सो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। एंड यस, एज आई ऑलवेज मेंशन कि आप मेक श्योर करें दैट थोड़ा AI दुनिया से भी रूबरू हो, जितना हो सके आप सीखिए। मेरी मुलाकात होगी आपसे कल फिर से 12-3, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
8: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online.
9: Bunnings Warehouse.
10: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Party Curtains and Blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
11: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
12: Achha?
11: Batao, toada focus. Sada kuch nahi.
12: Mrs. Singh.
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
14: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: हम टाइम चेक. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The full magnitude of devastating flooding at the Nepal-Tibet border is still sinking in. New Zealander Sharon Evans from Freewheeling Kiwi heard about the tragedy from her business partner who lost a tour guide. She says she's still processing.
16: Our thoughts are just with those people up there and supporting them in whatever way we can, albeit from a distance.
15: The death toll is just over 150, with hundreds more missing. Five New Zealanders believed to be on a sacred pilgrimage are reported to be among the missing. Met Service has added a strong wind watch to its list of weather warnings. The wind watch is for Wellington, Wairarapa south of Masterton and the Marlborough Sounds starting tomorrow. Met Service's Heather Keats says heavy snow watches for the central South Island expire now.
17: There is still the chance of snow falling down as low as 400 metres, but things warm up later this afternoon, so the heavy snow will be restricted to higher elevations.
15: Certain cryptocurrency gains would go untaxed under the ACT Party's latest policy. If elected, the party would allow tax-free profits from e-money like Bitcoin as long as it's owned for more than a year. An American police officer has been arrested after allegedly using Flock surveillance cameras to track an ex-girlfriend over 2,000 times. To sport at 10 this evening, the All Blacks matchday squad for the second test against the Box will be named. Injured lock Josh Lord needs to be replaced. Patrick Tuipulotu being subbed at half-time against the Lions may be a clue. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And Tim Seifert smashed an unbeaten 105 off 61 balls as his St Lucia Kings beat the Trinbago Knight Riders by 36 runs in T20 Cricket's Caribbean Premier League.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार वैसे इस समय टेम्परेचर बाहर का 18 डिग्रीज, आज ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला, थोड़ा ह्यूमिडिटी रहने वाली है आज के वेदर में, मेनली क्लाउडी वेदर रहेगा.
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड 4 तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. और 4 के बाद ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरे साथ, यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है, ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. केतन, तुम्हारा लंच आवर कैसा गया? लंच आवर्स कैसे गए तुम्हारे, मतलब 12 to 3?
18: मेरे को माइक तक तो आने दो. इतना
3: मतलब तब तक मेरे को था कि तुम्हें सवाल पूछ लूं. सुनते हुए आओ.
18: हाँ नहीं, बढ़िया गया यार, मजा आया.
3: और तुम्हारे 2 की ब्रेक कैसी थी?
18: घर पे
3: चिल किया, फुल
18: चिल नहीं किया एक्चुअली. दिस 2 वर रियली गुड. बिजनेस वाइज ज्यादा बिजी नहीं था, तो आई हैड अ वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए.
3: रोज जब भी केतन को देखते एक नया आइडिया लेके आते हैं, ये ना ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. वो जैसे होते ना हर सॉन्ग के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, वो थोड़ी देर में एक नया आइडिया बोल रहा है.
18: मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफकोर्स जो मेरा, देखो जब कुछ सालों पहले AI आया था, सो वॉट केम इन योर हेड कि AI आ रहा है, दैट मीन्स कौन सबसे पहले जॉब खोएगा या फिर किसकी जॉब जो है, कौन से डिपार्टमेंट की जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होगी. लाइक जैसे नॉर्मल क्लीनिंग जॉब्स होती है, सॉरी एडमिन वर्क जो होता है,
3: एडमिन वर्क हो गया
18: या फिर
3: डिजाइनिंग का, मुझे लगता
18: नहीं डिजाइन का मुझे नहीं लगा था. डिजाइन इज लाइक आर्ट. तो हमारे जहन में ये था कि सबसे लीस्ट चांस होगा कि एक आर्टिस्ट को उसका आर्ट छीन के AI कर रहा है अगर, सो दैट इज गोइंग टू बी द वेरी डिफिकल्ट. ये हमें लगा था. और एडमिन का सबसे
3: ऐसा नहीं है, डिजाइनिंग का नहीं है.
18: जैसे AI आया और सबसे पहले चीज ये आई कि ChatGPT साहब कोई भी इमेज को कुछ भी कर सकते हैं. तो बेसिकली अभी हमारा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना, जो डिजिटल आर्टिस्ट है, वो बंदा इज एक्चुअली बहुत ज्यादा रिस्क पे, बहुत ही बड़ी थिन लाइन पे. सो इधर दे हैव टू अपडेट इन एवरी मंथ. वो 6 महीने का जो डिफरेंस आता ना, वो तो हो गया अब टाइम. टुडे इट इज एवरी मंथ यू नीड टू अपडेट, क्योंकि AI इज ग्रोइंग सो फास्ट. मतलब मुझे मजा भी आ रहा है ये सब सीख के, दिस इज समथिंग न्यू.
3: देयर इज टू मच टू लर्न
18: बट इट इज वर्थ लर्निंग. क्योंकि ये सीख, जैसे बचपन में हमने पढ़ा था दैट व्हाटएवर वी आर रीडिंग 90% हमारे करियर में आता ही नहीं है. हमें ये कॉस्ट थीटा हाँ ये सब पढ़ाते हैं, कई काम नहीं आ रहा है. कहाँ आप जाके पेट्रोल ये थोड़ी ना बोल रहे हो भाई साहब कॉस्ट थीटा XYZ देना मेरे को. यार ये मैं तो वो नहीं आ रहा
3: है. अगर Y और Z ये है तो X की वैल्यू क्या है?
18: हाँ मतलब वो सामने वाला, अरे भाई तो चुप रहे, पैसा दे मेरा. बट दिस AI इज एक्चुअली हेल्पिंग यू ग्रोइंग योर ब्रेन एज वेल. मतलब जो स्किल्स आप इमेजिन करते थे, नाउ यू आर एबल टू मेक इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू, जैसे आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था दैट यू आर लिविंग विद योर डॉग एंड नेफ्यू, राइट? और आप कुछ मेमोरी क्रिएट करना चाहते थे, व्हाट यू डिड? आपने वीडियो बनाया. वो वीडियो अब हमेशा आपके पास रहेगा. लाइक व्हेनेवर आज से 5-10 बाद जब आपका नेफ्यू बड़ा होगा वो देखेगा, तो इट इज लाइक अ मेमोरी एज वेल. बट क्या AI के बिना आपके साथ पॉसिबल था ये, एक कार्टून बनाना?
3: नहीं
18: था. इट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग. सो यही है कि दिस इज गोइंग, और यही चीज में मैंने अपना दो हफ्ता बिताया है, समझा एंड नाउ बहुत एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा बट आई कैन
3: बट यू लर्न समथिंग
18: अ लॉट एक्चुअली आई वुड से अ लॉट मतलब मैं जैसे क्लॉड का जैसा आपने अपने पॉडकास्ट में बोला था सो गाइस जस्ट अ शाउट आउट अगर इफ यू स्टिल वांट टू लिसन टू दैट पॉडकास्ट इज स्टिल देयर राइट सो दे कैन गो एंड चेक आउट वेरी नाइसली डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है
3: या सो इट्स एक्चुअली मैं या ऑफ कोर्स हमें कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा
18: और उनके थ्रू ही मैं एक्चुअली क्या वो पॉडकास्ट सुन के ही मैंने ये चीज शुरू करी
3: वो क्लॉड वाली
18: हां क्योंकि मुझे पहले सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी के बारे में पता था और वो भी लिमिटेड चीज पता थी
3: मोस्टली यही ट्रेंडिंग है
18: वो सबसे हाइप पे गए लेकिन वो ये लिमिटेड चीजें पता है कि भाई हाँ टेक्स्ट को ये कर लो स्पीच लिखवा लो कुछ भी कर लो बट क्लॉड इज द वन आपका इतना पैसा बचाता है और गलत पैसा लगवाने का भी रिस्क जो है वो अवॉइड करवाता है
3: क्या बात कर रहे हो like, तो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है ये
18: बिजनेस डेफिनेटली वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है इस पर इनफैक्ट अपने लिए भी है लाइक यू नो जैसे फॉर एग्जांपल हमको
3: आई रिमेम्बर एआई के उस पॉडकास्ट में ही सेड द सेम थिंग
18: हां
3: क्लॉड के बारे में
18: हां एग्जैक्टली वो वही सोच के मैं कहा क्या डिफरेंस क्या क्लॉड और ये बाकी की चीजों में
3: उनका फोकस बहुत ज्यादा क्लॉड के ऊपर था
18: एक्चुअली कोई भी फील्ड प्रोफेशनल के लिए आप छोटे बिजनेस वाले हो या बहुत बड़ा आपका एम्पायर है इट डजंट मैटर क्लॉड विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी मेनी वे यू कैन इवन आस्क टू मेक अ डैशबोर्ड टू कीप अ ट्रैक कि भाई आपने जो से बोलता है ना बचपन में लिखा जा बोलता घर वाले बोलते हैं भाई तो लिख के तो रखा कर क्या करना है क्या नहीं करना है भूल तो नहीं गया सो क्लॉड इज द वन हु कैन हेल्प यू विद दैट एज़ वेल
3: या एक्चुअली मैं वो आपकी ईमेल्स भी सॉर्ट कर सकता है रिप्लाई ड्राफ्ट करके रख सकता है आपको जस्ट जाके चेक करना है कि दिस रिप्लाई नीड्स टू गो एंड आप बस ओके करना है आपने कमांड आपको बस एक देनी है
18: एक चीज इसमें और मेरे को अच्छा लगी है क्लॉड में दैट अब पता नहीं चैट जीपीटी में होता है नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल मी एज अ पेरेंट आई वॉन्ट माई किड टू गो एंड लर्न फ्रॉम चैट जीपीटी समथिंग बट मुझे पता नहीं वो चैट जीपीटी क्या सर्च करेगा
3: प्राइवेसी सेटिंग्स है उसमें
18: नहीं नहीं नहीं वो नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइक किस तरह का कॉन्टेंट नहीं फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है उसको मैथ्स सीखनी है हो सकता है वो डायरेक्टली आंसर भी पूछ ले इहान लाइक माई यू नो सन तो मैं क्या बोलूंगा क्लॉड को क्लॉड यूज करेगा और मैं क्लॉड को बोलूंगा कि ये मेरा बेटा है एंड मेक श्योर यू एक्ट एज अ टीचर
3: तो उसमें प्रोफाइल में आपको या इन्फॉर्मेशन डालनी
18: नहीं नहीं नहीं प्रोफाइल में कुछ डालने की जरूरत नहीं एक लेमैन के लिए भी इन द टेक्स्ट ऑल्सो जो एक चैट का जो होता है वहीं पर लिख के उसको बोल दो फ्रॉम नाउ एक्ट एज माई सन्स टीचर सो ही विल मेक श्योर वो जान बूझ के भी अगर कुछ पूछेगा ना तो भी वो नहीं बताएगा बोले कि नो I have strictly told now I'm a teacher. You need to follow this.
3: बहुत स्टडी किया है केतन ये दो हफ्ते देखो
18: मैं तो
3: तो गाइस अगर आपको क्लॉड डाउनलोड करना है फ्री वर्जन यू कैन ट्राई स्टार्ट विद फ्री सो उसके स्पेलिंग है CLAUDE जस्ट डाउनलोड
18: हां क्लॉड अच्छा है मैंने देखा काफी लोग ना क्लाउड कर रहे
3: हैं यस इज क्लॉड CLAUDE अगर आपको सर्च करना है जस्ट गो सर्च एंड देन चेक अबाउट इट

0: 3:22 हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. नेपाल एंड तिब्बत के बॉर्डर पे जो फ्लड डिजास्टर हुआ है, काफ़ी बड़ा एक्चुअली में आज हुआ है. मेजर एंड स्टिल डेवलपिंग डिजास्टर वी कैन से, बिकॉज जो नंबर है थ्रू आउट द डे चेंज हो रहे हैं. कन्फर्म्ड डेथ्स हुई है जो सो फार एटलीस्ट 160 to 162 रिपोर्टेड आ रही है, कन्फर्म्ड डेड अक्रॉस नेपाल तिब्बत बॉर्डर डिज़ास्टर जोन. नेपाल में रिपोर्ट हुई है अराउंड 157 डेथ्स एंड बाकी टेस्ट जो है ये तिब्बत चाइना में रिपोर्ट हुई है. स्केल काफ़ी ह्यूज है. इन नेपाल अराउंड 400 पीपल आर रिपोर्टेड मिसिंग, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स भी है. सो तिब्बत में चाइनीज अथॉरिटीज़ ने बोला है कि अराउंड 558 पीपल आर मिसिंग, जिसमें 260 फॉरेन नेशनल्स हैं. नंबर जो है ये ऑफकोर्स अभी वेरी कर रहे हैं. लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट ये है, न्यूजीलैंडर्स भी है उस पर. 5 न्यूजीलैंडर्स आर अमंग दोज रिपोर्टेड मिसिंग. सो दे वर बिलीव टू बी ऑन कैलाश पिलग्रिमेज जो है वहाँ पर वो थे ट्रैवलिंग थ्रू द हिमालयन रीजन जब ये डिज़ास्टर हुआ. सो ये जो डिज़ास्टर था, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में भी आया है कि दिस वॉज नॉट अ सिंपली नॉर्मल मानसून फ्लडिंग नहीं थी ये. अथॉरिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि लार्ज आइस एंड रॉक का कलेप्स हुआ है हिमालयन ग्लेशियर से, जिसके वजह से ट्रिगर हुआ है एक चेन ऑफ मड स्लाइड एंड फ्लैश फ्लड्स, जिसके वजह से ऐसे फ्लडिंग वहाँ पर हुई है. ये जो रिजल्ट था, सर्ज ऑफ वाटर, मड, रॉक एंड डेब्रीज जो थे, दे रेस डाउन नैरो माउंटेन वैलीज, जिसकी वजह से विलेजेस डैमेज हुए हैं, रोड्स डैमेज, ब्रिजेस एंड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी. सो सम कम्युनिटीज हैड ओनली मिनट्स टू एस्केप. एक्चुअली में मैंने एक वीडियो देखी है, दैट वीडियो इज़ एवरीवेयर एंड बहुत ही कह सकते हैं कि शॉकिंग वीडियो है, जहाँ पे यू नो सामने से ऐसे फ्लड आ रहा है एंड लोग लिटरली भाग रहे हैं बचने के लिए. बट ऑफकोर्स जब फ्लडिंग कितनी ज़ोर से होती है, देयर इज़ नो वे टू एस्केप. सो काफ़ी फॉरनर्स थे उस एरिया में, बिकॉज मेजर डेस्टिनेशंस थी वहाँ पे, ट्रैकिंग ग्रुप्स थे वहाँ पे, इंटरनेशनल टूरिस्ट थे वहाँ पे, माउंट कैलाश वहाँ पे है तो उसके लिए भी काफ़ी लोग वहाँ पे गए थे. सो अमंग दोस जो कि वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जिसमें न्यूजीलैंड के लोग भी थे, इंडिया से काफ़ी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, US, ब्रिटेन, कैनेडा, इन सब से थे. सो मोर देन 400 फॉरेन टूरिस्ट जो थे, दे वर अमंग दोस वी आर फेयर्ड अमंग मिसिंग इन द लेटेस्ट रिपोर्ट. वेल, इसके बारे में कुछ और अपडेट्स आती है तो कंटिन्यूसली आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहेंगे.
1: Hollywood's most wanted.
2: गुड्डी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
3: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
0: 3:25 एट द मोमेंट हो चुके हैं एंड आपको बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ कॉम्पिटिशन्स है जहां पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हम 104.2 FM हमारा फेसबुक पेज का नाम है, वहां पे जाइएगा एंड वहां पे आपको पोस्ट मिलेगी रक्षाबंधन की. आखिरी डे है आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज कल आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कल विनर का नाम घोषित कर दिया जाएगा. लास्ट डे है पार्टिसिपेट करने के लिए. कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपको अपने भाई या बहन के साथ कनेक्ट करती है, उसकी फ़ोटो आपको कमेंट सेक्शन में डालनी है उस रक्षाबंधन पोस्ट के नीचे और उनको टैग करना है. कुछ मैसेज भी आपको लिखना है उस मेमोरी के साथ जो अटैच है एंड दैट्स इट. आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे कैश प्राइज आपके नाम हो सकता है. डिटेल्स आपको वहाँ पे पोस्ट में भी मिलने वाली है. सो डेफिनेटली इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ के देन उसमें पार्टिसिपेट कीजिए.

0: 3:34 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आज साउथ ऑकलैंड में भी दोपहर को एक अनफोल्डिंग सीरियस इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे टू पीपल आर डेड. सो काफ़ी स्कूल्स को लॉकडाउन भी किया गया था जिसका रीज़न अभी एग्जैक्टली नहीं बताया है. सो एमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया था एट वन ऑफ द एड्रेस, एक घर पे बुलाया गया था साउथ ऑकलैंड में एट अराउंड 1:45 PM जहाँ पे रिपोर्ट्स थी ऑफ अ वुमेन हु वॉज अनरिस्पॉन्सिव. सो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो शी वॉज प्रोनाउंस्ड डेड एट द सीन. तो प्रॉपर्टी की सर्च करने के बाद वहाँ पे एक और पर्सन की बॉडी पाई गई, अ मैन हु वॉज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड डिसीज्ड. सो इसका क्या रीज़न है, बिकॉज रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट वहाँ पे थी, एम्बुलेंस ऑपरेशन मैनेजर्स वहाँ पे थे, बट दोनों की डेथ का क्या रीज़न है, एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. एंड स्कूल्स को लॉकडाउन क्यों किया, इसका भी रीज़न अभी तक नहीं बताया गया है. बढ़िया, ये एक अनफोल्डिंग इंसिडेंट ज़रूर हुआ है. दिस हैपन्ड नियर गैम्बियर प्लेस. तो पुलिस ने एक्चुअली में ये एडवाइस किया है इस चीज़ के बारे में जो उन्होंने सो फार बोला है कि ऑल द मेम्बर्स ऑफ पब्लिक टू अवॉइड द एरिया, बिकॉज वहाँ पे यू नो उस एरिया की ओर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस ऑपरेशन आपको मिल सकता है. सो देर इज़ नो थ्रेट टू द पब्लिक दो, बट स्टिल आस्क टू अवॉइड द एरिया. सो कॉर्डन्स जो है ये है इन द प्लेस एट माहिया रोड, एंड इसीलिए वहाँ के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको लॉकडाउन में भी किया गया उस समय पर.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.

0: your family is protected.
1: Book your free insurance review today. Call Assure One on 0800-77-HIRA. That's HIRA. Or visit assureone.co.nz. North Indian Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है. टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, मयंक ताला, कियारा अडवाणी, तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी.
7: हेलो डैडी.
6: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास.
8: इट्स टाइम, आई एम कमिंग.
6: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी.
9: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
10: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है.
9: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया. नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
11: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

20 मिनट बाकी है 4 बजने में. फिलहाल कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड हमारे पॉडकास्ट भी सुनना ना भूलेगा. वेरियस पॉडकास्ट आपके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और इस बार जो हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे बनाई गई है न्यूजीलैंड में. यू नो हम सपोर्ट लोकल के बारे में बात करते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन सपोर्ट लोकल. हमारी कम्युनिटी के लोग, हम कह सकते हैं कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग जो पहली बार यहाँ पे आए, लाइक 1840 से हमारी यहाँ पे शुरुआत हुई है, नॉट जस्ट फ्यू ईयर्स अगो. एंड उस समय पर यहाँ पे आके कैसे सेटअप किया, 100 ईयर्स अगो कैसी लाइफ थी न्यूजीलैंड में, ये सब के बारे में बातें हुई है इस पॉडकास्ट में. एक है रिसर्चर और एक है डायरेक्टर इस डॉक्यूमेंट्री के. सो रिसर्चर जो है हरजोत, उन्होंने बहुत रिसर्च की, उन्होंने टोटल हिस्ट्री निकाली यहाँ पे कम्युनिटीज़ की एंड उन लोगों के पास गए, उनकी फैमिलीज़ के पास गए, वो उनको विज़िट करने के लिए, थोड़े और भी डिटेल जानने के लिए, जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारी जो फैमिलीज़ है वो मिक्स्ड फैमिलीज़ हैं, एज इन की दे आर मिक्स माओरी एंड इंडियन फैमिलीज़ नाउ. सो उनके पास भी गए जहाँ पे ऐसी डिटेल्स भी उनके सामने आई विच वर क्वाइट सरप्राइजिंग एज वेल. कि यू नो न्यूजीलैंड में इमेजिन करो कि एक रग्बी का एक स्टैंड है जो कि एक इंडियन नाम के ऊपर है, उस समय पर जो उस इंडियन की कंट्रीब्यूशन थी यहाँ पे उसको ऑनर करने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं. यहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म है जिसका नाम हिंदू फार्म है, ये मुझे तो ये नहीं पता था. खैर सो ऐसी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट्री में है जो इन्होंने शेयर किया है. इट्स ऑसम डिटेल्स गाइज, मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री है, मस्ट लिसन पॉडकास्ट है. इस पॉडकास्ट में इन्होंने इसका रीज़न भी शेयर किया कि क्यों इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, क्यों इन्होंने न्यूजीलैंड में इतनी बड़ी रिसर्च की जहाँ पे ये काम दो कंधों के ऊपर ही था करने के लिए, कि पूरा का पूरा जब यू नो ए टू जेड काम करना होता है. सो कैसे इन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया, ये सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर भी बहुत कीड़ा होता है कि यार हमें ये करना है, कुछ ऐसा करना है, बट कोई इंस्पिरेशन चाहिए, किसी को सुनना उस समय पड़ता है ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले टू कंप्लीट योर वर्क. सो गो एंड लिसन टू दिस पॉडकास्ट एंड इट्स अमेजिंग पॉडकास्ट. आई विल से इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ लेके

0: लेके जाएंगे, इनफैक्ट कुछ ऐसी बातें आप इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल, बीइंग इंक्लूसिव इज सो इम्पॉर्टेंट. जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, किसी डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, तो उस कल्चर को एक्सेप्ट करना, उस कल्चर में घुलना मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. जो उस समय पर जो यहाँ पे आए थे न्यूजीलैंड में, जो 1840s में 1900s में जो लोग आए थे, जो उन्होंने किया, एंड दैट्स हाउ उन्होंने अपनी पहचान यहाँ पे बनाई, दैट्स हाउ उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट देखा, तो वो सारी बातें भी एक्चुअली में इस पॉडकास्ट में कवर की गई है. सो आप इस पॉडकास्ट को सुनिएगा, एंड देन आप भी खैर इसमें अपना जो व्यू है शेयर कर सकते हैं. पॉडकास्ट सुनने के लिए अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा. अदरवाइज यू कैन जस्ट विजिट आवर रोवा ऐप, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़बी, आप सर्च कीजिए वहाँ पे, या फिर आप स्पॉटिफाई पे सर्च करो, एप्पल म्यूजिक में सर्च करो, वहाँ पर भी ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

बाई 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मेट सर्विसेज के अनुसार पार्टली क्लाउडी और चांस ऑफ शावर है, लेकिन मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ सिटी में, तो धूप खिली है और बहुत ही ब्यूटीफुल धूप खिली है। नॉर्थ ईस्टर्ली इज डेवलपिंग इन द आफ्टरनून, 5:57 को होगा सनसेट। कल का दिन मिला जुला सा रहेगा, बारिश होने वाली कल शाम को।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
1: ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो गया है आज 4:02 पे 27th of August। हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, हाउ आर यू?
1: आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? कॉफी ब्रेक में क्या किया आज?
4: कॉफी ब्रेक में बातें की।
1: अच्छा,
4: बातें इधर उधर की बातें या जो भी हम करने वाले हैं, ऐसी बातें की हमने।
1: अच्छा, ऐसी बातें की? नहीं, यहाँ पे
4: और मैंने पॉडकास्ट के बारे में भी शेयर किया कि क्यों हमारा पॉडकास्ट सुनना बहुत जरूरी है।
1: पंजाब टू आउटर हुआ।
4: ओ यस, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर जो हमने पॉडकास्ट किया है, थोड़ी देर में इस पॉडकास्ट का थोड़ा बिट आपके लिए प्ले करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा सुने, एंड जब आप सुनते हो देन यू विल नो कि बाकी क्यों सुनना चाहिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्यों सुनना चाहिए।
1: वेल, कुछ गॉसिप है क्या? कोई कुछ ऐसा कुछ तड़केदार भड़केदार कुछ ऐसा मजेदार कुछ कंटेंट अगर हो तो ऐसा कुछ मजा आए। ऐसा कुछ है क्या?
4: ऐसा क्या सुनना चाहते हो? मतलब ऐसा क्या ही चाहते हो? आज लिसनर्स को बोलो कोई गॉसिप दो, हम तो आपको अपनी गॉसिप बताते ही रहते हैं। आज आप अपनी गॉसिप बताओ थोड़ी।
1: आपके आपके यहाँ की
4: क्या हुआ? हाँ,
1: आपकी ऑफिस की गॉसिप कुछ आज दो यार। 0800 004866 पे कॉल करो और यहाँ पे आप अनोनिमस होके शेयर करो कि ऐसे आज के दिन में आपने ऐसी कोई स्पाइसी खबर अगर कोई सुनी है, कुछ भी हो सकती है वो।
4: मेरे पास एक खबर है लेकिन वो थोड़ी वो उसमें आ जाएगी, शायद लोगों को पसंद नहीं आएगी शायद वो खबर बतानी।
1: अच्छा
4: वो थोड़ा या फाइन लाइन हो जाएगा। हाँ, शायद
1: तो
4: से
1: मत बताओ, मत बताओ।
4: क्यों यार?
1: नहीं नहीं, पहले
4: इट्स कृति सैनन में भी सबने देखी होगी वो।
1: क्या मैंने नहीं देखा, क्या हुआ?
4: किन्ने तुमने देखा क्या? नहीं, तो नहीं, उसको बोले तुम क्या?
1: हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ।
4: तो कृति सैनन की एक एडवर्ट आई ना।
1: हाँ, कौन सी एडवर्ट?
4: एंड एडवर्ट आई एक रक्षाबंधन की।
1: अच्छा,
4: एंड या तो रक्षाबंधन में वो एडवर्ट कर रही थी, तो मतलब ट्रेंड हो गया कि ये कपड़े पहन के क्यों रक्षाबंधन की एड की है।
1: वो कपड़े गलत पहने उसने।
4: हाँ, तो मतलब
1: क्या
4: ध्यान
1: कपड़े पहने, एक्सप्लेन करो प्लीज।
4: मतलब मैंने जब तक वो कमेंट्स नहीं देखे, मेरे को ध्यान नहीं था कपड़ों के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। कपड़े मतलब कि एज इन एक ब्लाउज पहना था, एंड मतलब एथनिक वेयर था, बट जैसा थोड़ा कैसे बताऊँ मैं, मॉडर्न एथनिक वेयर जैसा आजकल होता है।
1: अच्छा,
4: या एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने ऐसा पहना है, बहुत बार पहना है।
1: इसके ऊपर बोलना ऐसा अलाउड है क्या? लेकिन
4: हाँ,
1: मतलब मेरे को ऐसे जो मुझे पता है कि आज के सदी में लड़कियों के कपड़ों के ऊपर तुम्हारा कोई बोलने का हक नहीं होता है, क्योंकि उनको जो पहनना है वो पहन सकती है।
4: या एग्जैक्टली,
1: तो ये कौन ऐसा कर, किसकी में इतना हिम्मत है भाई जो
4: कि राखी बांधने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कपड़े बांधने चाहिए क्या?
1: बांधने नहीं, कपड़े पहनने चाहिए।
4: सॉरी
1: ये प्रॉब्लम है, अगर तुम कपड़े बांध के राखी बांध रहे हो ना, कपड़े पहन के बांध।
4: वही हुआ। अच्छा, सो या सो बेसिकली इसके ऊपर बवाल हो रहा है, एंड इतना बवाल हुआ कि एड निकाल दी।
1: ओ नो, तो अभी मैं नहीं देख पाऊंगा एड।
4: बट इट्स स्टिल, इट्स इंटरनेट यार, इंटरनेट पे जो एक बार चीज आती है इट स्टेज।
1: 0800 004866, आपको क्या लगता है अगर आपने एड देखी है?
4: एंड मोर ओवर उसका फर पपी भी था वहां पे एड में, नॉट हर फर पपी, इन द एडवर्ट द करेक्टर वाज अ फर पपी एज वेल, भाई के साथ उसने फर पपी को भी बांध दी, तो उसके ऊपर भी बवाल है।
1: ओके, आप डॉग को राखी, ये तो बहुत गलत बात है, क्यों नहीं बांध सकते डॉग को राखी?
4: वो तो सबसे ज्यादा रक्षा करता है।
1: मुझे
4: ऐसा लगा वो देख के कि पहली बार तो मेरा उसकी नेकलाइन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं गया। Maybe because I'm a woman, तो मैंने वो चीज नोटिस नहीं किया ऐसा कुछ। तो मे बी भाई सामने जो बैठा होता बाइसेप्स के साथ, शायद ध्यान उधर जाता कि भाई उसके बाइसेप्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। रक्षाबंधन की एड में अगर वो राखी बनवा रहा है, why is wearing a sleeveless shirt या बाइसेप्स क्यों दिखा रहा है?
1: That is a good point.
4: So maybe वो मेरा ध्यान जाता या नहीं जाता। बट या दैट्स अ थिंग कि भाई वहां पे क्यों तुम्हारा ध्यान गया, कि मेरा ध्यान नहीं गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैंने पढ़ा नहीं कि हुआ क्या इस एड में, गलत क्या है।
1: बट ऑनेस्टली आपको एक बात बोलूं क्या, मेरे को ना बहुत दिक्कत है जब भी बिग बॉस भी चल रहा था और ऐसे रियलिटी शोज चलते, या मैं बोलूंगा सलमान खान इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, बिकॉज वाई इज सलमान खान अलाउड टू बी शर्टलेस और एनी अदर हीरो अलाउड टू बी शर्टलेस? इट इज नॉट फेयर,
4: नॉट फेयर एग्जैक्टली।
1: मुझे नहीं लगता कि इवन मेन शुड बी अलाउड टू बी शर्टलेस।
4: या टीवी पे पर्दा डाल देना चाहिए।
1: अगर आप भी शेयर करना चाहते हो आपके थॉट्स इसके ऊपर, 0800-004-866 नंबर है। अभी वो तो मैं देखूंगा ना जब ये तो मुझे पता चलेगा आपने क्या नोटिस नहीं किया है।
4: अब तो तुम देखोगे ही वो।
1: सैंडी आई डोंट बी मीन।

0: कृति सनन का ही गाना कॉकटेल 2 का आप सुन रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिग सिस्टर्स। आज ही मैं एक
1: और जग से लाज यही गाना था
0: जग से लाज ओ माय गॉड। एनीवे आज ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पुराना पॉडकास्ट था, प्रखर को जानते हो आप?
1: नहीं।
0: वो है नया रणवीर, आई मीन नहीं अलग है वो। तो प्रखर का एक पॉडकास्ट था उसके साथ विजय वर्मा के साथ, अपने नहीं
1: नहीं मैं समझ गई, बॉलीवुड के
0: वो जो
1: शी
0: दैट्स राइट या और काफी मिस मिर्जापुर में भी उन्होंने वो जुड़वा का कैरेक्टर प्ले किया,
1: मल्टीपल मूवीज
0: मल्टीपल बहुत कैरेक्टर रोल्स वो प्ले करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। मटका किंग उनकी रिसेंटली आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो उसमें उसने उसको उसको पूछा कि व्हाट डू यू फियर, और एक चीज जो विजय वर्मा के इंस्टेंटली निकली वो है कैंसल कल्चर। He fears cancel culture, बोलता है कि कुछ भी inappropriate हो सकता है आज के जमाने में, and I think it is a very valid fear.
1: बहुत easily चीजें pick हो सकती है
0: क्योंकि अभी like for example वो बोल रहा था कि उसका उसका ही quote मैं बता रहा हूँ, उसने बोला कि आज मैं यहाँ वो fresh lime soda पी रहा था, बोलता है कि 20 साल बाद ये fresh lime soda मैं पी रहा हूँ तो वो भी cancel हो सकता है कि ये sugar पी रहा था। ऐसे कैसे ये शुगर पी सकता है?
1: शुगर को प्रमोट कैसे कर रहे हो जबकि शुगर हानिकारक है?
0: मतलब इट कुड बी ना,
1: मतलब लेकिन आगे ये भी हो सकता है ना, हम किसी डिजर्ट को भी शायद प्रमोट ना कर सके।
0: या कुड बी लाइक yeah like for example
1: sugar is hanikarak na,
0: like 25 years ago smoking was very common and people used to bindas promote kar rahe the usko,
1: fir usko injurious to health aa gaya yeah
0: ha to aise apne ko pata nahi aage chal ke kya aise ho sakta hai, so it's yeah quite cool I thought and I thought I'll share that anyway अभी टाइम है आपको हम एक और गाना सुनाते हैं। काफी सारे कॉम्पिटिशन है जिसमें आप पार्ट ले सकते हो, तो आपको बता दूं
1: आज आखिरी दिन है रक्षाबंधन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए,
0: क्योंकि कल विनर अनाउंस होने वाले हैं। $250 के दो विनर्स होंगे, आज आपको मौका देंगे हम यहाँ पे कॉल करने का और पार्टिसिपेट करने का, एंड दिस इज गोना बी योर फाइनल चांस। फाइनल चांस टू पार्टिसिपेट, तो आज के मौके पे चौका जरूर मारिएगा।

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। Available at all leading stores.
6: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Melukao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Melukao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
7: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all 4 weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
8: Get the Skinny!
9: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
10: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
11: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe.
12: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: 421 at the moment ho chuke hai, Super Se Upar filhal aap yahan pe sun rahe hain. एंड एक ज़रूरी सूचना आपके साथ शेयर करती हूँ कि एशियन फैमिली सर्विसेज की जो आपके लिए सर्विसेज है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है. बिकॉज़ इनका कहना है कि जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है तो आपको इसका अकेले सामना करने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स इट फील्स वेरी हैवी. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब इनका रीच इन रीच आउट प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो कि एक नेशनल कैंपेन है जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको ये आपकी किसी अपने या आपको किसी अपने की मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं 0800 862 342. कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट आप ले सकते हैं. एंड एशियन फैमिली सर्विसेज .nz इज अ वेबसाइट जहाँ पे और भी जानकारी आपको मिलेगी.
14: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
15: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
16: मैं लाऊं अपना ए गेम.
14: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe.
1: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
0: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Cloudy overnight for Auckland with a low of 11 on the northern to Silverdale 49 minutes. Just busy around the Oniwa Road interchange. The northwest into Massey 25 minutes. On the southern, it's heavy northbound Mount Wellington to Green Lane and heading south Newmarket to Mount Wellington. From town to Manukau 39 minutes and hour 10 to Drury. On the southwest and slow from Puhunui Road to the southern and heading north through Mangere Bridge.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. KitchenMania.co.nz.
0: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
5: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
6: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, slick grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
9: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. T's and C's.

0: सुपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है only on हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पे और रुआ ऐप के जरिए आपके लिए हम लेकर आते हैं.
2: या एंड या अभी तो कंटिन्यूअसली
1: क्रेजी ये मैंने अभी पढ़ा सैंडीज के बारे में यार. नेपाल में फ्लडिंग जो हुआ है ग्लेशियर बर्स्ट के बाद
2: काफी यहाँ पे केवीज या
1: एवलांच आया है यार. एवलांच फ्रॉम अ ग्लेशियर. बाप रे वो मैंने वीडियो देखा उसका.
2: इट्स वेरी स्केरी वीडियो.
1: माय गॉड ओ गॉड बाय नेचुरल मतलब जो बोलते हैं ना कि यार जो नेचुरल चीजें हैं जैसे पानी हो गया आग हो गई.
2: काफी न्यूजीलैंडर्स जो मिसिंग है ना रुजबे उसमें न्यूजीलैंडर के मिहिर पटेल एंड केनरी पटेल जो कि एक्चुअली में हैमिल्टन में है वहाँ पे बेस्ट वैल्यू डेयरी है वैसे उनकी. तो वहाँ से है ये भी मिसिंग है.
1: ओह नो.
2: या सो काफ़ी लोग एक्चुअली में वहाँ पे गए हुए थे. सो बिकॉज माउंट कैलाश वहाँ पे भी काफ़ी लोग जाते हैं विजिट करने के लिए.
1: हाँ क्योंकि वहाँ पे पिलग्रिमेज है वो मतलब बेसिकली सीक्रेट साइट है ना.
2: या न्यूजीलैंड ने रेड क्रॉस लॉन्च किया है नेपाल फ्लड एमरजेंसी अपील के लिए. तो दे हैव अपील टू सपोर्ट पीपल अफेक्टेड बाई फ्लैश फ्लडिंग इन नेपाल. सो ये रेड क्रॉस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. एंड और भी काफ़ी ऑकलैंड के काफ़ी है जो कि मिसिंग है जिनमें काफ़ियों का नाम आया है. सो द फैमिली ऑफ सुहासिनी रेड्डी कन्फर्म्ड कि या उन्होंने भी कन्फर्म किया है. सो क्वाइट कह सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोग भी हैं वहाँ पे जो न्यूजीलैंड में फिलहाल रह रहे हैं जो इस फ्लडिंग में मिसिंग है.
1: अरे वो बिफोर एंड आफ्टर वाले जो ये इस पे देख रहा हूँ मैं वन न्यूज पे देख रहा हूँ माउंटेन वैली बिफोर एंड आफ्टर फ्लड्स. माय गॉड इट जस्ट लुक्स सो स्कैरी यार. मतलब बिफोर एकदम ही पतला ऐसा दिख रहा है एंड आफ्टर वो लिटरली इट्स गॉन. माय गॉड इट्स टेरिबल.
2: या इट इज टेरिबल.
1: इट जस्ट शोज द amount of water that has seeped through. My god. And it is sad ki isko pehle predict nahi kar paaye the na.
2: इसको प्रडिक्शन ना इसका प्रडिक्शन नहीं हो पाया इसके बारे में. यही बोला जा रहा है कि ग्लेशियर जो मेल्ट हुआ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ अदर स्टफ ये जब आगे बढ़ा तो जस्ट क्रॉस यू नो जैसे रेस करता है तो इसने एक्चुअली रेस डाउन किया है माउंटेन वैली के बीच में से. That's how it happened.
1: Yeah, इसलिए पूरा उड़ गया है वो मतलब.
2: Yeah.
1: वो माउंटेन वैली को चौड़ा कर दिया है उसने.
2: Yeah, 100%. वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में वहाँ पे इफेक्ट हुआ इस समय पर. The videos are very scary because बहुत सारी सीसीटीवी इमेजेस जो है वीडियोज जो है ये सामने आ रही है.
1: So this is all global warming के कारण. So basically warming हिमालया ये This is what we are talking about. जो global warming हो रहा है और जब चीज़ें warm up हो रही है तो ये सारे ice rocks melt हो रहे हैं और वो basically avalanche create कर रहे हैं.
2: Yeah, और जो debris है river में could cause further flash flooding as well. So Nepal की जो army है they deployed many troops, 2000 troops for search and rescue mission as well. लेकिन मेरे को लगता है कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है बिकॉज काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को अभी मड कवर कर रहा है. सो ये जो फ्लैश फ्लडिंग हुई है इसे मड जितना आया है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर मड ने कवर कर लिया है.
1: क्योंकि इस वीडियोज़ में इन वीडियोज़ में दिख रहा भी है इट्स नॉट लाइक यू नो वाटर वाटर दिख रहा है मड दिख रहा है वो पूरा
2: मड दिख रहा है एक्चुअली. इट्स नॉट वाटर.
1: सो इट्स
2: अ मड स्लाइड डिजास्टर एक्चुअली.

0: भी हुआ है वहाँ पे. It's going to take a community for them to build up again. और ये बहुत unfortunate है नेपाल के साथ. ये you know
1: पहले भी I remember यह हुआ था, ये
0: हुआ था पहले, and then उसके बाद flooding, actually काफी floodings हुए यहाँ पे ये same area में recent times में भी.
1: Yeah.
0: And but this time it was just gone really bad.
1: Yeah, it is really bad. Anyway, back to Super City. यहाँ के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे जो आज incident unfold हुआ है, जिसमें you know एक emergency call गई थी रुजबे, and the lady जिसकी body मिली, she was not responsive. एंड देन उसी घर में एक और बॉडी मिली एक मैन की. उनका हुआ क्या है एग्जैक्टली, वो रीज़न अभी तक पुलिस ने वैसे सामने नहीं दिए हैं. बट स्कूल्स उस एरिया के लॉकडाउन कर दिए गए, एंड पुलिस ने बोला भी उस एरिया को माहिया रोड बेसिकली वहाँ पे कॉर्डन्स हैं, तो पुलिस ने बोला है कि वहाँ पे यू नो अगर अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक आवर से वन पर्सन सेड कि अपने घर पे जाने के लिए वहाँ पे फंसा हुआ है.
0: बहुत ट्रैफिक है मतलब वहाँ पे,
1: मतलब क्योंकि कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ना एरिया, तो उसको हेल्ड किया हुआ है वहाँ पे ताकि वो आगे ना जाए. तो मे बी इन्वेस्टिगेशन आर ऑन इस रीजन से.

0: Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe.
1: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. अभी आपको मौका दे रहे हैं हम यहाँ पे final time participate करने का for the Raksha Bandhan competition. So
2: yes, call now 0800-00-HUM 0800-00-4866 is a number. अभी के अभी आपको call करना है.
1: And आपके sibling का performance review यहाँ पे करना है. और उसके लिए $250 आपके नाम हो सकते हैं, आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. एंड वी हैव, दिस इज योर लास्ट चांस, सो वी वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू. अगर आपने आज से पहले हमेशा ऐसे हिचकिचाया ना यहाँ पे कॉल करने के लिए, आज आप कॉल करें यार, दिल खुल के आज आप बात कीजिए. $250 शायद आपके नाम हो सकते हैं, हु नोज, दिस कुड बी योर लकी डे.
2: अपने भाई या बहन के बारे में परफॉर्मेंस रिव्यू, उनके बारे में आपको बात करनी है.
1: हाय.
3: हेलो, कैसे हो?
1: बहुत ही बढ़िया, कैसे हो आप?
3: मैं भी ठीक हूँ.
2: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम रोशनी है.
1: रोशनी,
2: रोशनी. ओके.
1: तो मेघा का परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाले हो?
3: ओह दैट्स ग्रेट, रिस्पे यू रिमेंबर.
1: हाँ, मैं सैंडी थोड़ी हूँ.
2: कोई बात नहीं.
1: क्या बोल रही है मेघा?
3: मेघा बोल रही है मैं हूँ, साथ में ही बैठी हुई हूँ मैं भी.
1: हाँ,
2: ओके,
1: तो मेघा को परफॉर्मेंस रिव्यू करना है या रोशनी को करना है?
3: मेघा को करना है.
1: क्या बात है. मेघा बताओ, रोशनी क्या क्या क्या बुराइयां है रोशनी की, बताओ हमें सब.
3: मेघा बोलो.
1: क्या मैथ्स में, क्या बहुत दूर से आ रहा है आवाज सब. हाँ. कुछ करना पड़ेगा आपको.
3: मेघा क्लियर क्लियर बोलो बेटा.
4: वो मैथ्स भी है, कर सकती है और वो मारती भी है.
2: मारती भी है.
1: ओके. और मैथ्स में हेल्प करती है. मैथ्स में हेल्प करती है.
3: और बताओ, आप कैसे उसको ऑर्डर देते हो काम करने के लिए, फिर वो करती है आपके काम?
4: जब उसको कोई काम आता है तभी वो प्यार दिखाती है.
1: तभी वो प्यार दिखाती है. जब
2: और प्यार से वो आपको क्या कहती है मेघा?
4: बस बोलती है मेरा मेघा, और फिर बस बोलती है कि क्या काम है, तो मुझे समझ आ जाता है कि वो काम चाहिए.
1: अच्छा, वो जो प्यार से बोलती तो इनका काम होता है कुछ.
2: लेकिन चेंज हो जाती
1: लेकिन,
2: है.
1: लेकिन मेघा तुम भी बरसती तो होगी ना, आई मीन तुम भी भड़कती तो होगी ना.
3: वो रोशनी बताएगी, रोशनी
4: राणा.
1: एक्सट्रीमली.
4: बारिश आती
1: है
4: तो तेज
1: बारिश
3: आती है. बारिश आती है तो
1: तेज बारिश के बने मैं उसका लाइट
3: के बनती है. क्या क्या बोली?
1: क्या बात है सपना. आपको आपको रेनी सीजन बहुत पसंद है क्या?
3: रेनी सीजन. हाँ,
1: वही ऐसा लग रहा है.
3: दुबई में बारिश होती नहीं थी ना मुरुज़ पे.
1: हाँ, तो इसलिए
3: इसीलिए
2: तभी रोशनी और मेघा है.
1: किसका नाम दीपक है?
3: और हस्बैंड का.
1: हस्बैंड का नाम दीपक है. अच्छा.
2: अरे वाह.
3: हाँ, तो फिर वो जैसे ही जैसे रोशनी हुई तो मैंने बोला नहीं, इसका नाम रोशनी रखेंगे तो दीपक की रोशनी हो जाएगा.
1: ओह,
3: तो
1: नाइस.
3: बाय
2: बाय एवरीबॉडी. बाय
1: बाय. थैंक यू सो मच यार फॉर शेयरिंग. थैंक यू. आपका नाम
2: सो मच. थैंक यू.
3: बाय बाय.
1: बाय बाय. Wow.
2: So yeah, आज हमने आपको लास्ट चांस दिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए.
1: अभी मेरे पास अभी भी 2 मिनट बाकी है. अगर 2 मिनट के अंदर कोई कॉल करता है यहाँ पे और पार्टिसिपेट करना चाहता है, फाइनल चांस टू पार्टिसिपेट फॉर रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन. बट अदरवाइज सैंडी, बॉलीवुड में क्या हो रहा है ये भी बता दो यार.
2: बॉलीवुड में 38 years of Salman Khan ho gaye yaar.
1: Oh wow.
2: Wow, 38 years of Salman Khan in Bollywood.
1: 38 years of in Bollywood. Aur वैसे Salman Khan ye to वैसे unke kitne saal hue total?
2: Total
1: 68. 60 years. How old
2: he's
1: is 60, Salman?
2: He's 60 year old na.
1: Achha, 60 year
2: he
1: old.
2: He will be 60 year old this December, I think so.
1: Oh wow.
2: Yeah.
1: That's nice yaar. To late chalu kiya Bollywood mein वैसे देखा जाए तो.
2: Yeah, काफी late chalu kiya.
1: 22 ki age mein.
2: इतना भी लेट नहीं है. आई मीन आई थिंक दिस इज द नॉर्मल ना. हाँ. अभी आजकल ज्यादा यंगस्टर जो स्टार किड्स है वो बहुत यंग में आ जाते हैं.
1: जल्दी आ जाते हैं.
2: या अदरवाइज नहीं.
1: He was also kind of star kid but different kind of era था वो टाइम. राइट ऑलराइट. तो और भी बातें करेंगे आपके साथ. आप सुनते रहिए हम आपके लिए 5 बजे के बाद.
2: रिमेंबर सोशल मीडिया पे जाके भी रक्षाबंधन के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा बिकॉज वहाँ पे भी चांस है कैश प्राइज जीतने का.
1: हाय आपका स्वागत है. क्विकली 1 मिनट है आपके पास. क्या नाम है आपका?
5: हेलो.
1: हाय क्या नाम है आपका?
5: हाय हाय मेरा नाम आकांक्षा है.
1: आकांक्षा बताइए क्या कहना चाहेंगे आपके सिबलिंग के बारे में?
5: तो लाइक रक्षाबंधन के लिए लाइक अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है ऑल ऑफ अस हु आर फार फ्रॉम आवर फैमिली एंड फ्रॉम आवर कंट्री आई थिंक ऑल ऑफ अस वेंट टू द सेम काइंड ऑफ इमोशन. तो जहाँ पे हम सबसे ज्यादा लाइक मिस करते हैं अपनी कंट्री को. बट या जो मुझे एक चीज जो मुझे याद आती है हम लोग क्या करते थे रक्षाबंधन पे मैं और मेरा भाई वी यूज्ड टू डू अ मैच वो भी WWE रेसलिंग का.
1: ओह वाओ. आपका बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? आकांक्षा बड़ा भाई है कि छोटा भाई है?
5: छोटा भाई
1: है. वही तो आप पटकते थे उसको.
2: हाँ छोटे भाई से ही हो सकता है ये.
5: Exactly. बड़ा होता तुम नहीं लेना ना. तो हम ये करते थे और फिर हमारा होता था कि जो भी जीतेगा ना उसको 500 एक्स्ट्रा मिलेगा. सो
1: वाओ. फिर टैग टीम एक्टिव तो नहीं करते थे ना कि चलते थे मैं तेरे मेरे दोस्त को लेकर आते तो तेरे दोस्त को लेकर आ.
5: नहीं तो बेसिकली क्या था हम लोग ना बहुत देखते थे बचपन में WWE रेसलिंग. तो हमारा एक एक फेवरेट होता था तो वी यूज्ड टू जस्ट मिमिक देयर स्टाइल.
1: आपका कौन था फेवरेट?
2: कौन था आपका? कौन था?
5: मेरा था
1: रॉक. रॉक जस्ट मैन व्हाट द रॉक इज कुकिंग. आई नो मैन. मेरा भी रॉक फेवरेट होता था. रॉक बॉटम. मैं रॉक बॉटम देता था फिर वो सारे चीजें.
5: मैं अमृता बोल रही हूँ.
1: कैसे हो अमृता आप?
2: यस अमृता
5: मैं गुड थैंक यू.
1: गुड हो ना?
5: आप कैसे हो?
2: एकदम
1: अभी बस बढ़िया ही है अभी. अमृता टाइम तो अप हो गया है.
5: हाँ जी.
1: लेकिन कोई बात नहीं आपका आपका नाम हम ऐसे ही ड्रॉ में डाल
5: देंगे. मैं काफी देर से वेट कर रही थी. तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे सिबलिंग सारे कनाडा में हैं. मैं अकेली यहाँ हूँ न्यूजीलैंड में.
2: आप ऑनलाइन भेजती है राखी या फिर पोस्ट?
5: हाँ जी मैं पोस्ट के थ्रू भेज देती हूँ.
2: ओके.
1: ओह वाओ.
5: तो इस बारी बहुत याद आ रही थी ब्रदर की तो मैंने कहा चलो मैं कॉल करके बताती हूँ अपने लिसनर्स को कि मैं एज अ बिग सिस्टर हमेशा मदर का रोल प्ले किया है. समटाइम्स वो नहीं होते थे तो आई यूज टू कुक फॉर देम यू नो. कभी कभी स्कूल के लिए तैयार कर देना ये सब.
1: तो आप कितने बड़े मतलब हाउ ओल्ड हाउ
2: डिफरेंस है?
5: 3 siblings और आर यंगर.
1: अच्छा और कितना एज डिफरेंस है आप के बीच में आपके और लेटेस्ट
5: लाइक मेरी सेकंड जो मेरे से छोटी सिस्टर है उसका 2 साल का फर्क है मेरा और उसका.
1: अच्छा.
5: और तीसरी वाली का फिर 5 साल का एंड देन ब्रदर हुआ उसका तो 8-9 years का फर्क है.
2: तभी वो मदरली मदरली ना.
1: दैट्स राइट.
5: या
1: ठीक है. थैंक यू सो मच यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए.
2: थैंक यू अमृता. हैव अ
5: गुड डे.
1: यू टू.
5: थैंक यू जी. बाय. थ्रोबैक
6: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.

0: आज का सेगमेंट बहुत ही बढ़िया होने वाला है बिकॉज यू आर गोना बी हियरिंग दीज टाइप ऑफ सॉन्ग्स.
1: एक मुलाकात
2: दिस इज आयुष्मान खुराना.
1: बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो
2: यूजली ये गाने ना बाकी आवर्स में अभी नहीं सुनते हैं एक्सेप्ट संडे नाइट मेलोडीज. Yeah.
0: ऐसे टाइप के गाने.
2: Some real famous गाने भी.
0: क्या लगता है आपको ये सेगमेंट का क्या नाम है? मतलब ड्राइव लिख कर भेजिए 5599 पे. आज कैसे टाइप के गाने ट्रेंड मेकर्स में 6 से 7 के बीच आप सुनने वाले हैं. हमने आपको डेमो दे दिए, 4 गाने सुना दिए आपको, बट ऐसे और भी गाने हैं. इन गानों को क्या बोलते हैं?
2: या और ये गाने स्पेशली आपके लिए संडे नाइट मेलोडीज में भी पूरे 1 आवर में प्ले होते हैं. सो ये बस आपको हम थोड़ा आज उसका टीजर दे रहे हैं कि कैसा होता है. तो आप भी यहाँ पे मैसेज करके बताइए. 5599 इज अ नंबर.
0: या 5599 इस जॉनर को क्या बोलते हैं?
2: इस जॉनर को क्या बोलते हैं? अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने ये वर्ड बोला भी है.
0: अच्छा, आपने बोल दिया ऑलरेडी.
2: हाँ, लेकिन अगर ध्यान से सुना है आपने, लेट्स सी
0: वो तो कोई
2: ये कौन से गाने ये कौन से गाने आप सुनने वाले हैं इस बार. 5599 पर लिख के भेजिए. इन गानों को क्या कहते हैं?
0: सॉन्ग्स.
2: Not really.
0: अच्छा, उन गानों को क्या कहते हैं?

0: value. Beds are Us, Manukau and Pukekohe.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: Power Drive at 5 आपके लिए अभी जारी है. वैसे अभी हम आपके लिए lines open कर रहे हैं to participate for Father's Day competition. Father's Day competition में we are inviting fathers to participate this time.
4: Yeah.
3: आपको यहाँ पे call करना है और हम आपका यहाँ पे test लेंगे. कल काफी fathers ने try किया actually. Today we'd want to need other fathers also to try out.
4: सवाल आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना होगा यहाँ पे.
3: Fathers who have teenage sons and daughters.
4: Yeah, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे. एंड बच्चे भी, जेन अल्फा भी है जिनके, वो भी कर सकते हैं बिकॉज आजकल सबसे ज्यादा स्लैंग्स तो वही यूज कर रहे हैं.
3: जी, सो गेट इन योर कॉल्स हियर 0800-004-866.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: You're listening to हम playing Bollywood's biggest hits और यहाँ पे हम लोग अभी invite कर रहे हैं Father's Day calls. अगर Father's Day में आपको भी participate करना है 0800-004-866 is the number. बहुत कम time बाकी आ गया आपके पास यहाँ पे participate करने के लिए because अगले हफ्ते इसका draw होने वाला है.
2: Yeah, अगले हफ्ते ही इसका draw होने वाला है and वो भी Friday के दिन. So इसलिए बहुत कम समय है आपके पास यहाँ पे participate करने के लिए. आज रक्षाबंधन का कंपटीशन आपके लिए रैप अप हो गया, कल इसका ड्रॉ होने वाला है. सो फादर्स डे का नेक्स्ट फ्राइडे को. सो अभी आप कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 इज द नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है.
1: और अगर फेसबुक पे जाके आपको पार्टिसिपेट करना है तो फेसबुक पे भी हमने एक कॉम्पिटिशन आपके लिए ओपन अप किया है जहाँ पे आप आपके फादर के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो अवतार बना सकते हो एंड आपका चांस मतलब ड्रॉ में आपका नाम चला जाएगा टू विन $300 कैश. सो यू हैव टू क्रिएट एन AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड और आपको जो हमारा फेसबुक पेज है हम 104.2 FM वाला फेसबुक पेज उस पर जाके आपको ये पोस्ट करना है, हमारे पोस्ट के अंदर कमेंट करना है एंड वहाँ पे फिर अपने डैड को भी टैग करना है और अपने दोस्तों को और अपने फैमिली फ्रेंड्स को फैमिली को जाके कहिए उसको लाइक करें एंड या
2: तो अपने डैड को. अगर आप सुपर हीरो देखते हैं तो AI के जरिए वो सुपर हीरो इमेज बनाने का समय आ चुका है. इट्स वेरी इजी. सो AI अगर आप यूज करते हैं,
1: अगर मतलब क्या सुपर हीरो होते ही है डैड्स यार. या डैड्स आर सुपर हीरोज
2: 100%.
1: कितना बोझ उठा रहे हैं वो किसी का, सोसाइटी का. एंड या
2: उनकी वो इमेज जो आपके माइंड में है एज अ सुपर हीरो उसको ऐसा यू नो कागज पे उतारने के लिए बाद में प्रिंट आउट लेना है इस इमेज का. सो फिलहाल तो आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में फेसबुक पेज पे जाइए, आपको फादर्स डे की AI इमेज मिलेगी, उसी AI इमेज के नीचे अपनी AI इमेज जो है पोस्ट कर दीजिए.
3: सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना A game.
5: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नीरज श्रीधर, कविता सेठ की आवाज। आप सुन रहे थे बंधु 2.0 कॉकटेल 2 का ये गाना, जो कॉकटेल 2 मूवी सैंडी को बहुत अच्छी लगी, उसी का ये गाना था।
1: बहुत अच्छी तो नहीं, मतलब इट्स अ गुड वॉच।
0: आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ये ड्राइव थ्रू कन्फेशंस। ड्राइव थ्रू कन्फेशंस में होता यह है कि आप यहाँ पे हमें कॉल करके एनोनिमस रह के आप कन्फेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ आपके दिल पर है, कोई चीज़ यू नो, ऐसे वो काफ़ी बार होता है ना कि कुछ भारी आपके,
1: अगर आपको दिल हल्का करना है आज,
0: दिल अगर हल्का करना है, कुछ ऐसी चीज़ कहनी है, तो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू गिव अस अ कॉल एंड शेयर दैट विद अस। एंड वी हैव अ कॉलर ओवर हियर। हाय, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है ड्राइव शो में।
2: हाय, हेलो
0: जी, क्या है आपके
1: है?
0: दिल में जो आपको कहना है।
2: अच्छा, मैं एक बात शेयर करनी सबके साथ, अगर आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हो। मैं तुम लोगों की सेवा करूँ, लाइफ वाइज में काम करती हूँ, लाइफ वाइज हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। तो आज कल का हमें मैसेज आया था कि मीटिंग अटेंड करनी है, आज हम सब लोगों ने 3 सेशन में मीटिंग अटेंड किया, हमें सडनली बोल रहे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया।
1: कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया?
2: हाँ, कोई उसमें रीजन नहीं है, कुछ नहीं हमें बता रहा। हम 400 to 500 वर्कर्स है, सभी इतना परेशान है।
0: तो एक मिनट,
1: 400 to 500 वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया, मतलब सबको बोला ये?
0: सो मतलब क्या, मतलब जॉब, आपका जॉब चला गया, ऐसा बोल रहे वो?
2: हाँ, ऐसा बोल रहे हैं।
0: अच्छा, और
2: हम 400 to 500 वर्कर्स है।
0: ओके,
1: और इसके बारे में मैं अभी चेक कर रही हूँ साथ साथ में रुजबे, कोई न्यूज नहीं आई है? नहीं तो हमेशा ऐसा न्यूज आती है ना, कोई इतना बड़ा कुछ होता है तो
0: 400-500 वर्कर्स अगर। और मेरे को ये बताइए, मतलब उसमें क्या है, मतलब रिडंडेंसी पैकेज ऑफर कर रहे हैं कि क्या सीन है? मतलब
2: हमें वही तो, इसीलिए तो उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया, अगर ऐसा बोलेंगे तो उनको एम्प्लॉइज को पैसा देना पड़ेगा।
1: ओके, तो मतलब कि
2: सभी, सबके पास कार है मोस्टली, कोई वर्क वीजा है वहाँ से स्पॉन्सर हुआ है, तो वो सभी टेंशन में है, खाना नहीं खा रहे अच्छे से, आज काम पे नहीं कंसंट्रेट कर रहे, नींद नहीं आ रही, तो मॉर्गेज कैसे जाएगा?
1: तो दिस इज अ बिग नंबर, मैं वो सोच के हैरान हूँ, 400 to 500 लोगों को अगर एकदम से बोला है।
0: कितना टाइम दिया आपको, कितना टाइम दिया है, मतलब ऐसे कब तक? मतलब
2: हमें बोल रहे हैं कि 31st October तक है।
0: अच्छा, तो 31st October तक
1: दो महीने
0: आपको बोल रहे हैं कि आपका जॉब रहेगा, उसके बाद आपका जॉब नहीं होगा।
1: तो इट्स नॉट रिडंडेंट कि जहाँ पे आपको पे किया जाएगा,
2: नहीं दे रहे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला मीडिया में भी नहीं जाना, मैं तो अपने हिम्मत करके, फ्रेंड्स ने बोला कि कॉल करो, मैंने कॉल किया, पर हमें पूरा बोला कि मीडिया में किसी ने कुछ नहीं इन्फॉर्म करना।
1: नो डाउट, तभी कोई न्यूज नहीं है,
2: क्लाइंट को भी नहीं बताना कि जब हम क्लाइंट्स के घर पे जाते हैं ना, तो उन्होंने बोला किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी।
0: My God.
1: This is quite weird. अगर क्लाइंट्स को नहीं बताओगे तो अगर 400-500 बंदा कल को गायब है तो how they gonna get the services?
2: वो हमें नहीं पता, मे भी कोई और कंपनी हायर लेगा, ऑनर पता नहीं, हमें सब टेंशन में इस टाइम।
0: My God, yeah, that's quite scary.
2: हम सोचते थे कि AI आ गया, हेल्थ केयर का, कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर का कोई जगह नहीं ले सकता, पर ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया।
0: हाँ, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर को AI कैसे रिप्लेस करेगा ना, वो तो ह्यूमन टच इज वेरी इम्पोर्टेंट ना इसमें, जो आप काम करते हो उसमें।
1: तो आपके सर्विसेज में बेसिकली होता है कि तो जाके होम केयर सर्विसेज भी होती है,
2: को मेडिकेशन देते हैं, शावर देते हैं, चेंज करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, हाउस कीपिंग भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मील प्रिपेयर सब कुछ।
1: ओह या, आई हैव सीन दिस, ओके, नाउ आई नो।
0: My God,
2: this is हमारे लिए थोड़ी आवाज उठाओ शायद।
0: या नहीं, 100% this is something that definitely if we have anyone।
2: मैं काम से बात कर रही थी, मैंने आपको बात की, मेरे हाथ कांप रहे, रोन आ रहा है मेरे, क्योंकि सभी फ्रेंड एक दूसरे के साथ बात कर रहे, कोई सभी टेंशन में।
0: या नहीं, इट इज़ अ स्कैरी वन यार, क्योंकि अगर सिर्फ 1-2 महीने आपको दिए हैं एंड अभी का जॉब मार्केट भी ऐसा है जहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब्स, एंड ऐसे सिनारियों में जो हमारे खर्चे हैं वो तो बंद नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे, वो तो लगे ही रहेंगे वो भी।
1: एंड वो भी, और ये रिडंडेंट नहीं कर रहे, रिडंडेंट वर्ड दे आर नॉट यूजिंग इट, बिकॉज़ उसमें आपको पे करना पड़ता है।
0: नहीं, बट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुल, लाइक इज इट अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है या कैसा, मतलब हाउ डज दैट वर्क, या इज इट अ कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट?
2: नहीं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 40 आवर्स, 35 आवर्स सबके पास।
0: अच्छा
1: अच्छा, आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में पता है, ये वेबसाइट के बारे में?
2: हमें पता है, पर उन्होंने बोला कि अगर ऐसे कर दिया कोई कुछ नहीं कर सकता।
0: ओ अच्छा, ऐसे बोला है। I think we have
1: we can give you a number.
0: नहीं नहीं, हमारे listeners में बहुत सारे ऐसे है हस्ती जो lawyers है या फिर जो you know
1: जिनको
0: पता है,
1: experts है काफी, जो
0: experts है, तो hopefully वो सुन रहे हैं अभी आपकी आवाज, क्योंकि देखो we all can do our part. आपने you have done your part, you have shared this, we have done our part,
1: and that's brave of you. Thank you for doing this
0: by broadcasting this out to our listeners. Our listeners में से कोई अपना part play करेंगे वहाँ पे, and hopefully they reach out and they come up and they help you out in the situation. हम बस इसकी उम्मीद कर सकते हैं, and usually हमारे listeners, हमारी community बहुत supportive रही है हर एक चीज में, and they have always stood by each other. So we're just hoping कि कोई
1: someone who's listening out there जिसको इस चीज के बारे में पता है कि क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, तो थोड़ा
0: because we are not experts. We'll be honest, we are not experts in this.
1: We can spread the word.
0: We can just spread the word. That is what we are hopefully experts at.
2: क्योंकि अगर 2 months का time दिया, सभी घर का mortgage हम कैसे afford करेंगे?
0: Yeah, I know it's very difficult. Yeah. थैंक यू, आपने यहाँ पे कॉल करके शेयर किया है ये चीज़, ये बहुत एक बड़ा मेजर कंसर्न है, एंड आई थिंक 500 लोग के साथ ये हो रहा है, तो देर डेफिनेटली अ फ्यू मोर ऑफ आर लिसनर्स जो अफेक्ट हो रहे हैं एट दिस पॉइंट विद दिस न्यूज़, एंड वी जस्ट होप कि देर इज़ अ रेजोल्यूशन इन प्लेस एंड वी गेट सम हेल्प.
1: सो मे बी जस्ट होल्ड द लाइन, कोई हमें कॉल कर रहा है, तो वी विल जस्ट चेक विद दैट पर्सन.
0: हाय
3: हाय, I don't want to go on air.
0: Okay, okay, so,
1: okay.
0: Hold
1: so
0: on,
1: you just wait.
0: All right. So, एक काम करते हैं. Thank you, आपने यहाँ पे शेयर किया, एक मिनट इनसे भी बात करके देखते हैं. Hi, आपका भी स्वागत है.
4: Hi, रुस्ते, कैसे हो आप?
0: बहुत ही बढ़िया. आप ऑन एयर है अभी, आपको ऑन एयर बात करनी है ऑफ एयर बात करनी है?
4: ऑन एयर बात करते.
1: हाँ जी, बताइए.
0: बताइए.
4: ये सॉरी, मैं ना पहले कॉल पे था किसी और पे, तो ये अपने ये किसी वीजा पे है?
0: नहीं, ये वीजा पे नहीं है, ये तो यहीं पे है, लेकिन काफी लोगों के साथ हो रहा है ये, जो अभी
1: 400 to 500 people
0: जो अभी वीजा पे भी है काफी लोग, और काफी लोग यहाँ के ही है, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा भी हमें पता चला है. मैं इनको ले लेता हूँ, लाइन पे ले लेता हूँ मैं. हाय, आप भी हो लाइन पे? हाँ, तो बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर?
4: इनकेस ये वीजा पे हैं, तो ये माइग्रेंट एसोसिएशन को रीच आउट कर सकते हैं. अनु कलोटी उनका नाम है, शी इज अ इमिग्रेशन लॉयर एज़ वेल.
2: और भी सिटी पर है, मेरे और फ्रेंड्स हैं जो वीजा पर है.
1: अच्छा, आप सिटीजन हो,
0: बट और भी फ्रेंड्स हैं जो वीजा पर है, तो हाँ, तो उनके लिए आई थिंक इन्होंने कॉन्टेक्ट दिया है, उनको आप रीच आउट कर सकते हो. क्या है वो कॉन्टेक्ट भाई, बताइए भाई फिर से एक और बार.
4: उनका नाम अनु कलोटी, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा.
1: ओके,
2: ठीक है.
4: माइग्रेंट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट हैं.
0: चलेगा, माइग्रेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट,
2: ठीक है
4: जी.
0: ऑसम, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयर करने के लिए. और कुछ शेयर करना चाहोगे आप?
2: पर हमें ये है ना कि हमें जॉब से क्यों सभी को ऐसा बोल दिया, उसका कोई रीजन चाहिए, हमें वो पे करें अगर ऐसा करना है तो.
1: मतलब वो रिडंडेंट वाला केस वो नहीं कर रहे हैं कि ऐसा है,
2: वो इसमें निकल गए क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनको पे करना पड़ता है.
0: अच्छा, चलो ठीक है,
2: हम बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा.
0: हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए यहाँ पे और भी कोई जो है कॉन्टैक्ट उनको ढूंढे, और आपका नंबर है हमारे पास.
1: डेफिनेटली सर्च माइग्रेंट वर्कर्स एसोसिएशन एंड यू विल गेट द कॉन्टैक्ट नंबर ओवर देयर,
0: एंड MBIE के वेबसाइट पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफी सपोर्ट अवेलेबल होता है फॉर एम्प्लॉइज, तो आप वहाँ
1: जिसमें सिटीजन्स भी आते हैं. हमने रिसेंटली अभय कोले उनसे बात की थी, एंड उन्होंने इसके बारे में शेयर किया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके भी आप सर्च कीजिए.
0: MBIE की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में और भी. ऑलराइट,
2: और जो जूनियन ज्वाइन किया था, जूनियन के भी साथ हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, वो भी अपने हाथ खड़े कर गए कि सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अपना जॉब नया खोजो.
0: ओह अच्छा, यूनियन ने भी हाथ ऊपर कर दिया. All right.
2: उसमें भी तो हमने फ्री में पे की, वो तो सपोर्ट ही नहीं करते हमारी कभी भी.
0: यूनियन वाले कोई सुन रहे हैं, कॉल करें हमें, बताइए क्या हो रहा है, ये क्या है, ये ऐसा एक्सेप्शनल सिनेरियो. जी ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ पे आपने शेयर किया,
1: थैंक यू फॉर शेयरिंग,
2: थैंक यू। अगर कुछ मिला तो हमें प्लीज बताना और हमारी सपोर्ट करो सबकी प्लीज, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
0: जी 100% हम कोशिश करेंगे, हमारे साइड से पूरी कोशिश करेंगे और आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जरूर मदद करेंगे।
2: ठीक है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू।

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Fly Solomon Airlines. Cloudy overnight for Auckland, a low of 11. The upper harbour is heavy after an earlier crash heading west. Waterview to Rosebank slow on the northwestern. On the southern, just past Prince's Street, a northbound crash. The left northbound lanes are blocked and it's heavy southbound Newmarket to Prince's Street. On the southwestern, slow from Cavendish Drive to the southern and in both directions through Mangere Bridge.
3: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
6: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Coca-Cola 330 ml cans 30-pack, just $23.99 a pack. And Purina One Dry Cat Food 1.4 to 1.5 kg, just $18.79 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
0: Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. The bodies of a man and a woman have been found by police at a property in the South Auckland suburb of Wattle Downs. Earlier this afternoon, cordons were put in place on Mahia Road. Schools and childcare facilities were put into lockdown. A tour guide is among those believed killed by raging floods at the Nepal and Tibet border. Sharon Evans from Freewheeling Kiwi says her business partner leads groups in the area and had to inform the guide's family. She's reeling from the tragedy.
10: Aside from just normal monsoon stuff, I didn't know what was to come. So it's, just trying to process that information.
9: The death toll stands at 165. Hundreds remain missing, including five New Zealanders who were in the area, reportedly on a sacred pilgrimage. The winter storm hammering the South Island is preparing to make its move north. Met Services' Heather Keats says multiple weather fronts are tracking that way. A landslide has closed the Glenorchy-Queenstown Road this afternoon from 1 mile roundabout to Sunshine Bay. Queenstown Police are asking motorists to avoid the road and the Crown Range, the latter due to heavy snow. To sport, week 5 of the NPC Rugby kicks off in just over an hour in Invercargill, Southland hosting the unbeaten Hawke's Bay. The Bay has scored over 40 points in all four of their wins this season. To Rugby League with Machinery House in a league of their own, a restart trial on show tonight in the NRL clash between the Broncos and Storm from 10 to 10. The team that has conceded a try, penalty goal or field goal will choose to either kick off or receive to restart play.
11: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
13: सूचित किया जाता है स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजिला लाल की पति, भूतपूर्व नवुआ निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुडा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी के लिए कविनय लाल को 0210534317 पर कॉन्टैक्ट कीजिए. स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजिला लाल के पति, भूतपूर्व नेताता नवा निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुड्ढा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार फ्राइडे दोपहर 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा. जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए कविनय लाल को 0210534317 पे.
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
5: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
15: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
14: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
13: छह बज चुके हैं ट्रेंड मेकर्स, आपके लिए हम लेकर आते हैं 6 से 7 के बीच. गुड इवनिंग सैंडी, वेलकम टू ट्रेंड मेकर्स.
16: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू रुज़बे. यस, ट्रेंड मेकर्स आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है, जहाँ पे आज आपके लिए हम अनप्लग्ड आवर लेके आए हैं.
13: यस, दिस आवर ऑल यू आर गोना लिसन टू आर अनप्लग्ड beautiful melodious songs.
16: और ऐसे और गाने सुनना चाहते हैं तो संडे नाइट मेलोडी सुनना, उसमें भी ऐसे होते हैं.
13: अनप्लग्ड ये वर्ड सुनने के बाद आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? 0800-004-866. कॉल करके आप हमें यहाँ पे बता सकते हो, या फिर 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ आप मैसेज भी कर सकते हो. अनप्लग्ड अगर आप सुनते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड?
16: या
13: सैंडी, व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू अनप्लग्ड?
16: तो मेरे माइंड में आता है कि लेस इंस्ट्रूमेंट्स, मोर, मतलब वोकल जो है ज्यादा एंड इंस्ट्रूमेंट्स कम.
13: ओके, मेरे इसमें आता है, जहन में आता है कोक स्टूडियो, या फिर टी सीरीज मिक्स टेप, या लाइक वो मुझे, मेरे लिए आता है अनप्लग्ड. मैं जैसे सुनता हूँ, क्योंकि वो पहले थे ना जो ऐसे आए थे.
16: हाँ, उसमें भी ऐसे आए थे. बट अनप्लग्ड हैव क्वाइट अ हिस्ट्री रुज़बे, अगर देखा जाए. अनप्लग्ड बहुत कैसे शुरू हुए अनप्लग्ड गाने, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. वेल, और भी बातें करेंगे, बट फिलहाल आपको सुनाते हैं कि अनप्लग्ड सॉन्ग्स जो होते हैं इनका साउंड कैसा होता है.
13: अनप्लग्ड ऐसा क्यों टर्मिनोलॉजी आया होगा यार?
16: या यही आज हम आपको बताएंगे सर्च.
13: बाकी गाने प्लग्ड है क्या मतलब? अच्छा, ओके, वी विल फाइंड आउट. We will find out, hopefully. हाँ, अभी बज रहा है गाना. ये जो गाना है, इस गाने को जोनिता गांधी ने गाया है. ये गाना बहुत पसंद किया है लोगों ने, इसका अनप्लग्ड वर्जन. मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा
16: जोनिता गांधी की आवाज़ ना अनप्लग्ड सॉन्ग्स के लिए सुटेबल है. सूदिंग सी आवाज़ है उसकी.

0: लिसनिंग टू हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज बहुत ही सूदिंग ब्यूटीफुल गाने आपको सुनने मिल रहे हैं सत्य प्रकाश की आवाज़ में. एक तारा का ये अनप्लग्ड वर्जन आपने सुना एंड और भी ऐसे अनप्लग्ड वर्जन्स इस पूरे घंटे आप सुनने वाले हैं जो यूजुअली आप संडे नाइट मेलोडीज में सुनते हैं ना.
1: यहाँ पे नहीं सुनते,
0: तक सुनते हैं आप?
1: सो संडे नाइट मेलोडीज आप सुनते रहे बिटवीन 8 AM एंड 10 PM. 8 PM टू 10 PM के बीच में आप जरूर सुनेंगे.
0: अच्छा, बीच में कभी कभी प्ले होता है?
1: या 1 hour फुल प्ले होता है.
0: अच्छा, वो आपको पता नहीं कौन सा आवर होता है लेकिन?
1: या अभी याद नहीं है.
0: अच्छा, ओके.
1: बट डेफिनेटली बिटवीन 8 PM टू 10 PM सो सुनते रहिएगा. एंड या अनप्लग्ड गानों के बारे में बात करते हैं तो इट स्टार्टेड विद MTV 1989 में. MTV ने अपना TV शो लॉन्च किया था MTV अनप्लग्ड इन नवंबर 1989. उस समय पर उसमें रॉक पॉप गाने एंड रैप एक्ट होते थे अनप्लग्ड. बेसिकली
0: ये इंग्लिश में भी होता, इंग्लिश में होता था ना मेनली?
1: या अनप्लग्ड में बेसिकली गिटार्स, पियानोज, वायलन्स, फ्लूट ये होते हैं रेदर देन इलेक्ट्रिक गिटार. मतलब इलेक्ट्रिक को हैवी डिजिटल प्रोडक्शन नहीं होती है.
0: सो बेसिकली आई फील अनप्लग्ड इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अनप्लग्ड इज बेसिकली विदाउट अटैचिंग एन एम्पलीफायर एंड हैविंग एनी इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स. जो स्ट्रिंग साउंड्स है मुझे लग रहा है स्ट्रिंग एंड पर्क्यूशन जो नॉर्मल उस पर होता है उसके बेसिस का जो साउंड है उसको अनप्लग्ड बोलते हैं मेरे हिसाब से. एंड दैट्स व्हाई दे कॉल इट अनप्लग्ड कि कुछ भी प्लग इन नहीं करना है.
1: एंड इवन द वोकल पिच जो होती है इट्स बिट मेलो डाउन
0: है.
1: या वो मिनिमाइज्ड होती है उस समय पर.
0: राइट,
1: सो ट्राइंग टू क्रिएट मोर रॉ काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड इंटीमेट म्यूजिकल एक्सपीरियंस इसको कहते हैं अनप्लग्ड को. इसलिए गाने ऐसे साउंड होते हैं. सो टुडे आज आपके लिए हम ऐसे कुछ अनप्लग्ड गाने लेके आ रहे हैं. तुम्हें पता है अनप्लग्ड बॉलीवुड में कब आया?
0: अनप्लग्ड बॉलीवुड में कब आया? नहीं, मुझे नहीं आइडिया सैंडी, कब आया?
1: किशोर कुमार प्लेड अकाउस्टिक गिटार कहते हैं उसको.
0: अकाउस्टिक, हाँ.
1: अकाउस्टिक गिटार इन 1970s क्लासिक.
0: ओह वाओ.
1: या बट द मॉडर्न अनप्लग्ड वर्जन जो था ये ऑफ कोर्स 2011 में आया था और इसे MTV ही लेके आया था. MTV ने उस समय पर MTV अनप्लग्ड इंडिया किया.
0: ओह राइट, 2011 में उन्होंने. मैं एक्चुअली यू आर राइट, अनप्लग्ड MTV अनप्लग्ड आता था सबसे पहले.
1: या आता था उसमें लाइक AR रहमान, प्रीतम, अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर.
0: एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन अरिजीत सिंह का वो सॉन्ग पॉपुलर हो गया था. उसका एक MTV अनप्लग्ड वर्जन था.
1: ओह या, द लंबा
0: 10 मिनट का गाना.
1: 10 मिनट का गाना अरिजीत सिंह का. ओह माय गॉड,
0: वो पहले मैं रेडियो पे प्ले करता था पहले बहुत ज्यादा.
1: बहुत ज्यादा.
0: और लिटरली वो गाना रटा हुआ होता था सबको.
1: तब अभी अरिजीत सिंह नया था.
0: बहुत नया था. एंड आई थिंक दैट वाज दैट वन सॉन्ग जो होता है ना जो तुमको वायरल कर देता है. आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली अरिजीत सिंह मोस्ट प्लेड सॉन्ग. वो उसने अवार्ड शो में
1: गाना आपके लिए
0: शो में गाया था. सोलफुल वर्जन, अरिजीत सिंह सोलफुल वर्जन.
1: आई रिमेंबर द नेम स्ट्रेट अवे.
0: ब्यूटीफुल सॉन्ग. एनीवे आज एंजॉय कीजिए ये बहुत ही बढ़िया सा गाना. आई थिंक दिस इज अर्जुन कनुंगो, उनका बहुत ही बढ़िया अनप्लग्ड वर्जन आपके लिए.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
1: Father's Day bus aane hi wala hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallist tools and accessories plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
5: If you're at the finished stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
6: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
6: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
7: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
6: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
7: 100% authentic and pure as mother's love.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
0: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
1: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe.
11: आप सुन रहे Trendmakers 104.2 FM पे आप सुन सकते हैं और रुआ ऐप के जरिए अगर आपने मिस आउट कर लिया है Trendmakers का हमारे कुछ सेगमेंट तो Trendmakers को आप सुन सकते हैं हमारे रुआ ऐप पे जहाँ पे आपको बिना ऐड का सिर्फ गाने सुनने मिलेंगे।
12: या एंड रोवा ऐप पे आपको हमारे पॉडकास्ट भी सुनने को मिलते हैं। अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे सर्च करेंगे तो आपको हमारा पॉडकास्ट जरूर मिलेगा। ना अनप्लग्ड गानों के बारे में बात करते हैं रुज़बे, तो आई थिंक यूट्यूब एंड इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट रहे हैं इन्होंने बहुत ट्रेंड किया अनप्लग्ड को।
11: पता है विद्या वॉक्स,
12: विद्या वॉक्स सनम पुरी गॉट फेमस फ्रॉम यूट्यूब ओनली विद द अनप्लग्ड सॉन्ग्स।
11: अनप्लग्ड काइंड ऑफ अनप्लग्ड या
12: स्टार्टिंग में उन्होंने अनप्लग्ड नहीं किए लेकिन धीरे धीरे देन दे इंट्रोड्यूस्ड अदर थिंग्स।
11: तो
12: असीस कौर, इवन असीस कौर वॉज अनदर वन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो कि यूट्यूब से आगे बढ़ी। सो दे बेसिकली इन्होंने क्या किया उस समय पर 90s एंड उससे भी पुराने नॉस्टैल्जिया गानों को अनप्लग्ड वर्जन किया, सॉफ्ट वर्जन उसका उन्होंने किया अपने यूट्यूब पे। And that's how वो ज़्यादा ट्रेंड हुए और मुझे लगता है वो परफेक्ट टाइम था इन आर्टिस्ट के लिए बिकॉज ये उस समय पर जो यूट्यूब पे आर्टिस्ट फेमस हुए हैं वो आज कहीं ना कहीं पे है।
11: That's right. काफ़ी शोज मिले उनको उनके बाद
12: काफ़ी शोज मिले।
11: आई थिंक मैं इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा, ये अनप्लग्ड हम सेगमेंट कर रहे हैं, हमारे ऑकलैंड में भी काफी लोकल टैलेंट है, लोकल आर्टिस्ट है जो अनप्लग्ड नाइट्स लेकर आते हैं और अनप्लग्ड गाने गाते हैं काफी बार. एंड वन ऑफ देम आई थिंक हमारे अपने केतन कुमावत,
12: केतन बहुत अच्छा अनप्लग्ड लेके आता है बेनाम्स में
11: वो लोग काफी करते हैं, पर्क्यूशन होता है उनके साथ, पर्क्यूशनिस्ट भी है, बट दे आल्सो प्ले वंडरफुल म्यूजिक.
12: इवन नील पटेल,
11: नील आल्सो डज,
12: सो नील डज, उनका तो हैंडल का नाम,
11: उसका नाम ही नील अनप्लग्ड है,
12: नील अनप्लग्ड है.
11: यस, सो शाउट आउट टू ऑल आवर लोकल क्रिएटर्स एज वेल, लोकल परफॉर्मर्स, काफी नए नाम भी अभी आए हैं सीन में. एंड I think everyone's doing so great. So it's really good to see.
12: It's good to see the community together.
11: Yeah, the community is building up. आपको आपका favorite local musician या singer ये कौन है? आप 5599 पे drive keyword के साथ हमें यहाँ पे लिखकर भेजिए. हमने जिनको शायद मिस आउट कर लिया है या नाम नहीं लिया है.
12: या फिर अगर आप भी गाते हैं तो आप भी अपने बारे में लिख के भेजिए 5599 पर.

0: आयुष्मान खुराना की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आई थिंक आयुष्मान खुराना का मुझे अनप्लग्ड बेस्ट लगता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक उसके नॉर्मल सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं,
1: लेकिन उसकी आवाज ही अनप्लग्ड के लिए,
0: उसकी आवाज अनप्लग्ड के लिए,
1: एंड मुझे लगता है उसके सारे गाने अनप्लग्ड ही है अगर इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल दिया जाए।
0: उसने एक गाना गाया था टी सीरीज मिक्सटेप के लिए,
1: कौन सा वाला,
0: तो मल्टीपल सॉन्ग्स गाए उसने, बट नज़म गाया था उसने वहाँ पे, एंड देन
1: एक आर्को मुखर्जी का है और एक आयुष्मान का,
0: आयुष्मान का बेटर लगता है। इवन पानी दा रंग तो ऑब्वियसली मिट्टी दी खुशबू, ऑल हिज सॉन्ग्स
1: यार
0: जस्ट मेंट फॉर अनप्लग्ड आई बिलीव,
1: दे सो गुड, इवन ये भी बहुत सही था। बट या एमटीवी अनप्लग्ड जो है इन्होंने काफी ऐसा यू नो अपॉर्चुनिटीज दी, अगर देखा जाए तो बहुत सारे सिंगर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे तुमने अरिजीत सिंह का बोला, अरिजीत सिंह का जो अनप्लग था वो डोमिनेट किया था बेसिकली, बहुत नंबर्स उसके आगे बढ़े थे, सो उससे मुझे लगता है अरिजीत सिंह के करियर को काफ़ी बूस्ट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 10 मिनट सॉन्ग।
0: यू नो अनप्लग के वन ऑफ द ओजीज, इनके साथ हमने बात की है,
1: अनप्लग के ओजीज,
0: वन ऑफ द ओजीज जी,
1: किसके बारे में बात कर रहे हो?
0: रघु राम।
1: Oh yeah.
0: So Raghu Ram also Indian Ocean. Indian Ocean jo band tha usme wo one of the lead guitarist the wahan pe. And they were also doing a lot of unplugged stuff.
1: Unplugged ke jo OG hai, इन्होंने drive show के लिए गाना गाया है।
0: उन्होंने drive show, actually drive show के लिए उन्होंने गाना गाया था यार।
1: उन्होंने मतलब ऐसा random ना गाना बना दिया शो के लिए।
0: यार वो निकालना पड़ेगा सैंडी यार वो गाना।
1: Insta पे ना unfiltered PD पे Insta पे उसमें है। Yeah,
0: I think that was such a wonderful time, yeah, and such a down to earth and humble person, yeah. Like he's what a creative.
1: Yeah, नहीं तो artist को ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब तब तक उनका show मतलब हो गया था जितना होना है, but still he did this for us.
0: He did it for us because he liked us.
1: Yeah.
0: Yeah, for a change somebody liked us.
1: Yeah, I'm trying to just find out the video so that मैं अभी play कर सकूँ.
0: अच्छा, कर लो play कर लो यार.
1: Yeah.
0: बट एनी वे इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि हमारे पॉडकास्ट आप चेकआउट कीजिए, हमने लेटेस्ट एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हरजोत और गगन के साथ, हु आर द क्रिएटर्स फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड पंजाब टू आउतेरोआ, और ये आपको डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी ऑन हाउ एंड वेन डिड द फर्स्ट माइग्रेशन अकर इन न्यूजीलैंड फ्रॉम पंजाब, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है ये डॉक्यूमेंट्री, इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा।
1: सो आई फाउंड द सॉन्ग एक्चुअली, या सो रघु राम, या
2: गाड़ी चला रहे हो घर को जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो अरे घर को जा रहे हो, 104.2 FM सुन रहे हो, गाड़ी चला रहे हो पम पम घर को जा रहे हो, सैंडी रोज बेका शो सुन रहे हो, गाड़ी चला रहे हो पम पम घर को जा रहे हो पम पम।
0: क्या बात
1: है, सो कूल यार,
0: क्या बात है। सो या दैट वाज रघु, आपने क्या बोला, रघुराम?
1: मैंने रघुराम बोला, इट्स नॉट रघुराम, या
0: अच्छा।

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits, और यहाँ पे आप सुन रहे हैं सिर्फ अनप्लग्ड गाने इस घंटे 7 बजे तक आपके लिए अनप्लग्ड गाने रहेंगे यहाँ पे और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद हैप्पी आवर शुरू होगा आपके लिए आज थर्सडे का दिन है एंड देन नाइट कैफे में सैंडी आपको पता है कौन आ रहा है आज नाइट कैफे
1: में आज क्रिश आ रहे हैं
0: क्रिश आ रहा है नाइट कैफे करने के लिए क्या बात है तो क्रिश का साथ जरूर निभाना बढ़िया शो लेकर आता है क्रिश
1: बहुत ही अच्छा शो होता है क्रिश का सो उनका साथ भी आप यहाँ पे दीजिएगा हमारे वीकेंड स्टाफ भी यहाँ पे कमाल करते हैं बाय द वे वीकेंड पे अभी आते हैं यहाँ पे जिकाश इज़ देयर आरजू इज़ देयर एज वेल सो अपनी डिफरेंट वराइटीज़ एक्चुअली में ओवर द वीकेंड ये आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं तो इनका भी आप साथ यहाँ पे ज़रूर दिया कीजिए आज जो न्यूज़ आई है अबाउट नेपाल के रेड क्रॉस ने बोला है बिकॉज रेड क्रॉस न्यूजीलैंड रेड क्रॉस इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग द सर्विसज ओवर देयर वाटर शेल्टर एंड सैनिटेशन इसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है बिकॉज जो फ्लडिंग वहाँ पे हुई है इट्स अ मड स्लाइड सो यू नो मड ही पानी के साथ मड ही आगे बढ़ा है जिसके कारण घर पूरे के पूरे मड के साथ ही कवर्ड अप है एंड कुछ तो गिरे भी है
0: बहुत ही बुरा लाइक जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं दे आर वेरी
1: डिस्टर्बिंग वीडियोस सो या रेड क्रॉस ने बोला है कि अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो दीज आर द 3 things वाटर शेल्टर एंड सैनिटेशन दिस इज द रिक्वायरमेंट राइट नाउ सो टोल ऑफ मिसिंग इज लाइकली क्लोज टू 1500
0: पीपल आर मिसिंग
1: या द करंट नंबर
0: न्यूजीलैंड के भी बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं जो मिसिंग है
1: मिसिंग है और इंडियन कम्युनिटी के काफी लोग हैं न्यूजीलैंड से जो वहां पे गए हुए थे एंड वो मिसिंग है इंडिया से भी काफी लोग जो गए थे वो मिसिंग है सो कंफर्म हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कंफर्म किया है न्यूजीलैंडर्स का 5 न्यूजीलैंडर्स आर मिसिंग एंड कौंसुलर स्टाफ इज ऑन वे ऐसा बताया गया है सो कौंसुलर स्टाफ आर डिप्लॉइंग टू नेपाल नाउ
0: दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिल इन वो एक अपन ने लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में शायद बात की थी ना देयर इज दिस वेबसाइट वेयर यू हैव टू गो एंड फिल इन ना कि आप जा रहे हो कहीं बाहर सो दैट आपका रिकॉर्ड रहे ताकि वहाँ पर जब भी कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर कुछ हो तो गवर्नमेंट को पता चले कि आप हो बाहर
1: या
0: सो एनी वे उसकी डिटेल्स अगर हमको पता चलते तो आप तक हम पहुँचाएंगे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बट इन द मीन वाइल इट्स टाइम फॉर अस टू से बाय हम लोग ने आज आपके लिए अनप्लग्ड गाने बजाए
1: अनप्लग्ड गाने आपने यहाँ पे सुने सो थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए अब आपसे मुलाकात हमारी होने वाली है कल
0: एंड बिकॉज अनप्लग्ड सेगमेंट इज नॉट कम्प्लीट विदाउट वन ऑफ द ओजीज ऑफ अनप्लग्ड जिनके बारे में आपने ऑलरेडी मैंशन किया था सनम
1: सनम
0: बैंड सनम पुरी सनम द बैंड इन लोगों ने अनप्लग्ड गानों से ही शुरू किया था और
1: फिर पॉपुलर हुए वो
0: फिर मूवीज में उनके गाने आने लग गए और लोग अनप्लग्ड गाने लग गए इट वाज द सर्कल ऑफ लाइफ मोमेंट फॉर देम बट उन्हीं का ये क्रिएटेड गाना आपके लिए ऑन हम एंजॉय कीजिए
1: बाय
0: बाय हैव अ वंडरफुल इवनिंग

0: तशरीफ ले गए मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUB 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: डॉक्टर ने क्या बोला?
10: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
11: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
12: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। Northernville Advisory Limited, trading as Ashore One, is a licensed financial advice provider.
13: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
15: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।

0: Happy Hour on Hum.
1: चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
3: Bunnings Warehouse.
2: Lowest prices are just the beginning.
4: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
5: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
6: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
8: Tradestaff, industrial employment solution. Tradestaff.
9: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयंक ताला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
10: हेलो डैडी
9: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
11: इट्स टाइम आई एम कमिंग
9: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
12: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening with the latest at 8, I'm Alexander Goldsmith. The Ministry of Foreign Affairs and Trade is still waiting official word on whether any New Zealanders are involved in the Nepal flash flood. MFAT is aware of five Kiwis believed to be in the impacted region. A spokesperson says the widespread and significant destruction is likely to mean verified information will take some time to emerge. Six PACH members of the mongrel mob have been arrested after search warrants were executed in Kawerau this week. Five men will appear in the Whakatane District Court next Tuesday. A late peak in flu cases is taking its toll on healthcare providers. Starship Children's Hospital is deferring some less urgent cases to prioritise young kids with the illness. Respiratory specialist Cass Byrne says it's upsetting.
14: Most families understand, but it's still disturbing because they've got their mind set on having something resolved and suddenly it's going to be deferred for at least weeks.
13: In sport and MPC, Hawke's Bay Magpies are running riot in Invercargill, leading 26-0 approaching half-time. Hawke's Bay are undefeated so far this season, scoring over 40 points in all four of their wins so far.
15: Sports News.
12: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands here.
12: Hum. Night Cafe on Hum. A moment. Krishka Magic. Only on Hum.
17: Welcome everyone. A very good evening to all my lovely listeners जो हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है. Thursday आज है. आज 27th August है. बहुत ही special दिन आपका है तो आपको भी याद करेंगे. लेकिन we are getting closer to the weekend तो बहुत मज़ेदार ये feel हमें मिलने लगा है. Vibe अलग बन जाती है जब weekend के नज़दीक हम जाते हैं. तो जितने भी हमारे प्यारे listeners हैं स्वागत है आपका. और आज का दिन, आज की ये जो शाम है और रात है, बहुत ही आरामदायक होगा, soothing होगा, melodious होगा, sensuous होगा, क्योंकि रिदम एंड रोमांस लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए के बाद एक
12: जज्बात की नरमी, मोहब्बत की राज,
18: विस्पर्स ऑफ इश्क,
17: वेलकम एवरीवन, रिदम एंड रोमांस में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और बिल्कुल तैयार हूं आपका साथ देने के लिए। रात 12 तक ऑल द वे फ्रॉम 8 टू मिडनाइट ये चलता रहेगा आपके लिए रिदम एंड रोमांस, जिसमें सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए होगा। एक के बाद एक हम आपके लिए पेश करेंगे। इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे, क्योंकि आप देखते जाओ कि प्यारे प्यारे गाने किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, किस तरह से आप एंजॉय करते हैं हमारे साथ होकर। बैक टू बैक सॉन्ग्स हर एक घंटे पर रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट। तो चलो आपको फर्स्ट सेट ऑफ बैक टू बैक सॉन्ग सुनाते हैं। जिंदगी हर रोज नया सबक सिखाती है, कभी हंसाती है कभी आंख भर आती है। जो कल था वो आज कहानी बन जाता है, जो कल था वो आज कहानी बन जाता है, बस इसी का नाम जिंदगी कहलाता है। स्वागत है आपका

0: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits, Raksha Bandhan. Ke dauran, aap $300 cash jeet payenge. Hamare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai ya tola jata hai. In fact, ordinary objects or extraordinary memories hi hamare liye kaafi hota hai. Jaise old cassette tape ho ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है, हम फेसबुक पेज पर, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन. दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है, और टैग योर सिबलिंग. ड्रो में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है. विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
1: Night Cafe on Hum. अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री, और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइड the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
6: Your vehicle is already out there every day. The question is, what is it saying about your business? With a Speedy Signs rep, your car, van or truck becomes a rolling ad seen by thousands. One upfront investment, years of exposure. Why let that space go to waste when it could be bringing in new inquiries? Turn every trip into brand awareness. Give Speedy Signs a call or visit speedysigns.co.nz to get your vehicle signage sorted and grow your business faster.
7: Andy didn't think he needed a DVS system.
8: Nah, we're all right, aren't we?
7: But Andy forgot about his daughter who suffered from asthma and allergies.
9: Yeah, Dad!
7: So, Andy got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work making their rooms drier, healthier and more comfortable. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
11: Flooring Extra. Adore your floor.
12: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: Night Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ek aur Father's Day promotion hamare paas, a very interesting one. Dad's AI upgrade. Ye Father's Day, hum aapke dad ko ek super hero ke avatar mein dekhna chahenge. I know ki har ek dad mein ek super hero unke andar chupa hota hai. Aapko creative hona hai. Ek dad ka photo lijiye aur unko badaliye into an AI generated superhero. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर पोस्ट कीजिए. $300 कैश जीतने का मौका है. तो कैसे आप एंटर कर पाएंगे? एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो ऑफ योर डैड बनाएं और पोस्ट कीजिए इन द कमेंट्स ऑफ द कंपटीशन पोस्ट हमारे फेसबुक पर, हम 104.2 FM पर. और अपने डैड को टैग करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है. एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो और कॉम्पिटिशन पोस्ट. मतलब फ्रेंड्स और फैमिलीज को लाइक करना पड़ेगा. और याद रहे जो भी आपके डैड के फोटो को लाइक करता है दे मस्ट बी फॉलोइंग हम फेसबुक पेज और उनको कंपटीशन पोस्ट को लाइक करना होगा. सारे एंट्रीज को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और उन एंट्रीज को ही जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगे टू विन $300 कैश. 4 सितंबर को ड्रॉ होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा. तो अपने डैड के लिए एक AI जनरेटेड सुपर हीरो फोटो आप जरूर बनाएं. द मोस्ट क्रिएटिव वे यू कैन. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Drive podcast सुनना ना भूले, क्योंकि बहुत interesting conversation यहाँ पर होगा युवराज सिंह के साथ में. From classroom to company, young entrepreneurs exploring New Zealand. ये topic पर बातें होगी. क्या होता है जब एक group of secondary school students decide करते हैं to turn an idea into a real business? पीवा मैजिक होता है, और यही युवराज सिंह, अ मेंबर ऑफ एक्सप्लो, ये बताएंगे. एक स्टूडेंट रन बिजनेस है, टेकिंग पार्ट इन न्यूजीलैंड्स यंग एंटरप्राइज स्कीम, यस इनको कहा जाता है. एक्सप्लो को क्रिएट किया गया था एज एन इनोवेटिव कार्ड गेम, जो इनकरेज करेंगे टूरिस्ट और लोकल्स को कि वे डिस्कवर करें न्यूजीलैंड्स हिडन जेम और लेसन नोन डेस्टिनेशंस. थ्रू द गेम प्लेयर्स लर्न अबाउट स्टोरीज, कल्चर और अट्रैक्शंस, जो इन जगहों को बहुत यूनिक बनाता है, और जो यूजुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स के से हटकर इन डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले. फ्रॉम कमिंग अप विद द आइडिया टू अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, और कैसे ये प्रोडक्ट को बिल्ड किया गया और कैसे ये कॉम्पीट कर रहे हैं, येस ये एपिसोड में आप सुनेंगे कि इनका जर्नी कैसे रहा है ऑफ ए न्यू जनरेशन कीवी बिजनेस माइंड्स, जो ये बात प्रूव करता है कि आपको अडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल. आप इस उम्र में भी ये कर दिखा सकते हैं. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर ए फुल ऑडियो और सर्च. अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़बे ऑन रोवर और स्पॉटिफाई, और ये पॉडकास्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: की नरमी, मोहब्बत के राज,
1: Whispers of इश्क,
0: आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, only on हम.
2: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और आपका स्वागत है. प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हम लेकर आए हैं, जिंदगी पर कुछ बातें भी हो रही है और हमारे जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं जो तैयार हो चुके हैं 30 minutes of non-stop music के लिए, तो आपका भी स्वागत है. कुछ रास्ते मंजिल से ज़्यादा हसीन होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में पल भर के मेहमान होते हैं. हम हर चीज़ को संभाल कर रखना चाहते हैं, हम हर चीज़ को संभाल कर रखना चाहते हैं, मगर वक्त के हाथ कभी खाली नहीं होते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ और प्यारे प्यारे शेर व शायरी आपके लिए हम पेश करते रहेंगे आज प्रोग्राम में. सुनते रहो हम. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, प्रमोशंस वगैरह, इवेंट्स, इस पर भी जानकारी मैं इसी घंटे पर आपके लिए लेकर आऊँगा. फादर्स डे प्रमोशन, साथ में रक्षाबंधन प्रमोशन, ये भी आपके लिए जारी है. वेलकम बैक एवरीवन.

0: Cafe on Hum.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. स्वागत है आपका नाइट कैफे में और रात 12 तक ये आपके लिए चलता रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं हमारे पास है. दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 29th अगस्त टू 4th सितंबर एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाउ ऑपोजिट वेयर हाउस फ्रॉम 7:30 PM. इसके अलावा रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू मनुकाउ सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण दे रहे हैं श्री जन्माष्टमी उत्सव के लिए जो 29th to 4th September रहेगा एट रामकृष्ण मंदिर 25 वॉन्सलो एवेन्यू मनुकाउ फ्रॉम 7:30 PM. साथ ही में न्यूजीलैंड संगम NZ संगम इज प्लीज टू इनवाइट कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सारी डिवोटीज को जो 28th August to 4th September रहेगा डेको ऑफ एलिगेंस में 16 लेम्बी ड्राइव मनुकाउ 7:30 PM से ये पूजा शुरू होगा. कथा व्यास रहेंगे नलेश नायडू. साथ ही में श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन द्वारा सादर आमंत्रण है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो 29th August से शुरू होगा और ख़त्म होगा फ्राइडे 4th September. यहाँ पर भी आप जा सकते हैं. आचार्य रहेंगे श्री कैलाशाचार्य जी और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वी आर प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फॉर यू ओनली ऑन हम.

0: Cafe on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. फादर्स डे प्रमोशन भी हम पर शुरू कर दिया गया है. डैड्स रिवर्स ग्रिल के बारे में आपने सुना होगा. क्या आपको लगता है कि आपको डैड को सब कुछ पता है? लेट अस पुट हिम टू टेस्ट. हम हमारे साथियों द्वारा आपके डैड से कुछ सवाल, कुछ फन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनफैक्ट अबाउट मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज किबरी या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज एन ईसिम. इस तरह से आप एंटर हो पाएंगे. डैड कॉल कर सकते हैं ऑन 0800-004-866 पर टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर वो करेक्टली आंसर करते हैं तो फिर उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. 4 सितंबर को एक लकी डैड को का नाम ड्रॉ से निकाला जाएगा और वो $500 कैश जीत पाएंगे. इमेजिन कीजिए $500 कैश आपके डैड को मिल सकता है. सो वी वांट टू नो, इज़ योर डैड एक्चुअली अप विद द टाइम्स या फिर इज ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, जैसे हम काफ़ी लोग करते हैं. डैड को

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, Hump, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Imagine कीजिए दो countries, one epic adventure, zero stress. सिर्फ 12 spaces रह गए. बाली और बैंकॉक गेटअवे विथ सेंडी एंड रुज़बे मार्च 2027 में होने जा रहा है. बाली का विजिट करना, बैंकॉक में टुक टुक में सफ़र करना, मेजेस्टिक टेम्पल्स देखना, बार्गेन्स इनके कलरफुल मार्केट से लेना, माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड का भी मजा लेना, और वहीं बाली में वाटरफॉल्स, वॉकिंग थ्रू ब्रेथ टेकिंग राइस टेरेसेस, स्विंगिंग अबव लश जंगल्स, ये सभी कुछ हो सकता है. तो ट्रेवल विद सैंडी और रुज़बे, ये आपको लेकर जाएंगे ऐसे हॉटस्पॉट्स पर जिसका आपने जिक्र सुना होगा लेकिन कभी आप गए नहीं हैं. इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल इंक्लूसिव. ऑल यू हैव टू डू इज पैक योर बैग्स. अर्ली बर्ड बोनस भी यहाँ पर दिया जा रहा है. अगर आप ट्रिप अगस्त के दौरान बुक करते हैं तो वन फ्री नाइट्स अकोमोडेशन कहीं पर भी न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू. सीट्स लिमिटेड है, बहुत ही जल्दी सीट्स भर जाएंगे. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फॉर दी ऑल एक्सक्लूसिव टूर प्राइस, या सन टूअर्स को कॉल करें ऑन 0800 4 SUN TOURS, यानी 0800 4 786 8688 पर, और बिफोर द स्पॉट इज गॉन आपको सिक्योर कर लेना है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Hey, नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: इट्स द ट्रूथ, यू नो इट। योर गर्ल ग्रुप डू एवरीथिंग टुगेदर। देयर इज इवन अ नेम फॉर इट, टुगेदरनेस। ओह क्यूट। So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
5: A Kogan fan is just like a fan. Both fans do very similar fan things, but with slightly different little logos, shapes, and chords. One fan's a Kogan Smarter Home Heating and Cooling Bladeless Purifier fan. The other fan has a price you will not be a fan of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
6: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
7: Oh, I thought you did.
8: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilyservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
1: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
0: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
1: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
0: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स।
2: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
2: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा कीवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Night Cafe.
8: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू। आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं। थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व ए ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल। आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे। रिव्यू में आप उनको मतलब इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनोय करना 24/7। आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रो में शामिल होकर कैश जीतने का मौका है। 2 lucky winners को $250 ईच दिया जाएगा। 28 August को ड्रॉ होगा और दो विनर्स को चुना जाएगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन. ड्रीम आइलैंड एस्केप जीतने का मौका है. इट कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे. दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातू विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी जीतने का मौका है. इस तरह से आप एंटर कर पाएंगे. आप हमको सुने एवरी वीकडे और अपने कान को खुले रखे फॉर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल. 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनवातू गेट अवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज. थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनवातू. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
2: Welcome back everyone. This is our final hour of Rhythm and Romance. Night Cafe में ये segment आपके लिए चलता है 8 to midnight और एक एक करके आपके favorite songs हम पेश करते हैं, romantic songs भी पेश करते हैं. आप हमें हमारे साथ दे रहे हैं, thank you. 27th August है, आपका जन्मदिन है, a very happy birthday to all those listening to us from Rova. आपका भी स्वागत है. Rova के जरिए काफ़ी फायदे में आप रहते हैं, तो आप Rova के through जो competitions भी जारी किया है या जो जारी होता है from time to time, वो भी आप उसमें भाग लें और शानदार इनाम जीतने का मौका हमारे साथ होता है. थोड़ा हंस लो, थोड़ा खुद से बात करो, जो बीत गया उसका ना हिसाब करो. जिंदगी पलट कर कभी नहीं आती, जिंदगी पलट कर कभी नहीं आती, जो आज मिला है बस उससे प्यार करो. कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी खास होते हैं, कुछ जख्म वक्त के साथ एहसास होते हैं. जिंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती, जिंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती, कुछ राज बस जीने के लिए होते हैं. आपका स्वागत है.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी. बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका साथ हमें मिलता है. कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी हम लेकर आते हैं आपके लिए जैसे हमारे पास टाइम होता है. और पंकज त्रिपाठी ने रिकॉल किया है लाइफ चेंजिंग HT आर्टिकल. इन्होंने रिवील किया है हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल प्लेड अ रोल इन हिज अर्ली करियर. और आर्टिकल को पब्लिश किया गया था 1999 में. गेव हिम एन इम्पोर्टेंट फीलिंग ऑफ प्रोफेशनल वैलिडेशन. एट दैट स्टेज वो काफ़ी यंग एक्टर थे और अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. ईयर्स लेटर इन्होंने इस अर्ली रिकॉग्निशन को याद किया कि जब ये अपने करियर डिस्कस कर रहे थे तो इनको ये आर्टिकल का क्या याद आया. और इससे इन्होंने ये बताया कि कुछ स्मॉल स्टोरीज भी, स्मॉल पीस ऑफ मीडिया कवरेज भी एनॉर्मसली मैटर करता है फॉर एन इमर्जिंग एक्टर. और ख़ासतौर पर चाहे वो मोटिवेट कर सकता है या चाहे वो कॉन्फिडेंस को ब्रेक भी कर सकता है. इसलिए रिपोर्टिंग जो मीडिया करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक्टर की ज़िंदगी में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और बॉलीवुड न्यूज़ अगर हमारे पास समय रहा तो वो भी आपके लिए हम पेश करेंगे. फिलहाल रिदम एंड रोमांस में आगे बढ़ते हुए एक और बहुत

0: कैफे ऑन हम।
1: कुछ देर तक और आपका साथ हम देंगे रिदम इन रोमांस में, प्यारे प्यारे गानों का जो ये संगम हमारे साथ चल रहा है ये चलता रहेगा टिल मिडनाइट। जिंदगी से शिकायत भी क्या करे, जो मिला है उसकी हिफाजत भी क्या करे। कल किसने देखा है मेरे दोस्त, कल किसने देखा है मेरे दोस्त, आज को जीने से मोहब्बत क्यों ना करे। कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है, कभी मुस्कान अंदर का दर्द छुपा जाती है। जिंदगी को सिर्फ चेहरे से मत समझना, जिंदगी को सिर्फ चेहरे से मत समझना, हर रोशनी के पीछे एक रात भी होती है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर तक और हमारा साथ।

नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। रिदम एंड रोमांस में आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते मंडे टू थर्सडे नाइट, नाइट कैफे लेकर आ जाएंगे। हैव अ वंडरफुल फ्राइडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, अगले हफ्ते मिलते हैं। कृष का बहुत सारा प्यार, नमस्ते।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines. Plus, $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
6: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
7: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
6: Well,
7: within my budget?
6: Zelo.
7: Zelo?
6: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
7: Price?
6: $139K for a fully complete 1-bedroom home and $215K for a 3-bedroom home.
7: Zelo. I like the sound of that.
6: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
0: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
2: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल सबसे मैं हूँ टेस्टी सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से दिल का शिकार कर हनी जरा

0: Night Flight on Hum.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में है और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आप

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
3: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
6: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए. सोना संसार, संसार रिश्तों का.

0: Flight on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbi, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
2: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
4: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
5: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
6: Thoda ghoome aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
8: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
7: Perfect blend of spices, tender meat aur fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
8: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
7: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
8: 100% authentic and pure as mother's love.
9: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

0: Flight on Hum.
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेनुगांव. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Indelible Homes.
0: The beat of Bollywood.
8: Best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: नाइट फ्लाइट.

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
3: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
10: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
11: Indelible Homes, your building expert.
12: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
13: Join our tribe!
12: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join our tribe!
14: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
4: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
0: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI. Bye.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Enjoy a stopover in sunny Fiji on your way to epic destinations. Live out your California dreams in LA or San Francisco. Take a relaxing break in stunning Honolulu. Or why not finally take that trip to Asia, Tokyo, Singapore, or Hong Kong? Fiji Airways on sale now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
5: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
6: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
5: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
6: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
5: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
1: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Police are hunting the killer of a man and woman at a property in Auckland's Wattle Downs. The offender fled the scene before officers arrived yesterday afternoon. Police say the community will be understandably alarmed. They say while this appears to be an isolated incident, they are unable to rule anything out. Researchers hope their study into children with an incarcerated parent or caregiver makes a real difference. Auckland Uni's Julia Tolmie says sentencing currently does not account for the impact on young people.
11: We want to look at whether things could be done differently in New Zealand because at the moment judges can accommodate the impact but only as it affects the parent. We don't consider the children as people in their own rights.
10: Scores of Australians and five New Zealanders remain unaccounted for after the massive floods along the Nepal-Tibet border. Australian Foreign Minister Penny Wong.
12: I understand that at least 34 Australians are amongst those missing. We understand these Australians were part of separate pilgrimage and tour groups.
10: The man known as the Butcher of Bosnia has died in prison. Ratko Mladic was behind the Srebrenica genocide, where more than 8,000 men and boys were killed in 1995, and the siege of Sarajevo. To sport, three changes to the All Blacks team for Sunday's second test against the Springboks at Ellis Park. Coach Dave Reddy's injected prop George Bauer, flanker Simon Parker and wing Leroy Carter into the starting 15.
13: So we've gone with a group of guys who are fresh, and I think five of the guys on the bench played a bit of game time on Tuesday.
10: Tupouva'i shifts to lock with Patrick Tuipulotu, Xavier Numia and Josh Morby in the reserves. NPC leaders Hawke's Bay ease past Southland 36-21 in Invercargill last night. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
0: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
14: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजीला लाल के पति यानी नावुआ फीजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप कविनय लाल को 02105343177 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र यानी करिश्मा सिंह, कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजीला लाल के पति यानी नावुआ फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कविनय लाल को 02105343177 पर कॉल कर सकते हैं।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: जबरदस्त हिट्स
15: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
15: हम
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: 12.8 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17. Overnight kam se kam 12 degrees rahega. Aaj badal chhaye rahenge. Subah aur sham ke waqt kuch halki barish ho sakti hai. Sunrise 6:47 am par aur sunset 5:58 pm par aaj ka hoga.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
17: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Munco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up.
14: हेलो क्यूरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। 4 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज में, फिलहाल 6 बजकर और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज है फ्राइडे 28th of August और आज आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
16: I'm good. शुक्रवार है आज और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ऑफिस में आज अंतिम दिन होगा, so there must be a lot of excitement looking forward to the weekend.
14: और साथ ही साथ आज you know weekend के लिए तो plans कर ही रहे हैं होंगे आप, लेकिन Friday को लेकर भी बहुत excitement होती है, जहाँ पर शायद late in the day you are expecting something big, something special.
16: हाँ, ये भी हो सकता है और आज तो बहुत ही खास दिन है और जितने भी भाई बहन हैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
14: डेफिनेटली बहुत सारी शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, जहाँ कहीं भी आज ये दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसे यहाँ पर ऑन हम भी हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और ये सेलिब्रेशन आज थ्रू आउट द डे आपके लिए जारी रहेगा।

0: सनी साइड अप।
1: आज की सनी साइड अप स्टोरी, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज डेज जहाँ पर ये स्टोरी आज तो सुनानी बनती है, बिकॉज इट बीइंग रक्षाबंधन टुडे। आज जो रक्षाबंधन फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। सो दिस पर्टिकुलर सनी साइड अप स्टोरी इज समवेयर फ्रॉम इंडिया। एग्जैक्टली कहाँ की वो मुझे नहीं पता, बट ये एक वीडियो जो है सामने आया है। सो मैं क्या करूँगी, मैं ना पहले आपको ये ऑडियो जो वीडियो पे है ये सुनाऊँगी और इसके बारे में फिर कुछ बातें करूँगी। बट आई फील कि ये वीडियो जो आप सुनोगे तो आपके लिए चीज़ें ना काफ़ी आसान हो जाएगी टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। सो हियर वी गो, आज की सनी साइड अप स्टोरी।
2: चूल्हे बेच बेच के हमारी पढ़ाई करवाई है और हमें पाला है भाई, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया है मेरे बड़े भाई ने। और ये मेरे बड़े भाई हैं, आप देख लो, ये बरूले की दुकान लगाते हैं। जिन्होंने अपने लिए पढ़ाई नहीं की, हमें पढ़ाया लिखाया और आज ये मेहनत कर रहे हैं। और हमारे लिए नंगे थे तो ये शहर निकल गए थे और आज इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और मैं चाहता हूँ भगवान भाई आगे चल के दोनों मेहनत करके एक गाड़ी लेंगे और एक बंगला खरीदेंगे। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई।
1: तो ये जो स्टोरी है ये दरअसल इंडिया की है, जहाँ पर इट केम ऑन इंटरनेट एंड इट केम अक्रॉस टू द पीपल ऑन इंटरनेट एक वीडियो के जरिए। तो एक छोटा भाई है जिन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया और पब्लिकली अपना ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अपने एल्डर भाई के टुवर्ड्स उन्होंने शो किया और उन्होंने पूरी की पूरी बात जो है ये बताई। बरूले क्या होते हैं मुझे नहीं पता, बट इट सीम्स लाइक इट्स सम सॉर्ट ऑफ फूड जो ये इनके बड़े ब्रदर जो है ये दरअसल ठेला जो है ये लगाकर काट लगाकर ये सड़कों पे बेचते थे और वो अभी भी वही कर रहे थे। इनफैक्ट जब वीडियो इन्होंने ये बनाई है तो हिज ब्रदर इज एट हिज फूड स्टॉल और वहाँ पर वो दरअसल बना रहे हैं जो भी सामान, पका रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। ही हैज दिस वेरी shy like smile on his face. वो शर्मा रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू भी है उनके, लेकिन एक भी वर्ड नहीं बोल रहे। He is just listening to his brother and then nodding his head. हामी भरने के लिए शायद अपना सिर जो ये हिला रहे, बट बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। तो उन्होंने बताया, छोटे भाई ने इनके जिन्होंने इनका वीडियो बनाया सही कि ये मेरे बड़े भाई हैं और हमारी पढ़ाई जो है उनकी और उनके छोटे भाई की पढ़ाई जो ये कराने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और ये तक भी बताया कि देयर वाज अ टाइम जब इनकी सैनिक की नौकरी जो है ये लगी थी, बट ही लेफ्ट दैट ताकि ये अपने भाइयों की देखभाल कर सके और उनको पढ़ा लिखा कर यू नो लाइफ में कुछ बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे सके। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपने सपने नहीं पूरे कर पाए, वो खुद उतने पढ़ लिख नहीं पाए, बट ऑन द अदर हैंड अपने भाइयों को उन्होंने ज़रूर पढ़ाया। और ये वीडियो जब सामने आया, आई वाज लाइक कि यू नो हम जब बातें करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पर वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी कि दुनिया में जो है लोग एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके बारे में हम काफ़ी बातें करते हैं ना कि अच्छा यहाँ सो एंड सो कंट्री में सो एंड सो तरीके से ये किया गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये शख्स थे जिन्होंने किसी एक स्ट्रेंजर की मदद की। बट व्हेन इट कम्स टू थैंकिंग एंड अप्रिशिएटिंग द पीपल जो हमारी लाइफ में हैं, किसी ना किसी रिश्ते से हमसे जुड़े हुए हैं, शायद हम उनके एफर्ट्स को भूल जाते हैं।
3: तो अभी क्या है ना कि जो अपने फैमिली के मेंबर्स होते हैं कभी कभार उन पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि भाई अभी मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा इनके लिए।
1: They have to make certain decisions, na?
3: हाँ, और काफ़ी कुर्बानियाँ जो है ये भी देनी पड़ती है एंड इट्स गुड कि उन कुर्बानियों को अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जा रहा है।
1: तो आज की सनी साइड अप स्टोरी, आई थॉट कि इट वुड बी अ वेरी गुड डे टू शेयर दिस कंसिडरिंग कि रक्षाबंधन है आज, तो ऐसे सिचुएशन में चलिए रक्षाबंधन आप भी अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद आज का ग्लोबल हेडलाइंस।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HAV 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
4: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
3: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
4: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
3: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
4: 100% authentic and pure as mother's love.
5: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
6: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI
7: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
1: When India comes to town, Awadhya Roa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.NZ pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: Global headlines.
11: सुबह के मुख्य समाचारों में नेपाल तिब्बत फ्लड डिजास्टर में कम से कम 360 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 5 न्यूजीलैंडर्स समेत 1,400 से ज्यादा लोग अभी भी गायब हैं थाउजेंड्स ऑफ रेस्क्यूअर्स लोगों को बचाने में जुटे हैं लेकिन एक नई बनी झील के कारण एक और भयानक फ्लड आने का खतरा मंडरा रहा है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में यह तबाही फैल चुकी है और अलग अलग एजेंसीज रेस्क्यू के साथ साथ लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है उधर डिजास्टर के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के पिलग्रिम्स और त्रिशील वन पावर प्रोजेक्ट्स के वर्कर्स समेत 290 इंडियन नेशनल्स से संपर्क नहीं हो पा रहा है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक अभी तक 84 इंडियंस को सेफ रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि बाकी मिसिंग लोगों को ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं फिजी पुलिस के मुताबिक 2025 के मुकाबले इस साल जनवरी से जुलाई तक बर्गलरी रॉबरी और थेफ्ट के मामलों में कमी आई है हालांकि व्हीकल थेफ्ट के केसेस 31 से बढ़कर 51 हो गए हैं नेशनल फेडरेशन पार्टी के प्रमोद चंद ने पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने फुट पेट्रोल्स और चेकपॉइंट्स लगाने की मांग की है ताकि आम जनता अपने ही घरों में कैद महसूस ना करें पुलिस ने रिसेंट क्राइम केसेस पर हो रही क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि सिर्फ अरेस्ट से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसलिए कम्युनिटी और पूरे देश को पुलिस की सहायता करनी होगी इंडिया और साथ में श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ ठहरा है। इंडिया ने इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अंतिम दिन श्रीलंका ने जबरदस्त खेल दिखाकर इस मैच को ड्रॉ कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दो मैचेस के बाद इंडिया ने इस सीरीज को 1-0 से जीत लिया है और फिलहाल 51.52 पॉइंट्स के साथ इंडिया वर्ल्ड टेस्ट स्टैंडिंग्स में पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका अभी सिक्स्थ पोजीशन पर है। रैंकिंग्स की ओर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, साउथ अफ्रीका सेकंड, न्यूजीलैंड थर्ड, बांग्लादेश फोर्थ, इंडिया फिफ्थ, श्रीलंका सिक्स्थ, इंग्लैंड सेवंथ, वेस्ट इंडीज एट्थ और पाकिस्तान नाइन्थ पोजीशन पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस सप्ताहांत एक बार फिर जारी रहेंगे। कल सुबह 7 बजे क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी से होगा, जबकि रात 11:30 बजे लिवरपूल नॉटिंगहम फॉरेस्ट से खेलेगा। संडे को कोवेंट्री हल का मैच होगा, बर्नमाउथ एवर्टन से खेलेगा, टॉटनम हॉटस्पर्स की भिड़ंत न्यूकासल से होगी और मंडे को चेल्सी ब्राइटन से खेलेगा, लीड्स ब्रेंटफोर्ड का सामना करेगा। साथ ही में संडरलैंड और फुलहम का मैच होगा, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इप्सविच टाउन का सामना करेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
13: मैं लाऊं अपना ए गेम।
14: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: तो आज का पहला चार्ट बस्टर आपके लिए विवेक हरिहरन और अनुषा मनी की आवाज़ों में हम शामिल कर रहे थे। कमाल की बात ये है कि ये जो चार्ट बस्टर है ये किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक यू कह सकते एक वेब सीरीज आई थी फितरत 2019 की ये थी उसका ये गाना है। And there are times when certain web series or television shows have proven कि उनकी जो composition हो सकती है जो गाने हो सकते हैं जो वो लेकर आते हैं even that could be something so beautiful that आप उसे सुनना ज़रूर पसंद करेंगे।
1: I think धीरे धीरे web series में भी music को अब वो जगह मिलने लगी है जो शायद फिल्मों में थी। पहले उतना देखने को नहीं मिलता था, it was just like whatever the storyline is उस पर ज़्यादा focus किया।
0: और जो title song होता था ना टेलीविजन प्रोग्राम्स का।
1: हाँ, मैंने तो ऐसे भी वेब सीरीज भी देखे हैं जहाँ पर गानों को ठूस दिया गया है।
0: ठूस दिया गया है।
1: हाँ, I mean, कोई सेंस नहीं मेक कर रहा है।
0: डाल दिया गया है कुछ बिना किसी मतलब के।
1: या।
0: एनीवेज टॉकिंग अबाउट वेब सीरीज एंड टेलीविजन शोज तो डेफिनेटली मूवीज के बारे में भी बातें करनी बनती है। टॉक्सिक फिल्म जो है कि रिलीज हो चुकी है। आई मीन इट्स नॉट अ टॉक्सिक मूवी बट द टाइटल ऑफ द मूवी इज टॉक्सिक, जिसमें यश ये दिखे हैं, हुमा कुरैशी है, नयन तारा है, तारा सुतारिया है और कियारा अडवाणी भी है। अपेरेंटली इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें स्टाइल है, स्वैग है, सब कुछ है लेकिन शायद स्टोरी की कमी है। एंड आई वॉज रीडिंग अ रिव्यू ऑन बॉलीवुड हंगामा जिसे पब्लिश किया गया था। अपेरेंटली लोग यश को और उनके अंदाज को तो पसंद कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कहानी से उतनी खुश नहीं है। नाउ आई कांट से एनीथिंग बिकॉज़ आई हैवंट वॉच्ड द मूवी एज येट और आई थिंक दैट शुड बी द केस विद एवरीवन कि जब तक आपने खुद नहीं देखी हो तब तक सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें किसी को ना पसंद आए ज़रूरी नहीं कि किसी और को पसंद नहीं आएगी, हो सकता है वो किसी और को पसंद आ जाए एंड थिंग्स कुड बी डिफरेंट ना। सो विल वेट ऑन दिस अंटिल एंड अनलेस वी गेट अ चांस टू वॉच इट एंड देन रिव्यू इट। बट राइट नाउ बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरें आपके लिए जहाँ पर हम लेकर आते रहेंगे। विल कीप टॉकिंग अबाउट सम अदर इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो हमारे हाथ लगी है। बाय द वे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी आपके आए हैं तो वेरी क्विकली आप सबको याद भी कर लेते हैं ना।
1: थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें याद करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, सबसे पहले राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे। मिस्टर मटा मटा आपको भी ये सुबह मुबारक हो।
0: और इनके अलावा आज मैंडी की ओर से भी मैसेज जो है ये आया है। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे आपने कहा है।
1: गुड मॉर्निंग ऑल, राज आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, हैव अ गुड डे। आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: एंड इनके अलावा आज हमारे पास बॉबी मान जी, आपका भी मैसेज आया है। थैंक यू सो मच सुबह सुबह याद करने के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैप्पी फ्राइडे, एंजॉय द वीकेंड, चीयर्स, जय माता दी। थैंक यू सो मच आपके भी ब्लेसिंग्स के लिए और आपके साथ के लिए।
1: गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे विनीता जी, आपको भी शुक्रवार मंगलमय हो।
0: तो जितने भी लोगों ने आज सुबह सुबह समय निकाल कर हमें याद किया, थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें याद करने के लिए। और इधर दूसरी और आपके लिए हम थोड़ी देर बाद आज लेकर आएंगे 28 अगस्त के बारे में कुछ डिटेल्स, साथ में आज का हमारा पहला सवाल भी। होपफुली यू आर तैयार हमारे साथ पार्ट लेने के लिए।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
3: ए देखो हम आ गए।
4: अटेंशन हम पैसेंजर्स, योर नेक्स्ट बोर्डिंग कॉल कुड टेक यू टू पैराडाइज। Listen out for your special hum boarding call for your chance to win through return tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
5: Let's take a vacation.
4: And $1,000 spending money.
6: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
7: Need a mortgage? Get Buddy.
8: Plenty of cloud today, a few showers later on, high of 18 degrees. Southwest motorway, if you're heading northbound, crash actually going on just before the Queenstown Road off-ramp, blocking the right lane. A bit of Kia Nita going past there, but otherwise we're flying pretty well. Southern, 20 minutes in from Monaco, just building overall, but quite calm. Northwestern, 16 minutes in from Massey, and Northern, a quick 16 from Constellation as well.
7: Expert mortgage advice without the stress. Whatever your property plans, start with Buddy Mortgages.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते
5: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
5: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now 4299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
12: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: अभी 22 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट तो हम आपके लिए लेकर आएंगे ही। उसके अलावा तमाम चीजें आज मार्क की जा रही हैं। आज अगर देखें तो आज के दिन अनंत महादेवन इनका जन्म हुआ था।
0: अनंत महादेवन?
1: हाँ,
0: ये शंकर महादेवन से रिलेटेड है?
1: नहीं नहीं,
0: देन
1: ही इज एन एक्टर।
0: ओके,
1: बॉलीवुड के। उनको आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं।
0: okay.
1: बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था और आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके साथ एजाज खान ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एजाज खान टीवी पर ज्यादा नजर आए हैं।
0: There was a time he was like a big, big celebrity and उनका नाम जो है ये you know, बहुत बड़े बड़े टीवी सेलिब्रिटीज के साथ लिया जाता था। आई थिंक काव्या अंजलि वॉज वन शो जिसके साथ इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली थी।
1: डिस्को शांति,
0: हाँ जी,
1: उनका भी आज बर्थडे है। और इसके अलावा आज अगर देखें करणवीर बोहरा, दीपक तिजोरी, ये सारे आज अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनके साथ आपका भी कोई स्पेशल है, कोई ख़ास है जो अपना जन्मदिन मना रहा है तो अपने मैसेजेस समय से पहले आप 5599 पर हमारे पास भेज दें और आपको हम विश करेंगे अगले घंटे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज ग्लोबली अगर देखें तो कई चीज़ें मार्क की जा रही हैं और आज उनमें शामिल है एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम सभी के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है
0: जी।
1: इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और यूएस में पर्टिकुलरली आज के दिन नेशनल थॉटफुल डे,
0: National Thoughtful Day
1: is all about the spark, you know, छोटे छोटे action that speak volumes. कभी कभार जिंदगी में it's always good to take a pause या slow down, क्योंकि आप तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं, आपके पास आस पास क्या कुछ हो रहा है उस आपको पता ही नहीं चलता। तो National Thoughtful Day आज वहाँ पर mark किया जा रहा है। International Read Comics in Public Day, आजकल तो बहुत कम लोग comics वगैरह I think पढ़ते हैं।
0: Time there was a crazy I would say in regards to this ki log collect bhi karte the na comics ko और कुछ मार्क किया जा रहा है?
1: और भी बहुत सारी चीजें मार्क की जा रही हैं। आप भी कुछ मार्क कर रहे होंगे तो हमें जरूर बताएं।
0: बिल्कुल, हमारे पास आप मैसेज कर सकते हैं, वी लव टू हियर फ्रॉम यू। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक और एक मैसेज आया है संजेश की ओर से, और इन्होंने कहा है, जय श्री राम भाई विजय एंड पूजा, कीप हमिंग TGIF, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू संजेश आपके मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सुनने के लिए और याद करते हुए मैं मैसेज करने के लिए। ट्रूली अप्रिशिएट योर मैसेज दिस मॉर्निंग। बाय द वे, आज का बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे, लेट्स सी क्या आप ये फिल्म गेस कर पाते हैं या नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यू नेम्स आई वुड से जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्लू दे दे, क्लू नहीं सॉरी, ये कह दे कि ये जो फिल्म है, जिस साल की भी फिल्म है, ये बहुत चली थी।
1: अच्छा,
0: और
1: कितने दूर?
0: काफी दूर चली थी, एंड फॉर अ रीजन चली थी, एंड व्हेन प्रोबब्ली यू विल फाइंड आउट द नेम, देन शायद आपको अंदाजा लग ही जाए कि क्यों। एंड आज जो नाम हम आपको देना चाहते इज राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना।
1: मुझे तो रिंकी खन्ना ही नहीं याद है, कैसी
0: दिखती? खन्ना की बहन है, राजेश खन्ना की बेटी है ये।
1: हाँ, दिखने में कैसे लगती है?
0: तो राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना, ये दो नाम आज आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इस गाने के बाद एक और नाम रिवील करेंगे, विच आई हैव टू कीप अ सीक्रेट एज येट, क्योंकि अगर ये नाम बता दिया तो शायद आपको बहुत आसानी से फिल्म का नाम पता चल जाएगा। एंड वी जस्ट वांट टू हैव सम फन विद यू, जस्ट टू सी एंड फिगर आउट कि क्या आप इन दो नामों के जरिए आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे गेस कर पाते ही नहीं। सो राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना, कौन सी फिल्म हो सकती है आज की हमारी मूवी ऑफ द डे? और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, BC स्पेस आंसर या नहीं, 5599 पर आप टेक्स्ट करें। इस गाने के बाद देखेंगे क्या हाल होता है इस सवाल का।
9: Let's go.
15: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
0: आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, तो याद दिला दे आपको कि आज ही जो होगा हमारे रक्षाबंधन के ऑन एयर प्रमोशन का, जहां पर आप सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू करते आ रहे हैं इतने दिनों से, पता चलेगा हु द लकी टू विनर्स आर, जिनके हाथ $250 कैश ईच लगने वाला है। और ऑन द अदर हैंड हमारा रक्षाबंधन सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन भी, जहाँ पर $300 कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ रहेगा।

0: बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो चलिए अब थ्रोबैक की बारी आई है, लेकिन बिफोर आज का थ्रोबैक आपको हम सुनाएं, देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू विन। आपको बस हम याद दिलाना चाहते हैं अबाउट हमारा हम बोर्डिंग कॉल।
2: याद रहे, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु फ्लाइंग सोलोमन आइलैंड्स, जो हफ्ते में अब चार बार डायरेक्ट ऑकलैंड से वनुआतु फ्लाई करते हैं, और आप flysolomons.com जो है ये विजिट कर सकते हैं, और साथ ही में $1,000 स्पेंडिंग मनी भी जीतने का मौका आपको मिलेगा। ऑल यू गॉट टू डू इज सुनते रहें हम, और जैसे ही बोर्डिंग कॉल आपको सुनाई दे, हेड टू रोवा। रोवा पर जैसे आप जाएंगे, आपको वहाँ पर जो कंपटीशन पेज है ये मिलेगा, और आपको बस जाकर जहाँ पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, वहाँ जाकर आपको बोर्ड नाउ जो है ये टाइप कर देना है। अगर इजीली आपको लिंक चाहिए पेज का, तो आप BC लिखकर 5599 पर भेज सकते हैं, या hum.rover.nz आप विजिट करें, और हमारा जो वेब पेज है, जब इस पर आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अंडर विन सेक्शन आपको हम बोर्डिंग कॉल जो है ये मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें और डायरेक्टली कंपटीशन पेज पर आप चले जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी वहीं आपको मिल जाएंगे।
1: तो इट्स वेरी इजी, लेकिन अगर कोई भी डाउट्स हो आपको टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी हमारा हम बोर्डिंग कॉल चल रहा है, और कब तक चलेगा वो आपको हम बताते रहेंगे ना, जब तक ये प्रमोशन जारी है। अभी तो है, अभी ओपन है आपके लिए टू टेक पार्ट। एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो इन अंडरस्टैंडिंग द प्रमोशन, तो आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज देन विल डेफिनेटली बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली, और थोड़ा और डिटेल्स जो है अगर ज़रूरत पड़ी इसकी, तो ये आपको हम ज़रूर दे सकते हैं टू अंडरस्टैंड द होल प्रमोशन, ताकि आप इसमें पार्ट लेकर ये शानदार इनाम जीत सके। एक तो एक नई कंट्री आपको जाकर घूमने को मिलेगी, दूसरा योर एयर टिकट्स आर सॉर्टेड, तीसरा your spending money is sorted. बहुत रेयरली ऐसे opportunities मिलते हैं ना, तो जब मिल रहे हैं, we just hope you would love to take part. And I just wanted to know something from you too. क्या जो शख्स रनिंग में थे, जिन्होंने हर एक बोर्डिंग कॉल पर अपनी एंट्री सबमिट की थी, वो अभी भी सबमिट कर रहे हैं?
2: अभी पता लगाएंगे ना थोड़ी देर बाद,
1: तो आप पता कीजिए और मैं जरूर अपडेट कीजिएगा ऑन दैट, बिकॉज आई बिलीव दैट पर्सन हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड। एंड आप कितना हार्ड काम कर रहे हैं टू विन दिस, लाइक कितना मेहनत आप कर रहे हैं टू विन दिस, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल हमने जो आपको बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे पहचानने के लिए क्लूज दिए थे, दो नाम बताए थे आपको हमने, राहुल बोस और साथ में रिंकी खन्ना। उसके बाद ये दो नाम बोलने के बाद हमारे पास फ्यू मैसेजेस आए। फिजा ने अपना जवाब भेजा, सनी ने अपना जवाब भेजा, अविनाश है पापाकुरा से, इन्होंने जवाब भेजा, नितिका ने अपना आंसर भेजा, बॉबी मानजी ने अपना आंसर भेजा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने हमारे पास जो जवाब भेजा है, जो कि गलत आंसर है, इस झनकार बीट्स।
2: अच्छा,
1: झनकार बीट्स में राहुल बोस थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट रिंकी खन्ना, आई रिमेम्बर राहुल बोस बीइंग पार्ट ऑफ झनकार बीट्स, बट ये आज की हमारी मूवी ऑफ द डे नहीं है। मैंने कहा था कि जो आखिरी नाम है, या एक नाम और है जो मैं रिवील करूंगी, लेकिन अगर ये नाम अभी रिवील कर दे तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। ओ, झनकार बीट्स में रिंकी खन्ना है, आई गेस दैट्स व्हाई पीपल राइटिंग झनकार बीट्स। सो आज का फाइनल नाम फॉर यू टू गेस मूवी ऑफ द डे इज करीना कपूर खान।
2: अच्छा,
1: सो करीना कपूर खान, राहुल बोस एंड रिंकी खन्ना, कौन सी फिल्म हो सकती है? क्लू मैं आपको एक दे सकती हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है, फूल है, और कहीं ना कहीं फिल्म का नाम भी इसके नाम पर है।
2: किसी फूल के नाम पर इस फिल्म का नाम है। करीना कपूर खान, रिंकी खन्ना और राहुल बोस, इन्होंने काम किया इस पिक्चर पे। तो अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट्स, आप अपने आंसर्स जो है ये 5599 पर हमारे पास भेज सकते हैं।
1: टॉप ऑफ द आवर विल सी कि क्या किसी ने सही जवाब दिया या नहीं, और कितने लोगों के गलत आंसर्स जो है ये आए हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Accurate traffic.
3: Megan Turbo stores nationwide.
4: A high of 18, partly cloudy today, some showers later on. Into the city at the moment, most motorways looking fine. But if you're travelling on the southwestern, we've got a crash northbound before the Queenstown Road off-ramp blocking the right lane. And it is quite slow both ways on the motorway due to that. Southern, slow Takanini to Papatoetoe, 25 minutes in from Monaco. Northwestern, 20 in from Massey, slow from Grayland. The northern is fine.
3: Megan Turbo, home of the 80k tyre kilometre warranty nationwide.
5: You filled the pinata before I sealed it, right?
6: No, you did.
5: Oh, I thought you did.
7: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
8: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. साथ ही $2,000 की हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पर पाइए फ्री गोल्ड कॉइन प्लस हैव ओल्ड गोल्ड ऑफ 18 कैरेट और मोर तो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कीजिए हरी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट बॉटनी टाउन सेंटर ऑकलैंड
9: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
10: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
11: And award goes to Indelible Homes.
10: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
12: Kahani of Indelible Homes.
13: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
14: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds, like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phukeque, where dreams begin.
0: Hum, time check.
15: Good morning, it's 7:07 baj rahe hain.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
16: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 7. A manhunt is underway for the person behind a double homicide in Auckland. The bodies of a man and a woman were found at a Wattle Downs property yesterday afternoon. An offender fled the scene before officers arrived. More than 1,000 people are missing in the Nepal floods, with MFAT aware of 5 New Zealanders yet to make contact. A massive wall of water is believed to have been caused by a glacial collapse due to climate change. Simon Cox of Earth Sciences NZ says it's not far-fetched.
17: As you melt the ice, you take away the support for the mountains, so it makes these collapses more common.
16: The Cancer Society is being inundated with calls for help. It's Daffodil Day, with hopes to raise money for support, research, prevention and advocacy. Chief Executive Nicola Coombe says their services are vital.
18: We're seeing more New Zealanders affected by cancer. What that translates to is an increase in demand for the services, the information and the help that we provide families.
16: The man behind the iconic Optimus Prime voice has died aged 85. Peter Cullen voiced the character for not only the Transformers TV series in 84, but also all 7 Michael Bay films.
19: I am Optimus Prime.
16: He also memorably voiced Eeyore in the animated Winnie the Pooh series. To sport, where Ryan Fox has rediscovered his mojo at the $67 million Tour Championship in Atlanta. He's in the clubhouse tied for third place after a 4-under par opening round, including a 135-yard wedge shot for eagle on the par 4 third hole. And to rugby, with All Blacks Travel and Hospitality.com, Simon Parker starts on the blindside flank for the All Blacks coach Dave Rennie in Sunday's second test against the Springboks in Cape Town.
3: He really suits us playing the Africans. He's physical, gives us a bit of size at 6, special with 2. Moving on.
0: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoy, and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare. where learning is fun. Call 0800 462626.
15: Right now, Super City Auckland mein 12.6 degrees temperature hai. High of 17 expected hai baad mein chalkar. Overnight temperature aaj ka 12 degrees tak rehne wala hai. Mausam ke liye kaha gaya hai badal zyadatar chhaye rahenge. Little bit of showers in the afternoon hone ki sambhavna. Sunset hoga 5:58 PM par.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azra le le tu masa. Hum playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
20: 3 minutes हो रहे हैं 7:00 on the breakfast show with Vijay and Pooja और morning madness में आपका स्वागत हम कर रहे हैं. इस घंटे तमाम चीजें तो होंगी ही, लेकिन नेपाल में जो भी सिचुएशन है उस पर लेटेस्ट अपडेट्स जो है ये आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. और आज ऑन द शो हम बातें भी करेंगे जो भूतपूर्व ऑनररी काउंसलर हैं दिनेश खड़का जी, उनसे और जिनसे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में स्थिति वहां पर कैसी है. इस पर नवीनतम जान कार्यां जो है ये भी हम आपको देंगे,
15: तो इसके लिए आप हमारे साथ ही बने रहिएगा. पर फिलहाल के लिए हमने आपसे जो सवाल पूछा था आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है ये गेस करने के लिए, क्लूज भी हमने दिए जिसके बाद चलकर हमारे पास कुछ और आंसर्स आए हैं. हरमिला आपने आंसर दिया है, साथ में अवी है और बोटनी से हमारे पास जया जी का मैसेज आया है. इसके साथ साथ नितिका, इन्होंने भी अपना आंसर दिया है और कहा है कि रिंकी खन्ना की फाइनल फिल्म थी बिफोर शी रिटायर्ड फ्रॉम फिल्म्स आफ्टर गेटिंग मैरिड. उसके साथ फंगापुरोवा से सलू फिलहाल आप सुन रहे हैं. गुड मॉर्निंग मैसेज आपने भेजा है, थैंक यू सो मच. अभिषेक है वेलिंगटन से, इन्होंने अपना मैसेज सेंड किया है. ऑल द वे फ्रॉम कनाडा से संजय जी का भी मैसेज है, संजय डांगे जी, कल भी इन्होंने पार्ट लिया था और अपना जवाब भेजा था और आज एक बार फिर इन्होंने हमारे पास बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे के लिए अपना आंसर जो है ये सेंड किया है.
20: सो थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए. और काफी इजी आपने कर दिया था क्लूज के जरिए कि कौन सी ये फिल्म हो सकती है,
15: बट बावजूद उसके बहुत कम लोगों के सही आंसर्स आए ना. क्लूज दिए हमने टू मेक थिंग्स इजीयर और आपने कोशिश की उसके लिए, थैंक यू सो मच. बट ऑन द अदर हैंड चलिए अब रिवील करते हैं आज का हमारा मूवी ऑफ द डे विच इज चमेली. चमेली फिल्म में राहुल बोस, करीना कपूर और रिंकी खन्ना इन्होंने काम किया था. तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने अपने हमारे अपने मैसेजेस हमारे पास भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई सेड कि दिस मूवी डिड क्वाइट वेल और इसकी कहानी जो है से भी पसंद की गई थी. इनफैक्ट करीना कपूर जो है इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया था फॉर द रोल ऑफ चमेली दैट शी हैड प्लेड इन द मूवी. एंड कहीं ना कहीं वी कैन से दैट शी डिड सच अ गुड जॉब विद द मूवी दैट शी हैड बीन स्टार्टेड टू अप्रिशिएट कि ये कितनी कमाल की एक्ट्रेस है, यू नो.
20: जी बिल्कुल
15: राइट. तो आज की हमारी बॉलीवुड डे मूवी ऑफ द डे जो है आपके लिए हम लेकर आ रहे थे चमेली. जितने लोगों ने हमारे पास ये आंसर भेजे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल इस घंटे मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत आप सभी के साथ हो रही है, तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आज का आपका राशि वाइब, दिन कैसा रहेगा आपके लिए ये आपको हम बताने वाले हैं. और इसके अलावा
20: 7:30 न्यूज हेडलाइंस देखेंगे क्या कुछ लेटेस्ट है खबरों में, इस पर जानकारियां आपको देंगे. और साथ ही में आज तो वो दिन है जब रक्षाबंधन कंपटीशन के ड्रोज जो है ये होने हैं. दो लोगों को $250 ईच मिलने वाला है, किसी को $300 मिलने वाला है जो जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया था. प्लस फादर्स डे कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका भी आपको मिलेगा. इसी तरह से किसी को $500 जीतने का मौका और टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी ये भी जीतने का मौका. ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम आपको देंगे.

0: Rashi Vibes.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और अभी फिलहाल बारी है कि आपके लिए आज का हमारा जो राशि वाइब्स ये हम लेकर आए ना, दिन कैसा बीतेगा आपके लिए ये आपको बताएं।
2: बिल्कुल, मेष यानी एरिस, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं आपकी कैपेबिलिटी से। आपके सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स जो है काफी इंप्रेस्ड रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल आज बढ़िया होगा। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है।
1: और उसके साथ साथ वृष यानी टॉरस आपके लिए बताया गया है कि आज इमोशनल डिसीजंस आप काफ़ी ले सकते हैं, इसीलिए इमोशनल होकर फैसले ना ले। जो भी चीज़ आपको डिसाइड करनी है बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों पर थोड़ी रुकावट करें, मतलब रोक लगाए, अदरवाइज अननेसेसरी खर्चों की वजह से आपका बजट जो है ना ये थोड़ा बिगड़ सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है। बिजनेस अगर है तो बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा आपका। फाइनेंशियली दिन मजबूत होगा और मेंटली यू विल बी एट पीस टुडे।
1: करके रे कैंसर आपके लिए कहा गया है कि अपनी बातों में किस तरह के शब्दों का टोन का इस्तेमाल करते हैं आप थोड़ा संयम बनाकर रखें, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप बिना सोचे समझे सर्टेन चीज़ें बोलेंगे ये खुद आपके लिए काफ़ी नुकसान ला सकता है और साथ में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। अच्छे खासे गहरे रिश्ते आपके जो है ये ख़राब हो सकते हैं। परिवार में भी काफ़ी खुशहाल माहौल आज रहेगा ऐसा आपके लिए कहा गया है। सो यूड बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू फैमिली वाइज।
2: दफ्तर में आज फोकस करके काम करने की कोशिश करें और ये भी ट्राई करें कि अपना काम टाइम पर पूरा करें। कोई रिस्क आज ना ले तो अच्छा होगा और फाइनेंशियल जो सिचुएशन है इस पर फोकस करें, बैलेंस बनाकर चले तो अच्छा रहेगा।
1: और उसके बाद तुला यानी लिब्रा आपके लिए कहा गया है कि या कन्या यानी वर्गो, तो मेरे को बताना था आपको, सिंह ने लियो बताना था मेरे।
2: अच्छा, तो आप सिंह बता दो ना।
1: हाँ, तो सिंह ने लियो आपके लिए कहा गया है कि कुछ नए प्लान्स आप बना सकते हैं, इस पर आप काम कर रहे हो ताकि लोग आपका लोहा मान जाए, एज इन आप यू नो काफी इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, यू आर वर्किंग ऑन सर्टन थिंग्स टू प्रूव योर सेल्फ, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे इस मामले में। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति जो आपकी है ये काफी मजबूत होगी आज, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपने की थी और पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ काम ऐसा किया था, तो उसका फायदा अब आपके हाथ जरूर लगेगा।
2: तुला यानी लिब्रा, क्रिएटिव आइडियाज बहुत दिमाग में आ जाएंगे और ये आपको सक्सेस भी दिला सकते हैं। इनकम के कुछ नए सोर्सेस जो है ये आज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैसा जो है ये आज आपको मिल सकता है, अचानक कहीं से कुछ फायदा भी हो सकता है।
1: और उसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है, जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपके जो बॉसेस हैं ये आपके अधिकारों को बढ़ाएंगे, मतलब आपकी राइट्स जो है ये बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं यूड गेट एक्सेस टू मोर थिंग्स, मोर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा आपके लिए कहा गया है। और आज आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ पर काफ़ी स्पेंड कर रहे हो आप, टाइम स्पेंड कर रहे हो, पैसे स्पेंड कर रहे हो, एंड इट्स अ गुड थिंग बिकॉज हेल्थ ज़रूरी है आपका, एंड इट्स गुड कि आप उस तरह से अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हैं।
2: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, धनु यानी सेजिटेरियस, ट्रेवल के जरिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। ऑफिस में कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। भाई बहनों या पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन तो आज आपका बहुत ही बढ़िया होगा।
1: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होंगी, बट ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम इट, जितना दूर रहे अपना इन्वॉल्वमेंट ना ही करें, अदरवाइज किसी और का प्रॉब्लम आपके सिर पे आके गिरेगा एंड थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपके हाथ लगेगा, तो थोड़ा चैन की सांस आप ज़रूर ले पाएंगे। और गले में या दांत में किसी तरह का दर्द है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, गेट इट चेक्ड, ऐसा आपके लिए बताया गया है।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, रुके हुए कामों में कुछ तेजी आप नोटिस करेंगे। आज फाइनेंशियली आप नोटिस करेंगे कि सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग फॉर यू, और किसी बात का टेंशन आज ना ले तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: और आखिर में मीन यानी पाइसेस आपके लिए कहा गया है कि आज किसी बड़े फैसले को लेने में जल्दबाजी ना करें, अपना समय ले, अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, चीजों के बारे में पता कर ले, एंड देन डिसाइड ऑन थिंग्स जो आप करना चाहते हैं। साथ में आपके लिए ये भी बताया गया खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि कुछ सिचुएशंस अचानक से आपके सामने आ सकती है। आप बस यही कोशिश करें कि अगर आपको कर्ज लेना भी पड़े तो किस हिसाब से कैसे आप चीज़ों को वर्कआउट करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीज वाई राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ आज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए याद दिला रहे थोड़ी देर बाद आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए हम लेकर आएंगे।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
0: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
0: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
7: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
8: Score big at Rebel with deals for Dad on clothing, footwear, fan gear, equipment and more. Whatever he's into, make Father's Day a winner. Shop epic deals for Dad in store and online now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: To infinity and beyond. Be in to win one of 500 exclusive Platinum Buzz Lightyear Ushies at Woolworths. Just boost the offer in the Everyday Rewards app, spend $30 or more and scan to enter. Offer ends 30th of August. T's and C's apply. Only at Woolworths.
10: Get it sorted with cheap as deals. Add some colour to the garden with 10cm Elite Cyclamens, now only $4 each. And get a sweet deal on 10cm Zealandia strawberry plants, now just $3.50 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
1: सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर आज एक आवाज आपको हम सुनाएंगे और फिर आपको अनुमान लगाना होगा कि वो किनकी आवाज है। कुछ बर्थडे मैसेजेस भी आए हैं तो याद दिला दें, आपको थोड़ी देर बाद विश करेंगे, लेकिन अभी समय है सेलिब्रिटी अलार्म के लिए। तो चलिए पहले तो आवाज सुनाते हैं आपको, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा।
12: People even look at yoga sometimes as a quick fix, but when that is your idea that you want something quick, it is not going to be sustainable. It is the opposite of sustainable. Quick is the opposite of sustainable. We have to be slow, gradual and sustainable.
1: तो चलिए आज हमने आपको आवाज जो है ये सुना दी है। अब ये आवाज सुनने के बाद आपका क्या अंदाजा आप लगाते हैं, क्या जवाब होता है आपके जहन में, कोई नाम आ रहा है after listening to this voice? ऐसा लग रहा है कि ये आवाज कहीं सुनी है, नहीं सुनी है, पता है नहीं पता है, what's the situation like?
2: नहीं,
1: you can't figure out?
2: ना, बिल्कुल नहीं।
1: तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई आज इनकी आवाज पहचान पाया है या नहीं। आपको एक बार फिर मैं आवाज सुना रही हूँ, इस बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद सीधा आपको गाने सुनाएंगे, फिर ग्लोबल हेडलाइंस सॉरी न्यूज हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे, एंड देन उसके बाद वी विल गेट इन टू इट एंड सी कि क्या किसी ने पहचाना है या नहीं। पर ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
12: People even look at yoga sometimes as a quick fix. But when that is your idea that you want something quick, it is not going to be sustainable. It is the opposite of sustainable. Quick is the opposite of sustainable. We have to be slow, gradual and sustainable.
1: तो कौन है ये, अगर आपको पता चल चुका है तो हमारे पास अपना आंसर भेज सकते हैं. और अगर थोड़ा बहुत आइडिया या फिर यू वांट टू ट्राई इट आउट, यू वांट टू सी कि क्या आपका जवाब सही है या नहीं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, जवाब आप भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. बीसी लिखे सबसे पहले, फिर आपका आंसर और आपका नाम और 5599 पर भेज दे. आपके पास अराउंड 6 मिनट्स का टाइम है और 6 मिनट्स बाद वी विल सी क्या आज के हमारे सेलिब्रिटी को कोई पहचान पाता है या नहीं.
13: Hollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, साउथ ऑकलैंड के मनुरेवा में एक एड्रेस पर एक आदमी और औरत की लाशें मिलने के बाद पुलिस ने डबल होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इस सीरियस इंसिडेंट के बाद आर्म पुलिस ने इलाके में स्वीप ऑपरेशन चलाया, जिसे वॉटल डाउन के मल्टीपल स्कूल्स को प्रिकॉशंस के तौर पर कल लॉकडाउन करना पड़ा। घटना को अंजाम देने वाला सस्पेक्ट अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नेपाल तिब्बत फ्लड डिजास्टर में कम से कम 360 यानी 360 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5 न्यूजीलैंडर्स समेत 1400 से ज्यादा लोग अभी भी गायब हैं। हजारों रेस्क्यूअर्स लोगों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन एक नई बनी झील के कारण एक और भयानक बाढ़ चढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। एनपीसी के एक मैच में कल होक्स बे की जीत साउथलैंड के खिलाफ 36-21 से हुई। आज के मैचेस की ओर देखें तो आज रात 7 बजे ऑकलैंड बे ऑफ प्लेंटी को होस्ट करेगा। कल दिन में 2 बजे तरना की कैंटरबरी का मैच होगा। 5 PM ओटागो वर्सेस वाइकाटो, कल 7 PM वानुआतु वर्सेस नॉर्थ हार्बर। संडे को दिन में 2 बजे वेलिंगटन काउंटीज मैरिकाओ से खेलेगा, जिसके बाद 5 बजे नॉर्थलैंड और टेस्मैन का मैच खेला जाएगा। NRL के एक मैच में कल मेलबर्न स्टॉर्म की शानदार जीत ब्रोंकोस के खिलाफ 46-20 से हुई। इस वीक के अन्य मैचेस में आज रात 8 बजे सी ईगल्स ड्रैगन्स का सामना करेगा, 10 बजे पैंथर्स और बुलडॉग्स का मैच होगा, कल शाम 5 बजे टाइटन्स रैबिटोस से खेलेगा, 7:30 PM पर रूस्टर्स वर्सेस डॉल्फिन्स और कल 9:35 PM पर काउबॉयज वेस्ट टाइगर्स से खेलेगा। रविवार को 2 मैचेस होंगे, शाम 4 बजे वॉरियर्स नाइट्स को होस्ट करेगा और शाम 6 बजे ईल्स और शार्क्स का मैच खेला जाएगा। ऑल ब्लैक्स टीम में इस सप्ताह साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए कुछ तब्दीलियां की गई हैं। ऑल ब्लैक्स और साउथ अफ्रीका का मैच रविवार की सुबह 3:10 पर खेला जाएगा। फिलहाल सुबह 7 बजे संडे को अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एक मैच खेला जाएगा। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
2: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep

0: Accurate traffic.
1: Queen Anne chocolates for Father's Day.
2: Partly cloudy, some showers later, a high of 18. We had a crash early on the southwestern motorway heading northbound just before the Queenstown Road off-ramp. It's been cleared for a little while, but still a bit slow both ways on the motorway. Other motorways fine. Southern, 26 minutes in from Monaco. Got some slow patches, but quick overall. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Slow from Point Chev, heavy at times. Northern, fairly calm, 16 from Constellation.
1: Any dad would love a Queen Anne chocolate treat. Find Queen Anne at your local supermarket.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. T's and exclusions apply.
5: Mike here from Novus Glass. When this happens...
6: Novus.
5: Just contact your local Novus branch direct. We make it easy with the latest equipment, tested products and trained technicians. We'll even handle your insurance claim. Novus Glass also make it easy on the environment. We're proud to be pioneering windscreen recycling in New Zealand. Plus, for every repair or replacement, we make a donation towards planting native trees. Notice it, Novus it. Just contact your local Novus Glass branch direct.
7: Show us your crack.
8: Ah, Novus.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
1: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Birthday greetings.
14: Iska birthday, bhai?
15: Mera hi birthday, chalo line mein aa jao.
16: Happy birthday to you.
17: सबसे पहले आज 28 अगस्त को सुरेंद्र दास जी द गार्डन्स में अपना जन्मदिन आप मना रहे हैं। खुशी के इस मौके पर आज आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो।
18: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको विश कर रहे हैं। और उसके अलावा आज अगर देखा जाए तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं शशि जी मनरेवा में। आपका बर्थडे आज आप मना रही हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम विश कर रहे हैं आपको जन्मदिन के इस खास मौके पर। शशि विमल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके हस्बैंड हैं, 3 बच्चे हैं और समस्त परिवार वालों की ओर से ये दिन बहुत बहुत बार मुबारक हो आपको।
17: आज मानविक 7 साल के हो रहे हैं, जन्मदिन मुबारक हो आपको मानविक। दुलार और प्यार मम्मी और पापा की ओर से शेल्विन और उषा मनुरेवा में, और हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको शुभ और मुबारक हो। ऑब्वियसली आज आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो भी आपको बहुत सारे ट्रीट जो है ये देने वाले हैं, एंड घर पर तो ऑब्वियसली आज सेलिब्रेशन जो है ये होने वाला है। सो ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी many happy returns of the day.

0: properties true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: तो चलिए इधर बारी है कि आज का मोस्ट रोमांटिक ट्रैक ऑफ दिस आवर आपको हम सुनाए, लेकिन उससे पहले इधर जो सवाल हमने आपसे किया सेलिब्रिटी अलार्म के लिए, इंटरेस्टिंग आंसर्स हमारे पास आए हैं. शाहिद कपूर वंदना ने अपना जवाब जो है ये दिया है,
2: और उसके अलावा कमल का आंसर आया है 4670, इन्होंने भी अपना जवाब दिया है.
1: हाँ, इन्होंने कहा है करण जौहर.
2: हाँ,
1: करण जौहर इज गॉट अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड वे ऑफ स्पीकिंग, और उनकी आवाज भी
2: उनका बहुत ही डिफरेंट होता है.
1: यस, सोनल गुप्ता आपने भी अपना आंसर हमें दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.
2: तो चार ही लोगों ने या तीन लोगों ने, नहीं चार लोगों ने, हाँ चार लोगों ने अटेम्प्ट किया है आज.
1: उतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल चलिए एक बार फिर से आपको आवाज सुना रहे हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो आपके लिए इनकी आवाज पहचानने में थोड़ी अगर आसानी कर सके तो विल ट्राई एंड हेल्प यू. बट हियर वी गो, आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज इन सेलिब्रिटी अलार्म.
3: People even look at yoga sometimes as a quick fix. But when that is your idea, that you want something quick, it is not going to be sustainable. It is the opposite of sustainable. Quick is the opposite of sustainable. We have to be slow, gradual and sustainable.
1: तो ये जो शख्स है रवि ने वैसे एक आंसर भेजा है, इन्होंने कहा कि ट्रेनेंस लुइस. तो ट्रेनेंस लुइस शायद उनके जैसा साउंड कर रहा हो थोड़ा बहुत आई कैन से, बट इट्स नॉट हिम, वो नहीं है वो. तो ये जो शख्स है इनका प्रोफेशन बताए ना.
2: हे भाई, जो आपको आपने आई थिंक सेलेक्ट किया है. हाँ,
1: इनका प्रोफेशन बताते हैं. ही स्टार्टेड ऑफ इन द इंडस्ट्री एज अ मॉडल.
2: अच्छा,
1: देन ही केम इनटू मूवीज.
2: अच्छा,
1: अभी भी कई जो डिजाइनर्स हैं या लोग हैं उनके लिए ये मॉडलिंग करते हैं.
2: ओके,
1: और बहुत साल पहले आए थे ये, अभी भी चल रहे हैं ये. इनके लुक्स को लोग बहुत पसंद करते हैं.
2: हाँ,
1: and he is a fitness enthusiast बोल सकते हैं इनको.
2: Enthusiast.
1: हाँ, काफी busy रहते हैं अपने आप को fit रखने में और काफी तरह की चीजें करते हैं. तो अगर ये yoga के बारे में बातें कर भी रहे थे इस audio में, आपने अगर सुना, and you thought like he was a yoga instructor or a fitness instructor, तो नहीं, ये fitness instructor नहीं है, ना तो yoga instructor है, लेकिन एक model और actor है. और एक गाना इनका आया था अलीशा चिनोई के साथ कई साल पहले.
2: हाँ, कौन सा गाना?
1: मैं गाना बता दिया तो खत्म.
2: नहीं, ऐसे तो नहीं
1: उसमें ये दिखे थे, इन्होंने गाया नहीं था, ये दिखे थे. एंड अलीशा चिनोई का गाना था जिसमें ये दिखे थे, एंड पीपल वेंट क्रेजी, स्पेशली वुमेन वेंट क्रेजी आफ्टर सीइंग हिम इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. इतना मैं आपको बता सकती हूँ. तो एक गाना आया था इनका कई साल पहले.
2: ओके, तो आप ट्राई करें. आई हैव नो आइडिया कौन है.
1: आई एम सरप्राइज्ड कि इतना क्लूज मैंने दे दिया फिर भी आपको नहीं पता.
2: क्योंकि आई कैन नॉट पुट द क्लूज टुगेदर. एज अ मॉडल आए थे बहुत सारे लोग, एज अ मॉडल आए थे, एज अ बाद में एक्टिंग इन्होंने की.
1: हां, वो भी बहुत से लोगों ने की. हां, बट अलीशा चिनोई के गाने में बहुत कम लोग
2: वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आएगा. मैं कल अगर कोई फिल्म देखता हूँ आज भूल जाता हूँ तो वो कैसे याद रहेगा कि अलीशा चिनोई ने एक गाना गाया था उसमें एक एक्टर नजर आए थे.
1: बट डू यू नो द अबाउट द फैक्ट कि अलीशा चिनोई के गाने जो आते थे बैक देन इन द
2: जुबी जुबी जुबी
1: इन द क्या बोलते वो
2: 90s.
1: हाँ, 90s and early 2000s में तो बहुत कम ऐसे गाने थे जो काफी पॉपुलर हुए थे उनके.
2: हाँ, सनी जॉन एब्राहम नहीं है ये. जॉन एब्राहम नहीं है.
1: नहीं नहीं, जॉन नहीं है. जॉन नहीं है.
2: जॉन एब्राहम की आवाज आई कैन आइडेंटिफाई.
1: हाँ, ना तो ये जॉन एब्राहम है. किसी ने डिनो मोरिया भी लिखा है, डिनो मोरिया भी नहीं है ये.
2: ओके,
1: वो नहीं है. But both of them also same situation.
2: किस era में ये movies में थे?
1: Oh my god. ओके, किस ईरा में? आई थिंक
2: 90s.
1: इन्होंने शुरुआत किस ईरा में की वो मुझे नहीं पता, बट कमाल की बात ये है कि इनकी आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर. नहीं, ये तो 2000s में आए हैं ये फिल्मों में.
2: अच्छा, 20s में.
1: हाँ,
2: चलो अब ये भी पता चल गया कि 2000s में मूवीज में गए थे. और I don't know, अभी है या नहीं वो.
1: नहीं, अभी एक्टिव है. आई थिंक वेब सीरीज वगैरह में दिख रहे हैं. किसी मूवी में इन्होंने काम किया है आई डोंट नो, बिकॉज़ आई हैवन्ट सीन अ मूवी एज येट, पर मैंने इनको वेब सीरीज में देखा है.
2: ओके, सो बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें. एंड
1: सनी ने कहा है अर्जुन रामपाल. एक्चुअली अर्जुन रामपाल ने भी ऐसे ही अपनी करियर की शुरुआत की एज अ मॉडल, एज एन एक्टर. आई एम नॉट श्योर अगर अलीशा चिनोय के किसी गाने में ये दिखे या नहीं, बट द क्लूज एड अप टू अर्जुन रामपाल, लेकिन आवाज उनकी नहीं है.
2: तो ये अर्जुन रामपाल नहीं है, सुनील शेट्टी भी नहीं है, उनकी आवाज भी बहुत अलग है.
1: बहुत अलग है.
2: तो आप कोशिश करें थोड़ी देर बाद अराउंड थ्रोबैक हम देखेंगे कि
1: किसी ने पहचाना या नहीं ना.
2: हाँ, किसी ने इनको आइडेंटिफाई किया है या नहीं.

0: और एक स्पेशल चाय.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
8: Missed out on the ultimate Father's Day fresh box? No worries.
9: Lots of cloud, a bit of sun, some showers later. 18 now high into the city. Northwestern motorway 24 minutes in from Massey. We're slow from Point Chev to the city. Heavy a lot of the way. Quick up to Point Chev though. Southern 30 minutes Manukau to town. Slow patches from Manukau. Slow all the way from Otahu. Southwestern little slow both ways around Queenstown Road due to a crash earlier. Northern 20 from Constellation. Slow there and at Esmond.
8: New fresh box coming soon. Freshbox.co.nz.
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
11: मुझे भी.
10: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
12: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं. इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए. सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस. सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए. सोना संसार, संसार रिश्तों का.
13: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
14: Get the Skinny!
15: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
16: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
17: तो आज का जो सेलिब्रिटी अलार्म है, आई डोंट रियली नो, आई कांट फिगर आउट कि हमने लास्ट किनका मैसेज पढ़ा था, बिकॉज उसके बाद इतने सारे मैसेजेस आए हमारे पास. काइंड नॉट सो पॉसिबल कि हर किसी का नाम हम ले पाए.
18: मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं.
17: मुझे भी नहीं पता था, आज तो कमाल हो गया. बट जितने लोगों ने हमारे पास मैसेज किया, रियली सॉरी, लाइक वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, सो हर किसी का नाम नहीं पढ़ पाएंगे. बट थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए. जवाब हम जरूर बताएंगे. एंड इफ यू हैव टेक्स्टेड दैट नेम, दैट मीन्स यू हैव गॉट इट करेक्ट. तो पहले जवाब बताने से पहले मैंने कहा था ना कि ये अलीशा चिनोई के गाने में भी दिखाई दिए थे.
18: हाँ.
17: And that song was this one.

0: अपेरेंटली ये फिल्म तरकीब जो है ये 2000 में आई थी, एंड इस फिल्म में इन्होंने कैप्टन अजीत वर्मा का रोल जो है ये निभाया था। इस फिल्म में नाना पाटेकर भी थे और शिल्पा शेट्टी थी, साथ में आदित्य पंचोली थे और तबू थी, और उनके साथ साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया था। एंड आवर सेलिब्रिटी फॉर सेलिब्रिटी अलार्म टुडे इज मिलिंद सुमन।
1: मुझे तो उनकी कोई भी फिल्म याद नहीं है।
0: मुझे याद है, ये फिल्म याद है, आई ऑल्सो वॉच 16th December, ये फिल्म मैंने देखी थी,
1: वो याद है, वो फिल्म मैंने देखी
0: है। तो ये फिल्म भी मुझे याद है। तो मिलिंद सुमन आज के हमारे सेलिब्रिटी रहे सेलिब्रिटी अलार्म में, एंड बहुत से लोगों ने बाद में चलकर जब हमने क्लूज दिए अबाउट हिम बींग इन अलीशा चिनोय सॉन्ग, तो काफी लोगों ने इनका नाम जो ये लिखकर भेजा, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज तो पहचान गए आप, विच मीन्स कि आप मंडे को एक बार फिर एक नई आवाज आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।
1: फिलहाल आज 28th August आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार जो है ये भी आप मना रहे हैं, और ऐसे में हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस खास दिन के लिए। ऐसा करें कि अभी जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने भाई या बहन का नाम वो 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करें। मत भूले आज 9 बजे से पहले ड्रॉ भी होगा, या सॉरी 10 बजे से पहले ऑन द ब्रेकफास्ट शो ड्रॉ भी होगा, पता चलेगा कि आप में से वो कौन है जो इनाम है ये जीतेंगे। दो लोगों को $250 ईच मिलने वाला है, और साथ ही में इतना भी मैं बता दूं, अगले घंटे अराउंड 8:15 खास बातें जो है ये हम करने वाले हैं, और ये होगा दिनेश खड़का जी के साथ, और उन्होंने वो काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं यहाँ न्यूजीलैंड और साथ में नेपाल सरकार के साथ। ही इज़ द फॉर्मर ऑनररी काउंसिल ऑफ नेपाल टू ऑकलैंड, और उनसे नेपाल की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हम हासिल करेंगे।
0: तो ये रहेगा अगले घंटे, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा, पर फिलहाल के लिए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर वेरी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को विश कर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा अपने भाई या बहन का नाम लिखकर आप जरूर हमारे पास सेंड कर सकते हैं और हम आपको शाउट आउट भी देंगे। पर फिलहाल के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, आई थिंक वन ऑफ दोज मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स, जब भी राखी का त्यौहार आता है तो ये गाना जरूर लोग याद करते हैं, गुनगुनाते हैं इफ देयर अवेयर ऑफ इट। पर क्या आपको पता है कि ये जो गाना है ये पिक्चराइज हुआ था ऑन देवानंद और साथ में जीनत अमान, नहीं हाँ जीनत अमान पर, उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था।

0: accurate traffic.
1: Fly Solomon Airlines.
2: A high of 18, a little sun, a lot of cloud and some showers later. Coming into the city, Southern Motorway, 28 minutes. Manukau to town isn't bad. Slow at Papatoetoe, then most of the way from Penrose. Looking okay on the southwestern both ways. Fine to the airport. Northwestern, 24 minutes in from Massey. Find a point, Chev. Heavy there to St. Luke's, then slow to the city. Northern, 20 in from Constellation. Slow there and at Esmond, but overall fine.
1: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
3: Professional by Ninjas hai saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Coca-Cola 330 ml cans 30-pack, just $23.99 a pack. And Purina One Dry Cat Food 1.4 to 1.5 kg, just $18.79 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, I'd book my family a trip to... And I'd stay right here with my new...
8: Imagine winning $23 million this Saturday. Play in store or online.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
11: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
11: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
12: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट. नो डिपॉजिट फाइनेंस लो. अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं. स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ. आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ. हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: टाइम चेक.
14: गुड मॉर्निंग, इस समय ठीक 8 बज रहे हैं.
13: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. Police are hunting the killer of a man and woman at a property in Auckland's Wattle Downs. The offender fled the scene yesterday afternoon. Police say while this appears to be an isolated incident, they are unable to rule anything out. Questions are turning to whether climate change played a role in the massive Nepal flood. Five New Zealanders are among the more than 1,000 missing. Simon Cox from Earth Sciences NZ says a large volume of ice came down from a glacier.
15: Then got a lot of water mixed in with all of the rock and things. And as it went down the valley, you can think of it as a slurry like concrete.
14: A New Zealand first study has been launched into how children with an incarcerated parent or caregiver can be better supported. Auckland Uni's Julia Tolmi says there are huge disruptions.
16: For their living situation, for their education, they can be separated from their siblings, carers who don't cope with the kind of behavioural problems that children can manifest.
14: Today's Daffodil Day is being billed as a chance to show support for those battling cancer. The Cancer Society's Nicola Coombe says there's been a spike in its demand for its services.
17: We all wear our yellow, put on the daffodil, and we send a really visual, big message to everyone who's impacted by cancer to let them know that they have our support.
14: To sport, one tactical change for the All Blacks for Sunday's second test against the Springboks in Cape Town. Josh Morby drops to the bench with coach Dave Rennie promoting Leroy Carter to the left wing.
18: Yeah, Lovie's not much in that. You know, if you looked at Leroy, probably a better defender, and we think that'll be important.
14: Simon Parker starts on the blindside flank and George Bauer comes in at prop. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Ryan Fox is in the clubhouse tied for third place after a 4-under par opening round at the Tour Championship in Atlanta.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best, hamari good brands bhi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
0: क्लाउडी स्टार्ट टू द डे, कभी कभार सुबह और शाम के वक्त कुछ हल्की बारिश हो सकती है। अभी 13.5 डिग्रीज है, आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 13 डिग्रीज रहेगा। सनसेट आज का 5:58 पीएम पर होने को है।
13: Show with Vijay and Pooja.
20: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
0: ट्रेंड पेट्रोल का वक्त अब हो चुका है और ट्रेंडिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, ये आपको हम बताते हैं इस दौरान। अभी तो ग्लोबली अगर देखें उन जो सबसे ज़्यादा चीज़ ट्रेंड हो रही है वो खबर है जो नेपाल की आई है, और लोकली अगर देखें तो साउथ ऑकलैंड में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग अभी ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर ट्रेंडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की ओर अगर देखें तो टॉप ट्रेंडिंग बॉलीवुड स्टार्स इनकी ओर इनका जो लिस्ट है ये अगर देखें तो इनमें है शाहरुख खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, हालांकि इनकी कोई खास फिल्म नहीं आई अभी रिसेंटली, एंड ऋतिक रोशन एंड सलमान खान।
14: ओके,
0: और ये सारे एक्टर हैं। रणबीर कपूर की जब हम बात कर रहे हैं, लगे हाथों आपको बता दें इनकी जो आने वाली फिल्म है
14: रामायण,
0: हाँ, इसका एक एक्सक्लूसिव 15 मिनट प्रीव्यू जो है ये चेन्नई में बिग सिने एक्सपो के दौरान जो एग्जिबिटर्स हैं उनको दिखाया गया।
14: Okay.
0: किसी भी एग्जिबिटर को अपना मोबाइल फोन अंदर ले जाने का परमिशन नहीं था, सो दे वेंट विदाउट दैट, एंड उन्होंने जब ये देखा उसके बाद बॉलीवुड हंगामा से बातें की एक एग्जिबिटर ने, और उन्होंने इस फिल्म का जो वीएफएक्स है उसे कंपेयर किया है टू द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। उन्होंने कहा कि उस स्केल का वीएफएक्स जो है इस फिल्म में देखने को मिल सकता है।
14: क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं कि वंस द मूवी रिलीजेस यू नो क्या कुछ बोथ है इस फिल्म के अप्रिसिएशन के लिए, और कितनी तारीफ जो है ये कलाकारों की होती है व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग देयर टैलेंट इन द कैरेक्टर्स दैट दे हैव प्लेड।
0: तो ये ट्रेंडिंग खबर, और आपने पिछले घंटे मेरे ख्याल से पूछा था हम बोर्डिंग कोल के बारे में
14: जी।
0: ये वो आवा है जब बोर्डिंग कोल जो है ये प्ले होने को है, सो मेक श्योर इफ पॉसिबल तो यू कैन हेड टू रोवा एंड लिसन देयर, वहां पर जाकर आप सुनते रहें जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यू जस्ट टाइप बोर्ड नाउ एंड हिट एंटर। तो मोर देन 2500 एंट्रीज ऑलरेडी,
14: 2500 से भी ज्यादा एंट्रीज,
0: हाँ, इन द लास्ट आई थिंक अराउंड 14 डेज 2500 से ज्यादा एंट्रीज जो है ये आ चुकी हैं। और जो पर्सन जिन्होंने क्या बोलते हैं हर एक,
14: क्योंकि दो लोग थे जो हर एक बोर्डिंग कॉल के दौरान बोर्ड नाउ जो है एंटर कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे अपनी एंट्री के लिए, लेकिन आपने कहा था उसमें से एक शख्स थे जिन्होंने कुछ मिस आउट कर दिया था।
0: हाँ, एंड देयर वाज ओनली वन पर्सन लेफ्ट।
14: तो क्या वो अभी है वन पर्सन जो कर रहे हैं अभी भी हर एक बोर्डिंग कॉल के लिए कि नहीं?
0: व्हाट डू यू थिंक?
14: आई थिंक है, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी तो आई थिंक वो अभी भी है।
0: बट
14: नहीं, बट की बोला आपने।
0: बट मैं इतना आपको बता दूं कि वो है,
14: हाँ, तो इसी वो अभी भी कम्पीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो जीतना चाहते हैं।
0: 14 डेज से ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, एंड दिस पर्सन जो भी है दे हैवंट मिस्ड अ सिंगल बोर्डिंग कॉल।
14: इसे कहते हैं जज्बा टू विन।
0: Yes, और आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, रिमेम्बर रोवा पर आपको जाना है, आप hum.rova.nz विजिट करें। अगर ऑफिस में आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं थ्रू योर ईयरबड्स तो हेड टू hum.rova.nz, और वहां पर हमारा जो वेबसाइट है इस पर जब आप जाएंगे तो नीचे विन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप BC लिखकर 5599 पर भेज दो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। रक्षाबंधन के मौके पर हमने कहा था कि अपने भाई और बहनों के लिए मैसेज आप भेज सकते हैं, और नीतिका ने मैसेज किया है,
14: हाँ जी,
0: Four sisters living in different places, but always one soul. I'm here in New Zealand, and my sisters, Maureen, Pranita and Kritika, are back home in Fiji.
2: Oh.
0: Yet our bond still feels just as strong as when we all lived under one roof. Distance cannot touch the love we share. Happy Raksha Bandhan to us four sisters only.
2: That is so beautiful, you know. बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में उन लोगों को यू नो सेलिब्रेट करें जो आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप सिबलिंग्स का शेयर करते हैं. माय एल्डर सिस्टर धालिया मुखर्जी सोम ने हमारे पास मैसेज भेजा है अपनी बहन के लिए. आई हैव थ्री ब्यूटिफुल लवली सिस्टर्स पूर्णिमा विनीता एंड शिलोनी मिसिंग ऑल ऑफ ऑल फार फ्रॉम मी इन पीजी. नीलेश ने अपना मैसेज भेजा है. क्या बात है, तीन बहनों के इकलौते भाई.
0: नहीं, इकलौते भाई नहीं है.
2: कैसे
0: ये एक भाई है जो यहाँ पर है.
2: अच्छा, वो और भाई है.
0: हाँ,
2: वो मुझे लगा शायद इकलौते है क्योंकि थ्री लवली सिस्टर्स, तो मुझे लगा कि सिर्फ वही इकलौते हैं. Nevertheless, shout out to my amazing sister रिनी. अक्षय ने अपना मैसेज जो है ये भेजा है. तो आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आप भी हमारे पास अपने रक्षाबंधन शाउट आउट जो है ये भेज सकते हैं, और आपको याद करते हुए आपके भाई एंड बहन को आपकी ओर से हम विश भी जरूर करेंगे.
0: थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो hum.rova.nz या rova पर जाकर हमारा प्रोग्राम जो है ये सुनते हैं.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
4: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, slick grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
6: Father's Day bus aane hi wala hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson have gifts dad will love. Save on Autoboss accessories, Medallis tools and accessories plus Orbi deals in store. Celebrate dad and save big this Father's Day at Mighty 10 Mega Westgate and Henderson.
7: डिब्बा खुल गया
8: भरत भाई टिफिन खुल गया छे संजना का डिब्बा खुल गया
9: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा डिब्बा खुल गया हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: 16 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा हमने कहा था आपसे कि आज हम जो स्थिति है उस पर नेपाल में जो स्थिति है उस पर कुछ खास बातें जो है ये करेंगे जो भूतपूर्व ऑनररी काउंसिल ऑफ नेपाल हैं ऑकलैंड के लिए दिनेश खड़का जी से तो दिनेश जी लाइन्स पर आगे हमारे साथ सबसे पहले दिनेश भाई आपका स्वागत है नमस्कार
14: नमस्कार विजय भाई थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर हैविंग मी विजय भाई
13: सबसे पहले तो हम सभी की ओर से प्रार्थनाएं हैं श्रद्धांजलि हैं और बहुत कठिन समय से नेपाल गुजर रहे हैं फिलहाल और जब इस घटना की खबर आई तो मेरी जो याद है चली गई पहले भी इस तरह की जो स्थिति नेपाल में हुई थी लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पर आज सुबह जो खबरें मैं पढ़ रहा था कि 360 यानी 360 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई है बाढ़ की वजह से तो वर्तमान में स्थिति अभी वहाँ पर कैसी है
14: अभी इट्स वी आर फेसिंग रियली बैड सिचुएशन इन नेपाल अभी 369 बड़ी रिकवर हो गया है But more than 1,100 are still missing, and but it's keep rising every hour. When I check it, the number is keep rising. सो अभी भी हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू मोड में अबाउट 8,000 पर्सनल आर्मी पुलिस ऑल नेपाल रिसोर्सेस आर यूजिंग टू फाइंड आउट पीपल सो इट्स अ होल कंट्री इज इन शॉक विजय भाई.
13: दिनेश भाई, जो 5 लोग न्यूजीलैंड के थे उनके बारे में कोई खबर मिली है अभी तक आपको?
14: अभी तक नहीं मिला है, वो भी अभी अभी तक मिसिंग है. ऑल टुगेदर अबाउट 590 फॉरेनर्स आर मिसिंग.
13: 590 फॉरेनर्स. एक महिला जो है जिनके बारे में शायद कुछ खबर आई थी, सुहासिनी जी, वो ट्रेवल कर रही थी कैलाश की ओर. वो एक किसी एक जीप में जा रही थी. उनके बारे में कोई अपडेट आपको मिला है? उनकी जो एजेंसी
14: उनके साथ और टीम में और भी थे, वो लोग जहाँ पर वो नेपाल एंड तिब्बत का बॉर्डर केरुंग में पहुंचे, उसके बाद वो लोग आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए. अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनके अबाउट हर.
13: वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, क्या ये इज इट स्टिल इंटैक्ट? यू नो, मोबाइल फोन्स या फिर लैंडलाइंस, किसी तरह से आर यू गाइस एबल टू कांटेक्ट दोस पीपल हु वर ट्रैवलिंग देयर?
14: Yeah, definitely. We have a fortunate to Starlink. As Nepal, all the mountain area is it's a cell phone cover. वहाँ पर phone काम कर रहा है. Yeah, but unfortunately, whoever are missing, वो लोग का phone काम नहीं कर रहा है.
13: Okay.
14: वो लोग का phone काम नहीं कर रहा है.
13: Okay. And whatever I was reading, that this catastrophe came at a time when kids were either starting the school or some of them could have been traveling to school us time par. And what is the situation like as far as kids are concerned?
14: One of the good news, one is in particular teacher and headmaster, they managed to save about 600 students. They quickly, if there was a couple of minutes late, they all been swept away. In the beginning, no one, they didn't get any warning. So whoever, after that, Nepal government ne very acha role kiya hai, wo log सबको वार्निंग दे दिया. बिकॉज इट वॉज इट टुक होल डे सर, ना 9 बजे शुरू हुआ था. बाई द टाइम द रिवर सेटल डाउन, इट वॉज 6 o'clock इन द वे सेटल डाउन. एंड बट नेपाल गवर्नमेंट ने वेरी एक प्रोएक्टिव रोल किया है, उसे लॉट्स ऑफ लाइफ सेव किया. अनफॉर्चुनेटली देर आर सो मेनी वी लॉस्ट, वी कैन डू मच. या वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर देम, सम ऑफ देम वी आर दे आर स्टिल डिगिंग अलाइव. सो वी आर होपिंग we can find more people alive.
13: And jo nazara wahan se hame dekhne ko mila hai is really heartbreaking. Jis tarah se shuru mein jab jo pehle kuch video samne dekhe to directly jo baad hai ye nahi dikhi, lekin it was people were seen running to safer grounds. And us samay par main soch raha tha ki kya ho raha hai, and thodi der baad ehsaas hua ki kya jaakar wahan par actually hua hai. And have the authorities been able to establish what have been the causes of this flood?
14: हमें गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट मिला है. गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिपोर्ट में 8:37 को एक अर्थक्वेक आया था, 4.5 रिक्टर अराउंड दैट. उसका उसने जो एवलांस क्रिएट किया था, वो एवलांस ने एक रिवर को डैम ब्लॉक करके डैम क्रिएट कर दिया. तब वो डैम फट गया, फिर सब ऐसा हो गया.
13: आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि इस बात का भी डर जताया जा रहा है कि एक और झील जो है या लेक जो है वहाँ पर भी बाढ़ का खतरा जो है ये हो सकता है. Has there been any reports on that?
14: Definitely there's people been warned. वहाँ एक नया टेम्पररी ब्लॉक करके एक इट्स लेक बन रहा है, इट्स बहुत बड़ा लेक बन रहा है, और वो फटने का चांसेस है. सब गवर्नमेंट ने सबको वार्न किया है, स्टे अवे फ्रॉम रिवर साइड. सो वी आर स्टिल इन वेटिंग वेट एंड सी सिचुएशन फॉर दैट. ये दस आपने जो सुना बहुत राइट है. और सही है वहाँ पर एक डैम बन रहा है, वो टेम्पररी डैम बन रहा है, वो रिवर ब्लॉक हो गया है बिग आइस ब्लॉक से, एनी टाइम इट कैन बी ब्रस्ट.
13: ओके, और जो जो तबाही वहाँ पर हुई है उससे तकरीबन अभी तक जो नंबर सामने आए, तकरीबन कितने लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने शायद अपना घर बार जो है ये खो दिया है, दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड एंड दे मे बी स्टेइंग अस यू नो एट इवैक्यूएशन सेंटर्स, या फिर जिनको जाकर अपनी फैमिलीज के साथ कहीं और रहना पड़ रहा है, कुछ नंबर्स आप लोगों को अभी तक पता चला है?
14: अभी तक तो नंबर नहीं आया है, क्योंकि आपने देखा है सब इवन वीडियो में सब रोड स्वीप कर दिया है, देयर इज नो रोड एक्सेस नथिंग, ओनली लाइक डजंस ऑफ हेलीकॉप्टर दे आर द सर्चिंग फॉर लाइफ एंड दे आर इन अ रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू मोड एट द मोमेंट इट्स नॉट, बट वी आर सो प्राउड दैट आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया ऑलरेडी सेंट 10 ट्रक of that emergency equipment, shelters, food and medicine already is on ground zero, they already there. Sub country Baraka country ne bahut support kiya, we are so proud of that. Ek baat main bataun Vijay bhai, this was like aapko to pata hai today is a big Hindu festival
13: ji,
14: and there were so many people were going to us to be there by today, and unfortunately at the moment the highest tourist we are missing from India. Our sympathy and our sorrow, our condolence with their family members.
13: यहाँ पर हम जो लोग हैं क्या किसी तरह से सहायता कर सकते हैं, या क्या हम लोग यहाँ से कर सकते हैं?
14: नेपाल ने अभी आपको तो पता है ऐसा जब सिचुएशन आते हैं there will be so many scammers get active.
13: जी.
14: तो नेपाल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि नेपाल जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें डोनेट करने के लिए, वो लोग नेपाल सरकार को हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, प्लस नेपाल न्यूजीलैंड में जो नेपलीज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी फंड रेजिंग कर रहा है, एनी वन कैन डोनेट थ्रू देम और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रिलीफ फंड. We'll be releasing there, like you can direct pay from your credit card or something. It's directly 100% amount you donated, it goes to direct Prime Minister Relief Fund. आपको पता है अभी जेएनसी गवर्नमेंट है, our Prime Minister and our Ministry is very active and they we hope they zero corruption at the moment. So every single cent New Zealand may say contribution होगा वो सब राइट जगह पे यूज हो जाएगा, और उसका हम लोग अभी भी आई नीड योर हेल्प एज वे विजय भाई, उसका हम लोग शेयर करेंगे आपका वेबसाइट फेसबुक पे से उसको शेयर करना पड़ेगा. एंड वी आर रिक्वेस्टिंग, न्यूजीलैंड एंड नेपाल का गुड रिलेशनशिप है, एंड एवरी टाइम हम लोग का जब सिचुएशन ऐसा नेचुरल डिजास्टर है न्यूजीलैंड ऑलवेज before and they help Nepalese people. So we are asking for big support from New Zealand people and New Zealand government, from everyone.
13: दिनेश भाई, जो लोग नेपाल से नहीं हैं या फिर वहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते समझते नहीं हैं, जिस एरिया में ये बाढ़ आई है वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका गुजर बसर कैसे होता था? What did they actually do for their survival?
14: वो जब रिवर साइड है वहाँ, तो जहाँ पर वो फ्लड गए जिस रिवर में दे स्विप्ट अवे अबाउट 14 हाइड्रो डैम्स, सो मेनी पीपल वर वर्किंग इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड वो लोग खेती किसान करते थे, एंड रोड साइड में वो लोग बिजनेस करते थे, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दे वे सर्वाइविंग दैट वे, एंड प्लस it's like population is growing in Nepal, so even a small town they were doing all sort of business and they're surviving themselves.
13: And jaane se pehle koi aur important information hai jo aap logon ke sath share karna chahenge that you think is important for all of us to know?
14: Again, Vijay bhai, main bata, we are in Nepal is in very critical, devastating situation, and Nepal government trying their best to support this victims and trying to find dead bodies and everything. But at the same time, we need the resources and we need the support. So New Zealand was survivor sabla uncle and sab ko mai request karta hu jitna aap jitna kar sakte ho please contribute kar dijiye. This time Nepal desperately need your help. Any through government channel hum log uska share karenge uska kahan wo karna hai wo direct Nepal government ka prime minister ka relief fund mein jayega. I request every New Zealander, every aap log jo sun rahe hum FM ki taraf se please help kar dijiye hum log ko. We really need your support this time.
13: Thank you Dinesh bhai aapke time ke liye aur definitely we will share and hamari duaein hamari prarthnaein aap sabhi ke sath. और जो जो लोग नेपाल में हैं चाहे वो नेपाल के हैं या नेपाल के बाहर से हैं आप सभी के साथ हैं. आने वाले समय में डेफिनेटली हम आपसे और भी बातें करते रहेंगे ताकि लगातार यहाँ पर लोगों को पता चलता रहे कि वहाँ क्या हो रहा है किस तरह से. मुश्किल समय हर एक इंसान के लिए है दुनिया में. दुनिया इट्सेल्फ ग्लोबली कठिन दौर से गुजर रही है लेकिन एक दूसरे का साथ देकर अगर किसी का सहारा हम बन सकते हैं तो वो उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती.
14: थैंक यू बिजय भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी, आई रियली अप्रिशिएट.
13: थैंक यू, थैंक यू सो मच. तो ये थे दिनेश भाई जो कि भूतपूर्व ऑनररी काउंसिल हैं नेपाल के ऑकलैंड के लिए. ही इज़ बीन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑल दिस इयर्स. लगातार नेपाली जो कम्युनिटी है यहाँ पर न्यूजीलैंड में उनके लिए बहुत सारा काम जो है ये उन्होंने किया है. It's really devastating, you know, when you listen to it itself. जब आप सुनते हैं, you've been watching a lot of videos, जो कुछ नेपाल में हुआ है, और समझ में नहीं आ रहा है कि how do you actually talk about it?
2: Yeah, that's the worst part because if you don't talk about it, तो आप लोगों तक वो message नहीं पहुंचा सकते. And these things are not in control of a human, you know. जो भी चीज़ें हुई हैं ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है उसे कंट्रोल करने की, उसे बदलने की अब. एंड वट एवर हैज़ हैपन इट्स डेवेस्टेटिंग, इट्स हार्ट ब्रेकिंग. मैंने तो यू नो शायद आई वॉज लाइक जब मैंने एक वीडियो देखा था आई वॉज़ रियली शुक क्योंकि वो वीडियो देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई हॉलीवुड फिल्म का कोई सीन हो. बिकॉज जिस तरह से VFX का इस्तेमाल करते हुए नेचुरल डिजास्टर्स को दिखाया गया है फिल्मों में, इनफैक्ट इट लुक्ड स्केरी इन द मूवीज बट इट वॉज जस्ट अ मूवी. लेकिन आई नेवर एवर इमेजिन इन माई लाइफ कि ऐसा कुछ रियलिटी में अगर हो तो वो कैसा लुक रहता है. यू सी पीपल ट्राइंग टू रन टू हायर ग्राउंड टू सेव देमसेल्व्स एंड विद इन सेकेंड्स सब कुछ जब बर्बाद हो जाता है, इट्स समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, इट्स समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, यू नो. तो अभी भी सिचुएशन आई थिंक अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि कितना दर्दनाक हादसा ये हुआ है. एंड एज दिनेश जी सेड आई फील बैड जब उन्होंने बोला कि प्लीज़ वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट एंड वी नीड योर हेल्प बिकॉज यू कैन एक्चुअली हियर इट इन हिज वॉइस कि वो कितने डेस्परेट हैं. और इट्स समथिंग जो हिडन नहीं है किसी से, इट्स वेरी ओपन, द एंटायर वर्ल्ड नोज कि नेपाल नीड्स एवरीवन राइट नाउ.
13: Yeah, and हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे. न्यूजीलैंड के जो लोग वहाँ पर गायब हैं उनके बारे में, इंडिया से जो लोग गायब हैं उनके बारे में. एंड अराउंड 1100 नंबर जो है उन्होंने बताया लास्ट उनकी जब नेपाली सरकार से बात हुई है, और उतने लोग गायब हैं. 369 जो है कन्फर्म्ड डेड. अभी भी कई लोग यू नो रबल के नीचे या मलबे के नीचे दबे हुए हैं या कहीं फंसे हुए हैं. जैसे उन्होंने बताया कि 8000 पर्सनल जो है मिलिट्री पुलिस और अन्य सर्विसेज के वो रिलीफ वर्क में फिलहाल वहाँ पर लगे हुए हैं. एंड जैसे ही कुछ डिटेल्स जो है और मिलेंगे ये हम आपके लिए लेकर आएंगे. एंड जैसे हमने पहले भी कहा कि मुश्किल समय हम सभी के लिए है. एंड दुनिया भर में लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. यू नो इकोनॉमिक सिचुएशन हर एक कंट्री में बहुत ही डिफ़िकल्ट है. लेकिन इफ़ पॉसिबल अगर आपसे हो सके. एंड यू नो व्हाट ब्रोक माय हार्ट वाज जब क्योंकि आई वाज I've deliberately not watched videos जो अचानक से सामने आ गए वही मैंने देखे. I've tried to read a lot, and one of the things जो मेरे जहन में रह गई कि जैसे उन्होंने बताया कि 8:36 or something कुछ time था जो बात जहाँ पर जब मैंने पढ़ा कि उस समय पर बच्चे वहाँ पर स्कूल जाने के लिए रिपोर्ट में था कि काफी लंबा ट्रेवल करते हैं. And there were kids who were traveling to school or there were kids who had started school at that point in time. 600 स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने बताया शायद किसी एक स्कूल के जिनको उनके हेडमास्टर और टीचर्स ने मिलकर बचा लिया. बाकी स्कूलों का क्या, बाकी बच्चों का क्या? वो दैट थिंग स्टेड इन माय माइंड. एंड वी विल डू वट एवर पॉसिबल फॉर अस, वट एवर इज पॉसिबल फॉर अस. सॉरी रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स. एंड अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप हेल्प करना चाहते हैं तो BF लिखकर हमें भेज दें, हमें पता चल जाएगा. एंड देन वी विल नो कि
2: किस तरह एंड वर्क थिंग्स आउट. क्योंकि एज वेरी लाइटली सेड ऑल्सो कि ऐसे सिचुएशन में बहुत से स्कैमर्स भी एक्टिव हो जाते हैं. So we have to be very careful. We have to be very aware of the situation. Help जहाँ तक हो सके करनी ज़रूरी है अभी. And सही तरीके से हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, because otherwise the people who actually need help उन तक वो पहुँचेगा नहीं.
13: तो अगर आप सोचते हैं कि आप इस सिचुएशन में हैं कि आप किसी न किसी तरह से हेल्प जो है ये कर सकते हैं, BF लिखकर आप अगर 5599 पर भेज दें हमें कुछ पता चल जाएगा. वी विल हैव एन इंडिकेशन और हमें भी ये पता चलेगा कि हमें यहाँ से आगे किस डायरेक्शन में अपना कदम जो है ये उठाना चाहिए.
12: अपना ए गेम
15: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उससे.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. Accurate traffic.
4: Switch to AMI car insurance.
5: Quite cloudy, a little sun, some showers later and a high of 18. Motorways easing up nicely. Northern 20 minutes Constellation Drive to the CBD. Just 32 from Silverdale. Slow at Constellation and Esmond, but only a little. Northwestern 20 minutes Massey to town. It's eased up nicely.

0: packed with the goodness your family deserves.
1: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious, high protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
3: Gentlemen, with your name on them. This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
4: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
5: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: 8 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 9 बजने में और थैंक यू सो मच आप में से जितने भी लोगों ने अपने मैसेजेस जो है ये हमारे पास भेजे हैं इंडिकेट करते हुए कि आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं नेपाल में जो भाई बहन हैं जिन पर बाढ़ का बहुत बुरा असर पड़ा है उनको तो जो भी सिचुएशन होगा इस पर अपडेट्स हम आपको आगे चलकर जरूर देंगे
7: बिल्कुल तो गिव अस सम टाइम बट राइट नाउ थैंक यू सो मच अपना अपना मैसेज हमारे पास भेजने के लिए फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए याद आपको दिला रहे हैं हमारा फादर्स डे प्रमोशन ये भी जारी है और फेसबुक पेज पर हमारा डेड्स एआई अपग्रेड ये कंपटीशन जो है ये अभी भी एक्टिव है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ड्रॉ होगा यानी नेक्स्ट वीक फ्राइडे 4th of September को और अपॉर्चुनिटी है आप में से किसी के पास टू विन $300 कैश ये $300 आपके हो सकते हैं पर शर्तें आपको इसमें पार्ट लेने के लिए एक चीज़ करनी है अपने पापा की एक फ़ोटो लीजिए और एआई के ज़रिए उन्हें के फ़ोटो को एज अ सुपर हीरो आप जनरेट कीजिए और फिर उस सुपर हीरो अपग्रेडेड फ़ोटो को आप हमारे फेसबुक पेज पर जो पोस्ट है डेड्स एआई अपग्रेड उसके कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिए तो वंस यू पोस्ट दैट फोटो मेक श्योर आप कमेंट में जाकर जब ये पोस्ट कर रहे हैं अपने डेड को टैग करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इन्वाइट करें कि वो इस फोटो को लाइक करें नाउ द कंडीशंस दैट नीड टू बी मेट जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें कि आप हम एफ एम का जो फेसबुक पेज है ये लाइक कर रहे हैं और साथ में फॉलो कर रहे हैं यू लाइक द कॉम्पिटिशन ऑल्सो दीज आर द कंडीशंस विद योर एंट्री जिसके साथ आप ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे टू विन $300 कैश

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के मौसम के लिए कहा गया है कि बादल जो है ये छाए रहेंगे, शाम के समय बारिश होने की संभावना है। सनसेट होगा 5:58 PM पर, टेम्परेचर 15 डिग्रीज है फिलहाल, हाई 17 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर। ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 13 डिग्रीज रहेगा। वैसे कल के मौसम के बारे में बता दें, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कल का मौसम कहा गया है कि ओकेजनल रेन, इनफैक्ट काफ़ी गंभीर बारिश जो है समय समय पर ये होने की संभावना है। ये शाम से लेकर रात तक के समय ज़्यादातर गंभीर बारिश की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन सुबह से बारिश जो है ये होगी। तो इट्स गोना बी क्वाइट रेनी वेदर टुमारो। अगर आपके कुछ आउटडोर प्लान्स है, ट्रैवलिंग के प्लान्स है, तो यू माइट वांट टू कंसीडर द वेदर वन मोर टाइम। और देखते हैं अगर कुछ बदलाव आता है मौसम में कल के लिए, तो आपको जरूर अपडेट हम करेंगे।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून। एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको, इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग।
3: व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बकते हो?
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: सुनेंगे आप तो आप बोलेंगे कि क्या बकते हो
1: जी।
5: कभी कभी जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके बारे में हम कहते हैं ना कि तकिया का इसका कितना बड़ा मुंह है।
1: हाँ।
5: ऐसा लोग बोलते हैं।
1: या ट्रू।
5: और यही साबित किया है आइज़क जॉनसन ने।
1: कैसे?
5: ठीक
1: नहीं, मतलब कैसे के साबित किया है?
5: क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा मुंह है।
1: ओह रियली?
5: हाँ।
1: और कैसे बैक करेंगे अपना ये क्लेम? ये
5: क्योंकि ये एक फुल साइज्ड ऑरेंज जो है सीधे अपने मुंह के अंदर डाल सकता है।
1: पूरा?
5: हाँ हाँ।
1: ओके।
5: पूरा ऑरेंज या फिर 4 स्टैक्ड मैकडॉनल्ड्स चीज़बर्गर्स जो है एक ही टाइम पर मुंह के अंदर। इनका मुंह जब खुलता है 10.196 सेंटीमीटर्स फ्रॉम हिज टॉप टीथ टू हिज बॉटम टीथ।
1: राइट।
5: अच्छा
1: हाँ हाँ, मुंह में
5: 10 सेंटीमीटर्स
1: उतना बड़ा।
5: मेरा तो 5 भी नहीं होता होगा।
1: I don't know, मेरा कितना है? मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बट ये जो डायलॉग आप बोलते ना कि लोग जब ज्यादा बात करते ये मैंने सुना है अपने लिए बहुत बार,
5: बट
1: लाइक लिटरली मेरा मुंह उतना बड़ा नहीं है।
5: जस्ट इमेजिन 10 सेंटीमीटर्स इसका मुंह खुलता है।
1: इज इट द सेम गाय हु कैन फिट अ स्मॉल कोक, सॉरी नॉट कोक, स्मॉल कैन, जो ड्रिंक्स वाला कैन होता है वो? बिकॉज़ देयर इज अ गाय जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी है और वाइड है, आई थिंक उनका माउथ वो इतना वाइड है कि वो एक पूरा का पूरा जो कोक कैन है ये फिट कर सकते हैं अपने माउथ में।
5: आई हैव नो आइडिया, बट इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो
1: उनके जोस काफी फ्लेक्सिबल होंगे ना।
5: मैं भी
1: या एनीवेज आज की क्या बकते हो स्टोरी आपके लिए लेकर आ रहे थे, बट रिमाइंडिंग यू कि थोड़ी देर बाद रक्षाबंधन रक्षाबंधन प्रमोशन का जो ड्रो है ये होगा। तो आज इन द ब्रेकफास्ट शो हम आपको बताएंगे कि फेसबुक पर पार्ट लेते हुए किसने $300 जो है ये जीते हैं, इसके बारे में आपको हम जरूर जानकारी जो है ये देंगे। और ऑन द अदर हैंड फादर्स डे प्रमोशन में हिस्सा लेकर आपके पास मौका रहेगा इनाम जीतने का, क्योंकि हमारा डैड्स रिवर्स ग्रिल ये प्रमोशन भी जारी है और इसके तहत $500 जीतने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी इसी घंटे आपको हम जरूर देंगे।

0: तो रक्षाबंधन के इस खास मौके पर आज जबकि रक्षाबंधन का त्योहार हम मना रहे हैं, आपके लिए ये राखी गीत लेकर आ रही थी श्रेया घोषाल की आवाज में। अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को विश कर रहे हैं, जहां कहीं भी इस त्योहार को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से आप तक हम जरूर पहुँचा रहे हैं।
1: और आपने रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अब वक्त है कि बताएं आप में से वो कौन है जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इनाम जो है ये जीता है।
0: वैसे तो बहुत से एंट्रीज हमारे पास आई, कई इंटरेस्टिंग एंट्रीज जो है ये आई और कुछ तो बहुत इमोशनल भी थी, बट आज हमारे जो विजेता हुए हैं इनका नाम है या हुई है माफ़ कीजिएगा, इनका नाम है कोमल सचील साची, इस आईडी से इन्होंने अपनी एंट्री ली थी।
1: हाँ।
0: और इन्होंने अपने जो एंट्री है ये हमारे साथ शेयर की थी। माय यंगेस्ट ब्रदर शनील चंद्रा गेव मी दिस बेंगल 8 years अगो फॉर राखी, वी हैव 23 years ऑफ एज गैप, माई लव फॉर हिम इज़ अनकंडीशनल। तो इन्होंने एक बेंगल जो है उसकी फ़ोटो जो है ये डाली थी और उसमें इन्होंने अपने इस बेंगल से रिलेटेड जो भी मेमोरी है ये शेयर की, 8 साल पुरानी है। और फिर साथ में अपने भाई को भी टैग किया। और कोमल आपका जो नाम है ये हमारे पास है, डिटेल्स हमारे पास है, डेफिनेटली आपको हम अप्रोच भी करेंगे। बट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज की हमारी रक्षाबंधन प्रमोशन की विजेता आप हुई हैं, $300 कैश जो है ये जीतने के लिए। और जितने लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एंट्रीज एज वेल।
1: इंतज़ार करें, आज बाद में चलकर और भी ड्रॉज होंगे जिन्होंने लाइव होने क्या बोलते हैं सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में हिस्सा लिया था, विनर्स जो है ये अनाउंस होने बाकी हैं तो वो आज बाद में होगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल, $300 आपको मिल चुका है रक्षाबंधन के लिए ऑन हम।
2: व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट्स अप ऑकलैंड।
0: चलिए व्हाट्सएप ऑकलैंड में अब बारी है कि आपके लिए आसपास हो रहे कम्युनिटी के जो इवेंट्स हैं इस पर भी चर्चा जो है ये हम कर ले। और बहुत से जगहों पर कल से इनफैक्ट कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है ये मनाया जाएगा, इसके बारे में काफ़ी बातें जो है ये हो रही है। सो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो कि बहुत से जगहों पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और कहाँ कहाँ पर ये मनाया जा रहा है, कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्म उत्सव जो है ये मना रहे हैं कल 29th August से लेकर फ्राइडे 4th September तक एट द केव। होल का नाम है द केव जो 5/57 केविन डिश ड्राइव मैनिकाओ में है, विच इज़ राइट ऑपोजिट वे हाउस। 7:30 PM से हर रात यहां पर आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं।
1: इसके अलावा श्री हनुमान मंदिर नोचो ऑकलैंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है ये कल से लेकर अगले फ्राइडे तक मनाया जाएगा। कल शाम 5 बजे से कलश भागवत यात्रा और स्थापना पूजा होगी और उसके बाद दैनिक कथा जो है ये आपके लिए होगी जिसमें आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं।
0: माँ दुर्गा टेम्पल पापाटोइटो जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जाएगा कल, यानी या माफ कीजिएगा इसकी शुरुआत वैसे मंडे 31st August से, माफ कीजिएगा इसकी शुरुआत कल से हो रही है, विच इज बेसिकली
1: 29th।
0: एक मिनट में डिटेल्स थोड़ा कंफर्म कर लूँ क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, मंडे से है यहाँ पर। सो माँ दुर्गा टेम्पल जो पापाटोइटो में है यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव जो है मंडे 31st August से लेकर फ्राइडे 4th September तक मनाया जाएगा और हर रात यहाँ पर आप 7 बजे से प्रोग्राम का हिस्सा जो है ये बन सकेंगे। और फ्राइडे 4th September को रात 8:30 से लेकर देर रात तक यहाँ पर जो प्रोग्राम है जन्माष्टमी का ये रहेगा।
1: रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ये मनाया जाएगा कल से लेकर अगले शुक्रवार तक।
0: और न्यूजीलैंड संगम द्वारा जो कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है ये मनाया जाएगा आज से, इनफैक्ट इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। टिल 4th September ये रहेगा एट डेकोर ऑफ एलिगेंस 16 Lambie Drive मैनिकाओ, यहाँ पर आप हर रात 7:30 PM से इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। लास्ट डे यानी फ्राइडे 4th September को कृष्ण जन्म उत्सव हवन के साथ होगा जिसमें आप ज़रूर भाग ले सकते हैं।
1: साथ ही में श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन फाग मंडली द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पपेटोएटोए में। तो हर रात जाकर आप यहां पर कथा में हिस्सा ले सकते हैं।
0: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहां पर भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक मनाया जाएगा और हर रोज 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच 6 PM से आप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। फ्राइडे 4 सितंबर को शाम 5 बजे से प्रोग्राम जो है ये शुरू होगा।
1: और ये रॉयल सनातन संगम संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वुमन केयर ट्रस्ट बिल्डिंग 2 सटन क्रसेंट पपेटोएटोए में। कल से अगले शुक्रवार तक रात 7 से लेकर 9 बजे तक कथा होगी, जिसके बाद प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा।
0: तो आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसका हिस्सा लोगों को बनाना चाहते हैं, जिसकी जानकारियां अन्य लोगों तक आप अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास डिटेल्स आप ईमेल कर दें buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर, और कम्युनिटी न्यूज़ के दौरान ये जानकारियां हम ज़रूर लेकर आएंगे। पर फिलहाल के लिए चलिए थोड़ी देर बाद आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन, इसमें आपको भाग लेने का मौका हम जरूर देंगे।
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
4: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डैड को रेडी करो, खुश करो।
4: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
4: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
7: Bunnings has great value nailed across the store.
8: Get your garden sorted for less with a Moda 15cm charcoal self-watering Oslo pot, only $360, or Dalton's premium 10-litre indoor plant mix, just $12.88. Head in store or online for even more great value.
9: Bunnings Warehouse.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। अच्छा बताओ, तो अंडा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह।
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: What's going on?
1: अभी 23 मिनट हुए हैं 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप साथ दे रहे हैं. भाई हमारा जो बोर्डिंग कॉल है ये प्ले हो चुका है. अगर आपने नहीं सुना बोर्डिंग कॉल आपको एंटर करना है. क्या आपने लिंक या हासिल कर लिया है? क्या आपको पता है कि कहाँ पर जाकर आपको बोर्ड करना है? रोवर वो जगह है. रोवर पर कहाँ जाना है क्या आपको पता है? हैव यू डन ओवर 2500 एंट्रीज ऑलरेडी इन सो फार. सो अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू विन टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी फ्लाइंग सोलोमन एयरलाइंस, जो हफ्ते में चार बार ऑकलैंड से वनुआतु डायरेक्ट फ्लाई करता है. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं. नहीं किया है तो डू दैट. BC लिखकर 5599 पर भेजे लिंक मिल जाएगा या hum.rover.nz पर जाएं. स्क्रॉल डाउन नीचे विन सेक्शन में आपको जो लिंक है इसका मिल जाएगा.
0: तो चलिए आपके लिए और भी डिटेल्स जो है अगर आपको चाहिए तो हम जरूर लेकर आएंगे. जस्ट लेट अस नो एंड वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. पर फिलहाल के लिए फादर्स डे कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका अब आपके पास है. हमारा फादर्स डे कंपटीशन जारी है डैड्स रिवर्स ग्रिल. और अगर आप एज अ डैड आपको लगता है कि आप आजकल का जो मॉडर्न डे स्लैंग है, जो पॉप कल्चर है, और आजकल यू नो इतनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट होती रहती है, इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स तो आप डेफिनेटली हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. एज अ डैड व्हाट यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल 800-004-866 पर. और कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना होगा. इफ यू गिव द आंसर करेक्टली आपका नाम उस ड्रो का हिस्सा बन जाएगा जहां पर $500 कैश जीतने का मौका है. सो यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल, आंसर द क्वेश्चन, बी पार्ट ऑफ द ड्रो. और नेक्स्ट वीक फ्राइडे 4th of September को जबकि ड्रो होगा तो पता चलेगा क्या आप विजेता हुए हैं या नहीं, $500 आपके हुए हैं या नहीं. और टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं hum.rova.nz.
1: तो लाइंस खुले हुए हैं. आज कौन होगा जिनका नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे? और जल्दी से आपको कॉल करना है. हमारे पास नंबर याद रखें 0800-004-866
0: 0800-004-866. इफ यू आर अ डैड गिव अस अ कॉल टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन.
1: गुड मॉर्निंग. हेलो.
9: या गुड मॉर्निंग.
1: कैसे हो भाई?
9: भाई ठीक हो, थैंक यू.
1: क्या नाम है आपका?
9: आप लोग ठीक हैं? मेरा नाम विश्वा है.
1: विश्वा, आके विश्वा, हम ठीक हैं, थैंक यू सो मच. कितने बच्चे हैं आपके विश्वा?
9: मेरे पास दो बिटिया है, अभी फिलहाल पीजी में है.
1: अच्छा, और क्या उम्र है? क्या उम्र है उनकी?
9: one is 24, one is 25.
1: ओके, सो बड़ी बड़ी बेटियां हैं आपकी. और फादर्स डे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आपने कॉल किया. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेट विद योर डॉटर्स?
9: लास्ट फादर्स डे आए थे हमको मिलने.
0: oh, wow.
9: इधर थे तो या दे वेंट बैक बिकॉज़ सोनी काम कर रहे हैं अभी तो प्यार है बट शायद लेटर ऑन दे विल जॉइन अस इन न्यूजीलैंड. मेरा 2 साल हो गया है यहाँ पर ना.
1: ओके ओके,
9: वी एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर प्रोग्राम सो आई थॉट ओके Let me give a call. Say hello.
1: Okay. अगर विश्वा मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू से समथिंग टू बोथ योर डॉटर्स, क्या बोलेंगे आप उनसे?
9: अरे वो हमारे दोनों प्राइड है, पेरेंट्स के बहुत प्राइड है. They've made me proud. One is a doctor right now. Another one is Orita, but definitely I miss them both.
1: क्या चलो आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपको बताना है. व्हाट डज DIY स्टैंड फॉर? व्हाट डज
9: DIY?
1: या व्हाट डज DIY स्टैंड फॉर? रिवर्स ग्रिल में आज इसका जवाब आपको देना है टू गो इनटू द ड्रॉ टू क्लेम, जिसमें जहां पर आप $500 कैश जीत सकते हैं.
0: क्या लगता है आपको, अगर अगर इफ यू डोंट हैव एन एग्जैक्ट आंसर, अगर आपको अनुमान लगाकर जवाब देना हुआ तो व्हाट विल इट बी? आप है विश्वा जी?
9: Do it yourself or something?
1: That's what actually it is.
0: It means, see?
1: Do it yourself.
9: Oh,
0: yeah.
9: Really?
0: Yeah.
9: बिकॉज लॉ लिए क्या क्या यूज करते हैं. मैं टू बी ऑनेस्ट आई थी क्या एक्रोनिम वेरी लाइट पिक करा बिकॉज आई एम पेपर बेस्ड पर्सन. तो जो कोविड मारे थे हमको चेंज करना पड़ा अपना सिस्टम ना, गोइंग बैक इनटू आईटी ब्लाई शॉर्ट फॉर्म्स एंड देन आई हैड टू really struggle to get to a lot of these things up. So thank you, yeah.
0: But see, आपने अनुमान लगाया और फिर भी आपका जवाब सही हुआ. तो definitely चलिए आपका नाम हम रो में शामिल कर रहे हैं. Thank you so much for calling us and बहुत बहुत शुक्रिया. All the very best. अगर आप विजेता होते हैं आपको जरूर हम कॉन्टेक्ट करेंगे. ठीक है.
1: थैंक यू. तो ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी. फादर्स डे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का डैड्स रिवर्स ग्रिल या फिर सोशल मीडिया पर जाकर अपने पापा को एक सुपर हीरो के रूप में आप बनाएं और प्रेजेंट करें
0: फोटो को सुपर हीरो.
1: हाँ, तो आप इनाम जो है ये जीत सकते हैं.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
11: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
14: Brought
2: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: baby. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो.
2: और गानों में जैसे

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: find. Sif Rover par.
1: At Bunnings, we've got gifts built for Dad, like the Jack Garden Upwall System, only $85.95. Ryobi 1 plus 18-volt pruning saw, tool only, just $149. That's Father's Day sorted at Bunnings. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Blood and plasma are always precious, but in wintertime with sickness about, we need even more donors to fill the gaps others leave. If you can, please book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
3: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
4: Tradestaff, industrial employment solution. Tradestaff.
5: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
6: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी डिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
7: गोवा की गलियों में एक नया बच्चा जन्म ले रहा है टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश मयं पाला कियारा अडवाणी तारा सुपारिया एंड हुमा कुरैशी
8: हेलो डैडी
7: टॉक्सिक नाउ शोइंग इन सिनेमास
9: इट्स टाइम आई एम कमिंग
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
10: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: What's going on?
13: डेली राउंडअप का वक्त हो चुका है कल साउथ ऑकलैंड में जहां एक घटना घटी जिसमें एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई उसके पास रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उसने एक गाड़ी जो है ये देखी थी रास्ते पर तेज़ी से जाते हुए बिफोर हियरिंग गन शॉट्स रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि उनकी बातचीत जो है 30 साल के एक व्यक्ति से चल रही है जो उनके हिरासत में है इस होमोसाइड के संबंध में पुलिस जो है एक व्यक्ति की तलाश कर रही थी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर तोफिलाउ फामाउनुइया जो कि काउंटीज मैनिकाओ सीआईबी के हैं उन्होंने बताया कि पुलिस अभी ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये 30-year-old उस मामले में इन्वॉल्व था या नहीं और इसके बारे में जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी वो इसके बारे में लोगों को और जानकारियां देंगे
14: इसके अलावा एक और एक खबर आ रही है जहां पर कहा गया है कि न्यूजीलैंड का फाइनेंशियल रेगुलेटर वार्न कर रहे हैं दैट एआई कुड मेक मॉर्गेज फ्रॉड हार्डर टू डिटेक्ट वार्निंग्स आ रहे हैं आफ्टर ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने अनकवर किए हैं पोटेंशियली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट होम लोन्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने ये पता किया है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग एलिजिबली इन्फ्लेटेड देयर इनकम्स मिस प्रिंटेड देयर जॉब्स और फेक बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है कि उन्होंने क्रिएट किए टू सपोर्ट देयर मॉर्गेज एप्लीकेशंस. अब कहा गया है कि देयर आर कंसर्न्स दैट एआई कुड मेक फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक पे स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स और यहां तक कि बैंक स्टेटमेंट्स भी, एंड दे लुक मच मोर कन्विंसिंग. न्यूजीलैंड के फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी का कहना है कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स ताकि वो इंफॉर्मेशन की जांच कर सके और सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस को स्पॉट कर सके. बैंक्स का कहना है कि दे आर वार्निंग पीपल टू बी केयरफुल ऑफ एनीवन प्रॉमिसिंग गारंटीड लोन अप्रूवल या फिर क्विक फाइनेंशियल फिक्स, स्पेशली अगर वो आपसे अपफ्रंट फीस की मांग करते हैं तो पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की मांग करते हैं या फिर आपको इनकरेज करते हैं टू पुट फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोन एप्लीकेशन. एक मॉर्गेज कंपनी ने कहा है कि ओपनिंग बैंकिंग वे बैंक्स कैन एक्सेस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रादर देन आप डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करो सप्लाइड बाय एप्लीकेंट्स कुड हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ फोर्ज्ड पेपर वर्क. और ये जो मैसेज है इट्स वेरी सिंपल कि AI इज गेटिंग स्मार्टर, लेकिन डू योर चेक्स, मेक श्योर अपना रिसर्च आप करें बिफोर आप किसी भी तरह के इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं. तो
13: न्यूजीलैंड ने प्री टैक्स लॉस की घोषणा की है ऑफ $336 million. इसके पीछे जेट फ्यूल प्राइसेस, इंजन अवेलेबिलिटी, एविएशन सिस्टम कॉस्ट और मेंटेनेंस वजह बताए गए हैं. जो नेट लॉस है $242 million का है, जबकि टोटल रेवेन्यू एयर न्यूजीलैंड का $7 billion था. चीफ एग्जीक्यूटिव निखिल रविशंकर ने बताया कि ये साल जो है एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी यही दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि एयर ट्रेवल साथ में एयरलाइंस ग्लोबली जो है वो फ्यूल कॉस्ट को फुली रिकवर नहीं कर पाए हैं. और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्विक और डिसाइसिव एक्शन लिया फेयर एडजस्टमेंट्स के थ्रू, कैपेसिटी रिडक्शन के थ्रू, ताकि अफोर्डेबिलिटी कस्टमर्स के लिए रहे और सर्विसेज जो हैं ये भी उनको प्रोवाइड किया जा सके.
14: और इसके साथ साथ आपको याद दिला दे दैट जो वॉरियर्स फिलहाल मैच खेलने वाले हैं NRL टॉप का जो लेडर है, पॉइंट्स टेबल है बेसिकली, ये दरअसल टॉप में पहुंच चुके हैं विद जस्ट 2 rounds टू गो एंड देयर ऑन ट्रैक पोटेंशियली एक फाइनल जो है होम फाइनल ये होस्ट करने के लिए. बट जो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ खड़ा हुआ है कि वे विल दैट फाइनल एक्चुअली बी प्लेड. वॉरियर्स का कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है दे वुड वांट इट एट देयर स्पिरिचुअल होम यानी गो मीडिया स्टेडियम वेयर जो एटमोस्फियर हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस उनके लिए. बट देयर इज़ अ चांस दैट NRL कुड मूव द गेम टू ईडन पार्क सिंपली क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी जो है फैंस की ये वो कई टकर सकते हैं. 50,000 फैंस जो है अराउंड ये यहाँ पर आ सकते हैं, ऑलमोस्ट ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ गो मीडिया स्टेडियम. इसका मतलब ये है कि एक बिगर क्राउड और ज़्यादा टिकट रेवेन्यू जो है ये जनरेट होगा. वॉरियर्स के CEO कैमरन जॉर्ज का कहना है कि क्लब अंडरस्टैंड करते हैं नेशनल रग्बी लीग के अल्टीमेटली उनके सिचुएशन को एंड दे हैव द फाइनल से, लेकिन उनका मानना है कि टीम हैज अर्नड द राइट टू प्ले अ होम फाइनल एट देयर ओन ग्राउंड.
13: मनरेवा में कल रात घटी एक सड़क दुर्घटना में चुराई गई एक गाड़ी का ड्राइवर जो है ये मारा गया और जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था, ऑक्यूपेंट था, उसको कुछ मामूली चोटें आई हैं जिसके लिए अस्पताल में उनका इलाज करना पड़ा. और पुलिस का कहना है कि ये मामला शुरू हुआ जब उन्हें रिपोर्ट मिली ऑफ एन एग्रेवेटेड रॉबरी ग्रीन मेडोज एव में. ऑफेंडर जो है वॉज अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग अ व्हीकल आफ्टर थ्रेटनिंग समवन एट द प्रॉपर्टी, क्रोबा से उनको धमकाया. पुलिस यूनिट्स जो है ये एरिया में पहुंचे और उन्होंने एक व्हीकल को देखा रास्ते के बीच में चलते हुए विदाउट हेडलाइट. इंक्वायरीज में बाद में पता चला कि गाड़ी जो है ग्रीन मेडोज एव से चुराई गई थी. पुलिस ने गाड़ी को रुकने के लिए सिग्नल किया लेकिन वो तेजी से निकल गया. रात 9:30 बजे के बाद द व्हीकल हैज ट्रेवल ऑन टू एल्फ्रिस्टन रोड जहां वो हेड ऑन सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई, जिसकी बदौलत चुराई गई गाड़ी का ड्राइवर जो है उसकी जान चली गई.
15: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: आज की पहली बात, लोमड़ी कुत्ते से ज्यादा चालाक होती है, लेकिन लोग फिर भी कुत्ते को पालते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि रिश्ते चालाकी से नहीं वफादारी से चलते हैं।
1: ट्रू।
0: और दूसरी बात, बहुत गौर करें इस पर, नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है।
1: नई क्या?
0: नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, तो आज की दो बातें आपके नाम हम कर रहे हैं, और अब तो जाने का भी समय हो रहा है, तो आपसे इजाजत चाहेंगे जाने की। बाकी का आपका जो फ्राइडे का दिन है, बहुत ही बढ़िया कमाल का गुजरे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से एक बार फिर आप सभी को, आज जितने भी लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। और इंजॉय योर वीकेंड, बी सेफ। ये याद रखिए कि कल का मौसम थोड़ा खराब है, तो मेक श्योर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेदर। अब मंडे को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

बचपन की वो खट्टी मीठी यादें, वो लड़ना, वो झगड़ना, फिर मान जाना। सचमुच ये भाई बहन हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं, है कि नहीं? और खुशनसीब होते हैं वो भाई जिनके पास वो बहनें होती हैं, वो प्यारी प्यारी बहनें जो समझाती हैं, मनाती हैं। और इस पवित्र दिन वो भाई जो कहते हैं मुझे वो वादा पूरा करना है, हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। बस इसी नोट पर अब वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और मैं काशिका स्टूडियोज में हाजिर हो चुकी हूँ 12 बजे तक, आपका मेरा साथ बना रहेगा इस पावन पर्व के दिन। जितने भी भाई बहन आपस में मिलकर राखी का त्यौहार मनाने वाले हैं, तो भाई आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है, जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे मैं आ जाती हूँ आपके लिए 10 से 12 बजे, मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक यानी कि काशिका, रिश्तों में जोड़ लगाने के लिए और रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम, समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आज अपने आप भाई बहन के लिए समय निकाल रहे हैं या ओवर द वीकेंड निकालने वाले हैं? आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आई नो हमारा रक्षाबंधन का ड्रॉ हो चुका है, बट इसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें होती है ना आफ्टर इफेक्ट्स, अगर आपको कुछ शेयर करना है तो 800 हम पर आप मेरे साथ ज़रूर कर सकते हैं।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: मेरे आज के एक्सपर्ट तो बहुत ही क्यूट से हैं और इन्होंने कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उस समय हमारा गाना चल रहा था। बट लेट्स सी इफ शी इज ऑन द लाइन। गुड मॉर्निंग हम।
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी।
1: गुड मॉर्निंग, किन से बात कर रही हो?
2: मेरा नाम आकृति है।
1: हाय आकृति।
2: और मेरे साथ मेरी, हेलो कशिका जी, मेरे साथ मेरी बेटी बैठी है वर्षा। वर्षा बहल।
1: वर्षा बहल, हाउ आर यू? ओह क्या बोल रही हैं?
2: She is very excited to go and see her cousins, brothers over the weekend.
1: Achha.
2: And she has a very pretty dress, a matching one to wear with Ivan.
1: Achha.
2: She's very excited.
1: Okay, what is the color of your dress, Varsha? ब्लू। ओके, हमारे जेंजी बच्चे हैं ना, हमारे अल्फा बच्चे हैं, पता नहीं कौन से बच्चे हैं।
2: पता नहीं कौन से बच्चे, अभी पहले तो एक्साइटेड थी। हाँ हाँ, आई विल टॉक, आप कॉल करो। अब एक्साइटेड नहीं।
1: ऐसा हो जाता है। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम वर्षा?
2: That's his name.
1: नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज वी हर्ड हर वॉइस एंड शी वॉज एक्साइटेड एंड उस समय गाना बज रहा था। आई अंडरस्टैंड, बच्चों के मूड होते हैं, स्विंग्स होते हैं और कभी बात कर पाते, बट नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड वर्षा, हैप्पी रक्षाबंधन।
2: यू टू,
1: गॉड ब्लेस यू।
2: She's excited to go to daycare now.
1: Oh my God. Okay, take care.
2: Thank you, Kashika ji.
1: Take care, you too. Bye-bye. ये तो वर्षा थी हमारे साथ, लेकिन वर्षा कभी कभी बरसने लग जाती है, गुस्सा भी होने लग जाती है कि नहीं? बट ऑल द वेरी बेस्ट वर्षा टू यू। आप अपने भाई को जरूर जाके राखी बांधेगा। लेकिन अभी मेरे पास एक कॉल वर्षा से पहले कोमल की आई। कोमल स्टार्टेड क्राइंग। द रीजन वॉज शी इज द विनर एंड शी वॉन्टेड टू थैंक हम एंड शी वॉन्टेड टू थैंक ऑल ऑफ अस बिकॉज उनको एक वो इतने इमोशन में, सुबह से शी इज ओनली बीन क्राइंग because she has been missing her brother, like I'm missing my brother. तो ऐसा हो जाता है जब भाई साथ में नहीं होता, फिर आपको लगता है राखी भी नहीं भेजी। बट मुझे पता है कि मेरी बहन ने मेरे लिए मेरी तरफ से राखी ज़रूर खरीद ली होगी। ठीक इसी तरह कोमल, तुम कोई बात नहीं, अपने किसी पड़ोसी से, अपने कज़न को, किसी को भी बोलो जाके कि फटाफट जाके एक राखी खरीद ले तुम्हारे भाई के लिए, और तुम्हारा भाई फीजी में है ना, तो जाके राखी खरीद के फिर उन्हें बांध देना और अपने आंसू ज़रूर पोंछ लेना। ठीक है, और आप तो विनर भी हैं भाई, तो आपको तो खुश भी होना चाहिए। ओके, गाना आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ाते, नहीं तो मैं खुद थोड़ी देर में रोने लग जाऊंगी अगर मैं भाई बहन के इस विषय में ज़्यादा बातचीत करूंगी। लेकिन अगर आप कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं, अपने भाई बहन के लिए मैसेज देना चाहते हैं, तो 5599 पे आप मुझे ज़रूर ज़रूर टेक्स्ट कीजिए। आई लव टू रीड दैट।

0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Office Shoutout.
2: So, ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक वक्त और भी आ रहा है. अब ये वक्त जिसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, दिस इज़ नन अदर देन आपको बताने के लिए कि बोर्डिंग कॉल कभी भी हम कर सकते हैं. और आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फटाफट जाना है हमारे ऐप के ज़रिए. कल तो आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखे तो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी. आई सेड कि चलो भाई, ये तो सब आप लोगों को पता चल ही गया है कि वनुआटू जाना है, तो भाई आपको क्या करना है, खाली हमारी बोर्डिंग कॉल का, बोर्ड नाव का अनाउंसमेंट जो है उसका इंतज़ार करना है. फिर आपको $1,000 कैश भी मिल जाएंगे, दो टिकट, बताओ इससे ज़्यादा क्या चाहिए छुट्टी पे जाने के लिए. बस चाहिए आपको एक रोवा का ऐप डाउनलोड करना और दैट्स अबाउट इट. फिर आपको हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी एंट्री को सबमिट करना है, दैट्स अबाउट इट. एज सिंपल एज दैट. वनुआटू का गेटवे आपके लिए कर रहा है इंतज़ार दरवाजे खोलकर. और हम थैंक्स कहना चाहते हैं टू सॉलमन एयरलाइंस जो 4 बार हफ्ते में नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआटू फ्लाई करते हैं. इनकी जानकारी के लिए आप flysolomons.com के ज़रिए आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए हमारे फेसबुक के या हमारे रोवा ऐप, हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. अभी बात कर रहे हैं अबाउट ऑफिस शाउट आउट, तो परमेश जी थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट. मेगा फाइनेंस से आपने हमें याद किया, सो हेलो टू यू.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

भाई बधाइयां तो आप सबको बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में लेकिन एक बधाई का कारण नहीं बन सकता एयर न्यूजीलैंड, क्योंकि एयर न्यूजीलैंड ने पोस्ट किया है प्री टैक्स लॉस ऑफ 336 मिलियन, ड्रिवन बाय ऑफ कोर्स जेट फ्यूल प्राइसेस और इंजन अवेलेबिलिटी, एविएशन सिस्टम कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाइट्स की चार्जेस जो है हो सकता है आगे चलकर बढ़ें, क्योंकि शायद इन्हें इसको अपने चीज़ को कवर करना है। ये जो वॉर था मिडल ईस्ट के वजह से, उसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट जो था डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ, और साथ साथ ये जो एक गैप था प्रॉफिट के बजाय वो अब लॉस में दिखाई दे रहा था।

0: airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वैसे अरविंद अडिग, अगर आप इन्हें नहीं पहचानते, इनकी बेस्ट सेलिंग नॉवल थी लास्ट मैन इन टावर. अब ये एक बड़े स्क्रीन पर एक मूवी की तरह 11th of September के दिन आने वाली है, और जिसे कहा जा रहा है बड़े आर्टिस्ट जैसे कि मनोज बाजपेयी, बामन ईरानी, दिव्या दत्ता, सुकांत गोयल ये इसमें रोल अदा करने वाले हैं. बेसिकली इट इज़ एक्सप्लोरिंग दी थीम्स ऑफ पर्सनल कन्विक्शन, रिलेशनशिप्स चेंजिंग, और किस तरह से क्या होता है. अब ऑफकोर्स द टाइमिंग इज़ कोइंसाइडिंग विद लास्ट मैन इन टावर 9/11, बट इसके साथ साथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस हैं जो बुक के अंदर थे, वो विटनेस किए जाएंगे अब, क्योंकि एक ये फिल्म जो है लुक्स लाइक विल बी एक्सपेक्टेड टू टेक द ऑडियंस, जहाँ पर उनकी पर्सनल चॉइस हो जाएगी ये फिल्म. और ये इंडियन थिएटर में रिलीज होने वाली है 11th of October के दिन. अब ये पता नहीं ये एक माइलस्टोन होगा फॉर हिंदी प्रोडक्शन या नहीं, क्योंकि इसके पहले स्पिरिट मीडिया जो है राणा डगुबटी, इन्होंने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस की थी, बट एक ख़ास तौर पे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये एक मैं कह सकती हूँ इट्स एन एनसेम्बल, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन एज अ हिंदी फीचर फिल्म वो देने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी एन अर्जेंट स्टोरी अबाउट होल्डिंग ऑन टू कम्युनिटी, फैमिली थ्रू बैड टाइम्स.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
4: Hi, Kevin Eater here, trade staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
5: Trade staff, industrial employment solution. Trade staff.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply. Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind, ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
7: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
8: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
7: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
8: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
7: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.

0: Chapter.
1: Dream Diary. अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है ना कि मैं देखती हूँ भाई बहन के रिश्तों में जो बहनें होती हैं बहुत जल्दी आ जाती हैं सामने और आखिर अपने इमोशंस को दर्शाने लग जाती हैं, बताने लग जाती हैं. बट यहाँ पर एक भाई टेक्स्ट कर रहे हैं और मुझे अब बड़ा फक्र होता है जान के कि मेन ऑल्सो हैव दोज काइंड ऑफ इमोशंस विच वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट. तो इन्होंने मुझे कहा कि कशिका, हम सुनते आ रहे हैं हमको और काफ़ी ऐसा होता है, बट मुझे मेरी बहन रोती हुई सपने में आई. तो बेसिकली ये आप एज अ ब्रदर, आपके अंदर की हिडन एंग्जाइटी है, आपको ड्रीम में वो आई, इमोशनल स्ट्रेस है, एक डीप कंसर्न है फॉर हर वेल बींग इन रियल लाइफ. इफ़ योर सिस्टर इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम इन रियल लाइफ, शायद आपकी सबकॉन्शियस उनको आपके माइंड में वो बात को आपकी नींद में प्रोसेस कर रही है. आपका माइंड हमेशा आपकी फैमिली की तरफ ज़रा दौड़ता ही रहता है. आपकी बहन को रोता हुआ देखना का मतलब है दैट यू हैव टू होल्ड बैक योर ग्रीफ, योर स्ट्रेस एंड पेन एंड प्रोबेबली हेल्प हर कम आउट ऑफ इट. और यही तो रिश्ते नातों में होता चला जाता है कि नहीं?
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: मुझे पता है कि हमारी खुद की जो पीढ़ी है वो किस तरह से अपने माता पिता को एकदम भगवान के रूप से मानती है, बट क्या लगता है आपको कि आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को उस रूप में पाते हैं या नहीं पाते हैं? एक चीज़ तो है, वो चाहते हैं कि वो उनके संस्कृति जो उन्होंने अपनाई है उसमें ढल जाएं, और ऐसे में वो उन्हें सिखाना शुरू करते हैं अपनी स्लैंग, अपना पॉप कल्चर, अपने टेकी आइडियाज, सब कुछ। और ये सब चीज़ें बहुत प्यार से मुझे लगता है कई पेरेंट्स जो हैं अपना लेते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, न्यूज़ के बाद आपकी कॉल लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आपके साथ आपके फादर या आपके भाई, आपके जो भी जिन्होंने फादर की तरह आप उन्हें मानते हैं, क्या उन्होंने इसे अडेप्ट किया? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए क्योंकि मौका है, दस्तूर भी है, तो क्यों नहीं इस तरह से हम इस बहुत ब्यूटीफुल से ट्रैक को सुनते हैं और याद करते हैं उस बॉन्डिंग को, उस प्यार को जो भाई बहन अपने माता पिता के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ मनाया करते थे।

0: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This
4: record,
3: is my
4: I
3: fancy
4: say.
3: English. That's a very.
4: अरे होता है, सब चलता है, आधी नींद में हूँ मैं।

0: Weekdays, 6 to 10 a.m. Say goodbye to winter.
1: Goodbye.
0: And hello to spring.
1: Hello.
0: This weekend at Risco's with new season savings store-wide and half-price Manchester and electrical deals. Say goodbye, winter.
1: Goodbye.
0: Hello, spring.
1: Hello.
0: With fresh savings at Risco's. See online for T's and C's.
2: Mike Eyre from Novus Glass. Do your wipers smear rather than clear your windscreen? Then you need Novus wipers. Novus all-in-one wiper kits are available online now. These are the best wipers you will ever buy and are quick and easy to install. So for less of this and more of this, as soon as you notice it, Novus it. Visit novus.co.nz or drop into your local branch.
3: Ah, Novus.
4: 1 in 3 New Zealanders will get cancer. Support the Cancer Society this Daffodil Day. All money raised helps provide care services and supports research. Daffodil Day supported by the Doctors Medical Centres. Enrol at thedoctors.co.nz.
5: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: Get it sorted with Cheap As Deals. Add some colour to the garden with 10cm elite cyclamens, now only $4 each. And get a sweet deal on 10cm Zealandia strawberry plants, now just $3.50 each. Limited stock. End Sunday at Mitre 10.
8: Home. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. The driver of a stolen car has died after a crash in Auckland. With more, Nigel Yolden.
10: Police were called to an aggravated robbery last night where a car was allegedly taken by someone armed with a crowbar. Officers spotted the vehicle being driven in the middle of the road with no headlights on and signalled for it to stop. The driver fled and collided head-on with another vehicle on Alfriston Road. They died at the scene and the occupant of the other car suffered moderate injuries.
9: A man has also died following a water-related incident off the coast of Tukau in the far north. Police were called to 90 Mile Beach yesterday afternoon over reports a fisherman had fallen into the water. Overseas, the death toll from catastrophic flooding in Nepal has risen. At least 389 people dead and over 1,000 missing, including 5 New Zealanders. It was triggered by the collapse of an ice shelf. Simon Cox from Earth Sciences NZ says similar areas here are largely unpopulated.
11: Well, it does happen here and it has happened here, but the difference is that we haven't had people and infrastructure in the way. We're not living in our valleys.
9: And Lotto has revealed details of its Powerball overhaul. The number of balls in the draw will go from 10 to 14 from September the 13th. The starting Powerball jackpot will increase from 4 million to 5 million. In sport, Rugby First and Northland's first Ranfurly Shield defence is heading towards a sellout. The Taniwha face Tasman in Whangarei on Sunday evening. Northland CEO Paul Linnane says all the tickets are almost gone.
12: We're hoping that's going to be sold out by today, tomorrow.
9: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And Kiwi golfer Ryan Fox is tied for ninth place after a decent 4-under par opening round at the Tour Championship in the US.
8: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
14: सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह कविनय लाल और कविता लाल के पिता माफ कीजिएगा मंजिला लाल के पति नावुआ फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रिमेशंस में किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए 021-0534-317 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने स्वर्गीय जॉर्ज केदारनाथ और राजमती के पुत्र करिश्मा सिंह कविनय लाल और कविता लाल के पिता मंजिला लाल के पति नावुआ फिजी के भूतपूर्व निवासी फ्लैटबुश के हीरा लाल उर्फ बुद्धा की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 021-0-534-317 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
8: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
14: The highs of 17, overnight temperature of 13. आज का फोकस बताया जा रहा है क्लाउडी डे रहेगा, कुछ आवर्स दोपहर के बाद जरूर पड़ने वाली हैं। It feels like 17 degrees, 558 पर सनसेट बताया गया है।
8: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
15: Morning Mazaa.
16: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
15: My Time with Kashika.
14: रिश्ता हमारा दुनिया से सबसे प्यारा है, कच्चे धागे से बंधा ये विश्वास हमारा है, हर मुश्किल में तूने मुझे संभाला है, वो भाई मेरे, अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। थैंक यू सो मच, आपका ये टेक्स्ट आया, पढ़ के बहुत अच्छा लगा और साथ साथ ये आया है कि चाहे हम कितने भी दूर हों, हमारी कलाई और दिल का ये रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत रहेगा। हैप्पी रक्षाबंधन डियर सिस्टर। तो साई थैंक यू सो मच, ऐसा लग रहा है एकदम मुझे लग रहा है भी जैसे यू नो जैसे फैमिली मूवी होती है वैसे फैमिली शो लग रहा है। वैसे हमारी कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है और अगर आपकी भी कोई कम्युनिटी में कोई इवेंट हो रहा है और बिल्कुल फ्री में है तो buzz@hamfm.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे आपसे वायदा किया था कि फादर्स डे के मौके पर मैं किसी फादर से बात करना चाहूँगी या उन बच्चों से बात करना चाहूँगी या फिर ऐसे किसी एक स्पेक्टेटर से बात करना चाहूँगी घर के, जो जिन्हें पता है कि उनके फादर कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप बेटी भी हो सकते हैं, आप बेटे भी हो सकते हैं, आप फादर भी हो सकते हैं या आप वो मदर भी हो सकती हैं जो इस रिश्ते को बदलते हुए देख रहे हैं मॉडर्न फादर के रूप में। तो बस थोड़ी देर बाद आपके लिए गाना लेकर आने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए आप एंजॉय कीजिए, हम कीजिए मेरे साथ कशिका के साथ 12 बजे तक और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के मौके पे।
8: बचाओ क्या,

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ऐसा होता है ना कि हम अपने फादर को जब याद करते हैं उनकी कहानियों को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे जब तब वो हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते हैं। बस इस गाने के ठीक बाद मेरी पूरी कोशिश है आपकी कॉल लूँ 0800 00 हम पर आपने मुझे कॉल करना है। किसी एक रिच फादर एक फादर को हम और रिच करने वाले हैं विथ $500 कैश इस फादर्स डे के मौके पर। तो चलिए बस इस गाने के ठीक बाद मैं कॉल उठाऊँगी 0800 00 हम के ज़रिए।
3: जागो

0: सॉरी थोड़ा पेट्रियाटिक हो गया, बट मेरा मीनिंग था कि मैं आपकी कॉल उठाऊं और थोड़ा मंगल मंगल करूं, बट ये मंगल मंगल थोड़ा पेट्रियाटिक हो गया. डजंट मैटर, बट आई थिंक कि पेट्रियाटिज्म हमारे अपने पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा हो जा है. और क्या कहते हैं कि उनका एक ऐसा नज़रिया है जो बदल चुका है आजकल के ज़माने के बच्चों के साथ साथ. वो जेंजी बच्चे या अल्फा बच्चे या मिलेनियल बच्चे और उनकी भाषाएं, क्या आप में से कोई ऐसी आपके परिवार में है जिन्होंने ऐसे आपके फादर जिन्होंने अपने आप को उसके लिए बदला, अपने लिए कुछ नया सोचा? तो चलो मुझे कॉल करो 0800 00 हम. आई एम हैप्पी टू टेक योर कॉल एंड पुट यू इनटू द ड्रॉ. आपके फादर का नाम मैं ड्रॉ में भी ऐड कर सकती हूँ. जस्ट रिमाइंडिंग माई सेल्फ अबाउट अनदर कॉन्टेस्ट जो है हो रहा है हमारे फेसबुक के पेज पे. यानी कि आप अपने डैड की कोई भी फ़ोटो उठाइए, एआई जनरेटेड ज़माना एआई का है, तो आप कोई भी फ़ोटो उठाइए और एक एआई जनरेटेड सुपर हीरो की फ़ोटो अपने डैड की बना डालिए. बस आपने इस फोटो को लेना है और हमारी पोस्ट के नीचे पोस्ट कर देना है. अपने फादर को टैग कीजिए और साथ साथ आप को क्या करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स अड़ोस पड़ोस जो भी हो, मोहल्ले के लोग हों, जिसको भी आप चाहें टैग कर सकते, मतलब जिसको भी चाहे आप कह सकते हैं कि भाई इसको लाइक करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइक करेंगे. इस कॉम्पिटिशन इज़ ऑल अबाउट लाइकिंग द कॉम्पिटिशन पोस्ट. तो जितने लोग लाइक करेंगे, और उन्हें लाइक हमके पेज को भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लाइक दी पोस्ट विच यू हैव पोस्टेड. $300 कैश जीतने की बात है भाई, अब इतने सस्ते में आपको क्या क्या हो सकता है. हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हमारे फेसबुक के पेज पर भी हमारी डिटेल्स हैं, रोवा पे भी डिटेल्स हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी आपको ये डिटेल्स मिल सकती हैं. जल्दी से कॉल कीजिए, नहीं तो सिक्स वर्ड स्टोरी का समय निकलता चला जा रहा है.
1: अब तक डैड आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की.
2: इस फादर्स डे हम पर डैड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल.
1: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश.
2: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डैड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300. डैड को रेडी करो, खुश करो.
1: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, PFSL प्रोवाइडिंग the best home loan advice for the last 20 years. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा.
7: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
8: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: सिक्स वर्ड स्टोरी।
0: इससे पहले कि मैं सिक्स वर्ड स्टोरी पर पहुंचूं, मैं पहुंच चुकी हूं एक ऐसी लिसनर के पास जिनके पास उनकी कहानी बतानी है और उसके बाद मैं स्टोरीज पर पहुंचूंगी। सो गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू प्रीति?
10: गुड मॉर्निंग आशिका।
0: बताइए बताइए क्या हुआ?
10: अच्छा, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से बोल रही हूँ। दिस लॉट ऑफ वर्ड जो बच्चे बोलते हैं ना आजकल के जेंडी, वो शॉर्ट फॉर्म में मैसेज करते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या, कैन यू रिपीट, क्या बोला आपने?
0: हाँ,
10: समझ में नहीं आया।
0: हाँ,
10: तो मुझे पता है वो कितनी स्ट्रगल करते हैं ना, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। फिर कभी कभी वो कुछ वर्ड बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं अच्छा आपको पता है ये वर्ड क्या है?
0: अच्छा
10: जैसे जैसे टेक्स्ट मैसेज में हो जाए ना, एफ आर, एफ आर का मतलब क्या है?
0: क्या है बता दो।
10: फॉर रियल।
0: ओह माय गॉड।
10: और आर एन लिख देते हैं ना। आर एन, मुझे मेरे हस्बैंड बोलते ये आर एन क्या लिखा, मुझसे पूछते है ना आर एन क्या है? राइट नाउ वो बोल रहे हैं, राइट नाउ।
0: ओह माय गॉड क्या बात।
10: अब मेरे हस्बैंड मुझे भी मैसेज करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म वाले यूज करते हैं।
0: देखो चेंज है, कितने चेंज ले आते हैं बच्चे ना। बट ग्रेट।
10: सिर्फ बहुत नहीं है, जैसे कि बच्चे जिस तरह यहाँ पर बात करते हैं ना, उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है ना। हिंदी में भी बात करते कुछ वर्ड ऐसे बोलते हैं, समझ में नहीं आता वो बोलते क्या है।
0: नहीं, वो होता है इन सब के साथ। अब मुझे पता है कि ये एक चैलेंज हो जाता है, और किस तरह से वी ट्राई टू कोप अप विद देम, इट इज अ चैलेंज। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, एंड मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया है।
10: थैंक यू काशिका।
0: थैंक यू, यू टू, टेक केयर, बाय। तो ये तो प्रीति हो गई अपनी, इन्होंने कहानी बता दी है, वेरी वेरी स्वीट। एंड ये मैंने भी आज नई चीज़ इनके साथ, इनके बच्चों के साथ सीख ली है। एफ नाउ, ओके, एफ एन, ओके ओके, पता नहीं एफ एन, ओके। मेरे को तो ये भी पता है फाइन भी होता है ना, एफ एफ एन भी फाइन लिख देती है मेरी डॉटर, तो दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट, फाइन, ओके। तो ये सिक्स वर्ड स्टोरी की जो मैं बातें कर रही हूँ, तो मैं मौका दे रही थी कि कुछ रक्षाबंधन के मौके पर ये सिक्स वर्ड की स्टोरी आप मुझ तक पहुँचाएँ, और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो चलो जल्दी करो, एंड ये मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहती हूँ।
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: Hoi, hoi, hoi, hoi.
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Akashica.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: यस, अद्भुत बात यह है कि जब मैंने कहा था कि आप मेरे साथ कुछ शेयर कीजिए अपनी सिक्स वर्ड स्टोरीज अबाउट रक्षाबंधन, तो आपने कहा मडी शूज ट्रैक्ड थ्रू द किचन. ओके, आई नो इट इज़ सो अनोइंग. घर में आप सबने रेडी वेडी किया होता, फिर वो अपने गंदे जूते लेकर भाई घुस जाता है. ओह माय गॉड, वो कितना इरिटेटिंग मोमेंट होता है. बट कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ होती है उसके बाद. बट द बेस्ट थिंग इज, एक जो टेक्स्ट आया है, ही टुक द ब्लेम फॉर मी. ऐसा हुआ है मेरे साथ एंड आई एम वेरी श्योर आप सबके साथ भी हुआ होगा. आपके भाई जो हैं, एक आपके जो कुछ गलती की होती है अपने ऊपर ले लेते हैं. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बचपन की मेमोरी है, वी बिल्ड कासल्स फ्रॉम कार्डबोर्ड बॉक्सेस. क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस के साथ आपने वो घर घर खेलते थे हम और वो बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था वो सब. और फिर एक था कि शेयर्ड सीक्रेट सीक्रेट्स विस्पर्ड अंडर रजाइज. ओके, ऑल राइट. ऐसा होता था, घुसपुरा के बातें करते थे, छुपके बातें करते थे कि मम्मी को पापा को मत बताना, मम्मी डैडी को मत बताना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. रक्षाबंधन का सुनहरा मौका है और ऐसे में ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि माँ भी बन जाता है हमारा भाई, बाप भी बन जाता है हमारा भाई, और ये कितना खूबसूरत रिश्ता होता है.

0: flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: अब देखिए, महाभारत से फ़ोन आ गया, यानी कि अभिमन्यु जी ने मुझे फ़ोन किया. ये फीजी से हैं और इन्होंने बहुत प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं. अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप इसे इन्जॉय कर रहे हैं. आई एम लविंग इट एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एज वेल. तो अभिमन्यु जी, आपने गाने की रिक्वेस्ट की है. मेरी कोशिश है जाने से पहले, क्योंकि अभी खाली 25 मिनट बचे हैं और प्रोग्राम में आगे भी मुझे बढ़ना है, तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ सबकी फरमाइशें जो है पूरी कर सकूं. तो थैंक यू सो मच, आपका मैसेज तो ज़रूर आया है. लेकिन एक बात बता दूँ, एक जो न्यूज़ आ रही है वो मुझे ज़रूर आपको बताना है कि थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ ग्रेप वाइन जो है, दे हैव बीन टर्न आउट, क्योंकि हमारी वाइन इंडस्ट्री जो है उसमें ओवर सप्लाई आ गया है ग्रेप्स का. द लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर जो कि इंडिवाइन जो है, इन्होंने बताया कि ड्रामेटिकली इन्हें जो ग्रेप्स हैं इनकी सप्लाई को गिस्बन एरिया में रिड्यूस करना पड़ रहा है. अब ये रीज़न है कि ओवर सप्लाई हो गया, शायद इनको इसी वजह से इस फसल को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है. बट एक बात और है जिसकी वजह से मैं कहना चाहती हूँ, नेपाल के लिए मेरा दिल इस समय बैठ रहा है. मैं चाहती हूँ ये ऐसा, मतलब जीते जी देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमारे प्रेयर्स हैं जितने भी हमारे नेपाली भाई बहन हैं आप सबके लिए.
0: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
10: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
11: Dad loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. The new water blaster, new drill, new barbecue, lawn mowers, edges.
10: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house,
12: dads are always working on a project.
10: Bunnings is the best place to find a Father's Day present.
13: Bunnings Warehouse.
9: Lowest prices are just the beginning.
14: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
15: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
16: Save's massive sofa and bed sale ends Monday. Get up to 50% off. Lounge suites, recliners, sofas, lazy boys and beds. Get a three-piece recliner suite, only $17.99. And queen beds from $8.99. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. T's and credit criteria apply. Don't miss Big Save's massive sofa and bed sale. Must end Monday only at Big Save.
17: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: Rescue me, recycle me.
2: Rescue me, recycle me. Aaj kyunki dekhiye tyohar ka din hai aur aise mein aloo पे हम वाइंड अप करने वाले हैं। उबले हुए आलू घर में पड़े हुए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें, बाकी की सब्जी बना ली लेकिन बहुत ज़्यादा सब्जी बन गई तो आलू फ्रिज में रख देते हैं। अब सोचते हैं बिना आलू का हम क्या करें। आज अगर ये आलू उबाले हुए आपने फ्रिज में रखे हुए निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी हम आलू की चाट बना सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये आलुओं को सबसे पहले अपने हॉट पैन में लिया या एयर फ्रायर में लिया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। भूनने के बाद आपकी जब ये आलू ब्राउन ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं तो फेटा हुआ दही, उस पर इमली की चटनी, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज और फिर हरा धनिया आप ऐड करके थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा काला नमक डालिएगा। एंड जब ये टेस्ट आपका आएगा, डिवेलप हो जाएगा, वाकई एकदम मैं कहती हूँ कि वो रायता फैल जाएगा। ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है एंड आई एम श्योर बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। मौका चल रहा है और दस्तूर भी है, वैसे मैं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे आपको बता देती हूँ, ढेर सारी जगह बहुत कुछ त्यौहार मनाया जाने वाला है और ये शुरू हो रहा है कल से द केव कैवेंडिश ड्राइव में 7:30 बजे से, रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू में भी 7:30 बजे से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये किया जा रहा है। इसके साथ साथ श्री राम मंदिर में भी कल से इसका आयोजन किया गया है। आउटी रिवर सनातन संगम संस्था जो है यहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है। हनुमान मंदिर जो है नॉर्थ शोर में, यहाँ पर भी ये सेलिब्रेशन दोपहर सुबह 4 तारीख की सेलिब्रेशन में तो सुबह 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कृष्ण का जन्म उत्सव भी किया जा रहा है। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे माँ दुर्गा टेम्पल में भी ये कमाल का मौका जो है 4 सितंबर के दिन 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ये चलने वाला है और रोज़ के दिन भजन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ NZ संगम जो है आपके लिए डेकोरेट एलिगेंस पर 16 लैम्बी ड्राइव में आज से लेके 4 तारीख तक इस सेलिब्रेशन को शुरू कर रहे हैं, तो बस आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4-NZPMI।

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो अभी मनु जी, मैं आपका गाना ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, फिर मैंने सोचा चलिए इस गाने को ही मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 100 साल एक आइडेंटिटी बनाने के लिए इस माइग्रेशन में पंजाब कम्युनिटी ने किस तरह से ये एक मॉडर्न न्यूजीलैंड को अपनाया, और 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये 100 ईयर्स की हिस्ट्री पंजाब माइग्रेशन टू न्यूजीलैंड जो है, किस तरह से जो पायनियर्स हैं, इन लोगों ने अपना रास्ता यहाँ बनाया। गगन संधू डायरेक्टर है, और साथ साथ हरजोत सिंह जो हैं, ये इन्होंने इस पर रिसर्च भी की, और ऑफकोर्स इसके साथ बहुत सारी बातें पंजाब टू आउटरोवा की है, नन अदर दैन सैंडी और रोज़बने अनफिल्टर्ड में। और आप अगर इसे सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पे, और आपको ये लिंक ज़रूर मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं यही कह सकती हूँ, इस खूबसूरत से त्यौहार के साथ साथ मैं अभी के लिए चलती हूँ आपके त्यौहारों में। हमारे बाकी के जो साथी हैं आके आपके त्यौहारों में शामिल होने वाले हैं, इनका स्वागत भी कीजिएगा, और मैं यहाँ से चलती हूँ। कल तो नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं भी त्यौहारों में ही जाने वाली हूँ, और हाँ मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह आपसे मुलाकात करती हूँ। तो आने वाला आपके लिए वीकेंड और भी ज़ोरदार, दमदार और शानदार बना रहे। याद रखिए, इन त्योहारों के मौसम में अपने लिए समय निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभिमन्यु जी, ये गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर। दिस इज कौशिका साइनिंग ऑफ, सेइंग हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।

अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.